FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। आज मंगलवार है। शक संवत 1948 के बैशाख माह की 29वीं तिथि तदनुसार दिनांक 19 मई सन 2026 प्रातः के 5:58 और 28 सेकंड हुए हैं। अब हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ हो रही है।

FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। अब हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत नॉर्वे को समझौते के तहत 100 अरब अमेरिकी डॉलर निवेश और भारत में 10 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए। श्री मोदी कल ओस्लो में भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस सम्मेलन में नॉर्वे के क्राउन प्रिंस हाकोन और प्रधानमंत्री योनास गहर स्टोरे भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
1: आज नॉर्वे और भारत के बिजनेस और रिसर्च कम्युनिटी के बीच होना, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। कुछ साथियों को जो सुना, ये सुनकर ये विश्वास होता है कि हमारी पार्टनरशिप की नींव बहुत ही मजबूत है। ये केवल संभावनाओं की नहीं, ये एक प्रूवन पार्टनरशिप है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत की तेज आर्थिक प्रगति, युवा शक्ति, निवेशकों के अनुकूल माहौल और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का उल्लेख करते हुए नॉर्वे से मछली उत्पादन, जहाज निर्माण, हरित ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण खनिज और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में अधिक निवेश का आह्वान किया। उन्होंने भारत की हरित ऊर्जा नीति और नॉर्वे की स्वच्छ ऊर्जा, समुद्री क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने तथा जलवायु वित्तीय सहयोग में वैश्विक नेतृत्व की भी सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारी समुदाय से नए सहयोग क्षेत्रों की पहचान कर आर्थिक साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के

0: राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से भी बातचीत करेंगे।
1: श्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता करेंगे, जिसमें समुद्री सुरक्षा और मजबूत कनेक्टिविटी प्रमुख विषय होंगे। इटली भारत को केवल यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुंच प्रदान करता है। आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी और रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह 5 देशों की यात्रा केवल कूटनीतिक प्रयास नहीं है, ये भारत के भविष्य के ऊर्जा मार्गों, AI साझेदारी, सेमीकंडक्टर पहुंच, रक्षा निर्माण और वैश्विक हितों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया है। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के प्रति प्रतिबद्ध है, लेकिन वो परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये केवल तकनीकी प्रगति ही नहीं बल्कि नए भारत की पहचान भी है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में देश में वाटर मेट्रो सेवाओं की शुरुआत को लेकर समीक्षा बैठक की। श्री सोनोवाल ने कहा कि केंद्र सरकार पहले चरण में गुवाहाटी समेत 18 शहरों में वाटर मेट्रो सेवा शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वाटर मेट्रो सेवा पर्यावरण अनुकूल और किफायती सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था होगी। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। IPL क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्ले ऑफ में जगह बना ली है। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से जयपुर में शाम 7:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विचार बिंदु। आज के विचार का विषय है प्रभु कृपा।
3: भगवान को परम आनंद मिलता है अपने भक्तों की सेवा में, जिसका जीवंत उदाहरण है स्वामी विवेकानंद के जीवन की हृदय स्पर्शी घटना। ग्रीष्म की वह झुलसाने वाली धूप थी। स्वामी जी तारीघाट स्टेशन पर उतरे। उनके पास था केवल पहने हुए गेरुए रंग के वस्त्र और किसी का दिया गया निकट के रेलवे स्टेशन का तृतीय श्रेणी का टिकट। एक कमंडलू भी नहीं था। वे तृतीय श्रेणी के यात्रियों के लिए निर्धारित स्थान पर एक स्तंभ के सहारे जमीन पर बैठ गए। स्टेशन की उस भीड़ में एक अधेड़ बनिया स्वामी जी के सामने दरी बिछाकर छाया में बैठा था। विगत रात्रि वे दोनों एक ही डिब्बे के सहयात्री थे। स्वामी जी को भूखा जानकर भी उसने अपने धन के बल पर स्वयं खूब खाया पिया था। गाड़ी जब कभी स्टेशन पर रुकती, स्वामी जी को प्यास से व्याकुल होने पर भी प्यासा ही रहना पड़ता था, क्योंकि पानी वाले को देने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। उस बनिया ने अपनी प्यास बुझाने हेतु पानी

0: खाया पिया था। गाड़ी जब कभी स्टेशन पर रुकती, स्वामी जी को प्यास से व्याकुल होने पर भी प्यासा ही रहना पड़ता था, क्योंकि पानी वाले को देने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। उस बनिया ने अपनी प्यास बुझाने हेतु पानी खरीद कर पिया और फिर देने लगा ताना, कितना मीठा पानी है, तुम तो सन्यासी हो, संपत्ति का त्याग कर रखा है, पानी खरीद नहीं सकोगे, इसलिए बिना पानी के प्रसन्न रहो, मेरी तरह धन क्यों नहीं कमाते। जब वे दोनों तारीघाट स्टेशन पर उतरे तो उसने तुच्छतापूर्वक फिर से कहना शुरू किया, मैं पूरियां और लड्डू खा रहा हूँ, परंतु तुम्हें तो धन कमाने की तनिक भी चिंता नहीं, इसलिए तुम्हें भूखे पेट और प्यासे गले रहकर संतोष करना पड़ेगा। स्वामी जी शांत रहे, उनके चेहरे पर एक भी शिकन नहीं थी। कुछ ही पलों में वहीं का रहने वाला एक व्यक्ति वहां आ पहुंचा। किसी स्वच्छ स्थान पर उसने दरी बिछाई, सब वस्तुएं उस पर रखकर स्वामी जी को पुकारने लगा, आइए बाबा जी, मैं भोजन लाया हूँ, स्वीकार कीजिए। स्वामी जी आश्चर्यचकित हो गए और कहने लगे, मित्र, मुझे नहीं लगता इसके पूर्व हम कभी मिले भी हैं। उसने कहा, नहीं नहीं, आप वही बाबा जी हैं जिन्हें मैंने देखा है। स्वामी जी की उत्सुकता जाग उठी और बोले, कब देखा है मुझे आपने? वह चिढ़ाने वाला बनिया यह सब देख रहा था। नवागत स्वामी जी से बोला, मैं एक मिठाई वाला हूँ, दिन के भोजन के बाद मुझे नींद आ गई, सपने में प्रभु राम जी आए और आपकी ओर इंगित कर कहा कि कल से मेरा यह भक्त भूखा व प्यासा रहने से मैं दुखी हूँ। तुरंत कढ़ी व पूरी बनाकर रेलवे स्टेशन ले जाओ, साथ में मिठाई, ठंडा पानी और दरी भी लेते जाना। मैं जाग तो गया, परंतु एक सामान्य सपना समझकर करवट बदलते हुए फिर सो गया, किंतु प्रभु राम ने फिर से आकर झकझोरते हुए मुझे जगाया। अब तो मैंने तुरंत कढ़ी बनाई, पूरियां उतारी, मिठाई साथ में रखी, शीतल जल लिया और एक दरी सहित दौड़ता हुआ सीधे यहाँ आया, दूर से ही आपको पहचान भी लिया। अब आइए बाबा जी और भोजन कीजिए, आप बहुत भूखे होंगे। स्वामी जी ने सजल आँखों से और बड़े प्यार से उस भोले भाले व्यक्ति को धन्यवाद दिया, लेकिन वह दयालु इन धन्यवादों को स्वीकार नहीं कर पाया और कहने लगा, ना ना बाबा जी, मुझे धन्यवाद मत दीजिए, यह सब कुछ तो कृपा सिंधु प्रभु राम की इच्छा है। वह निर्दयी बनिया इस घटना से अचंभित हो गया। उसने स्वामी जी से अपने कठोर वचनों के लिए क्षमा मांगते हुए उनकी चरण धूलि माथे लगाई।
1: विचार बिंदु कार्यक्रम में आज आपने प्रभु कृपा विषय पर विचार सुने। FM 100.8 MHz पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

ही संभव है सब काम। तुम्हारे हृदय में बसे श्री राम, हे महावीर हनुमान, हे राम भक्त हनुमान, आपको हमारा कोटि कोटि प्रणाम।

राम नाम की औषधि हर संताप मिटाए, बिन मोल की ये अमृत धारा प्रभु श्री राम से मिलाए। राम नाम की ज्योति जो मन में अपने जगाए, मन मंदिर पावन हो उसका प्रभु कृपा मिल जाए।

सारे जग की पालनहार है माँ, सबकी मुक्ति का धाम है माँ, भक्ति का आधार है माँ, सबकी रक्षा का अवतार है माँ। माँ की छवि है अति मनोहर, माँ के चरणों में बसा है सुख सागर।

शंभु, हे शिवाप्रिय, हे गंगाधर, हे कैलाशी, हे जगतपति, हे भूतपति, हे महादेव, हे अविनाशी, संकटहर्ता, मंगलकर्ता, तुम महाकाल, तुम निराकार, तुम ही शिव, तुम ही शंकर, तुम ही भोले भंडारी हो।

पीताम्बरधारी नटखट नंदलाल, प्रेम करुणा और भक्ति का सार। यमुना तट पर धेनु चराए, भक्त पुकारे तो दौड़े चले आए। मन से लो सब कान्हा का नाम, प्रभु देंगे कृपा का दान।

आराधना कार्यक्रम में आज आपने पंडित राजन मिश्र, पंडित साजन मिश्र, लालित्य मुंशो, अनुराधा पौडवाल, हरिहरन और श्री रूपा के स्वर में भक्ति वंदना सुनी। आपका दिन सुखद और मंगलमय हो, इसी कामना के साथ संपन्न होती है आज की आराधना।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। FM 100.8 MHz पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आज की बात। कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को शीला दुर्गापाल का नमस्कार। आइए जानते हैं 19 मई की तारीख से जुड़ी महत्वपूर्ण बातों और घटनाओं के बारे में। श्रोताओं, आज विश्व निष्पक्ष खेल दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन खेलों में ईमानदारी, सम्मान, समानता और भाईचारे की भावना को रेखांकित करता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2024 में 19 मई का दिन विश्व निष्पक्ष खेल दिवस के रूप में निर्धारित किया गया था। ये दिन खेलों को समावेशी बनाने, सांस्कृतिक मतभेदों को कम करने, खेल नियमों का पालन करने और डोपिंग जैसी बुराइयों से दूर रहने के लिए जागरूक और प्रेरित करता है। 19 मई वर्ष 1742 में तापमान मापने की मानक इकाई सेंटीग्रेड विकसित की गई थी। साल 1948 में हुए वैज्ञानिकों के एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में इसे मान्यता दी गई और इसके आविष्कारक एंडर्स सेल्सियस के सम्मान में सेंटीग्रेड का नाम बदलकर सेल्सियस कर दिया गया। श्रोता, कुछ समय पहले तक नाइट्रिक ऑक्साइड गैस को विषाक्त प्रदूषक माना जाता था, मगर वर्ष 1978 में प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार विजेता जैव रसायन विज्ञानी रॉबर्ट फ्रांसिस फर्चगॉट द्वारा मानव शरीर में EDRF पदार्थ की खोज की गई।

उन्होंने सिद्ध किया कि EDRF जो रक्त कोशिकाओं की भीतरी परत की कोशिकाओं को शिथिल और चौड़ा करता है वास्तव में नाइट्रिक गैस है। उनकी इस खोज ने तंत्रिका तंत्र और हृदय संबंधी कार्यप्रणाली को समझने और नई दवाओं के विकास में क्रांतिकारी भूमिका निभाई। आज ही के दिन वर्ष 2009 को इस महान वैज्ञानिक का निधन हो गया। श्रोताओं, आज प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नायक नाना साहब का स्मृति दिवस है। उनका जन्म 19 मई वर्ष 1824 को महाराष्ट्र के वेणुग्राम में हुआ था। उन्होंने अपने कुशल सैन्य संचालन और नेतृत्व से सन 1857 के विद्रोह में भारतीय सैनिकों का नेतृत्व करते हुए ब्रिटिश सेना से जमकर लोहा लिया और देशवासियों को आज़ादी के संघर्ष के लिए प्रेरित किया। उनकी युद्ध नीति और रणकौशल के कारण अंग्रेज सेना उन्हें कभी पराजित नहीं कर पाई और सन 1857 के नायकों के द्वारा जलाई आज़ादी की ज्वाला के कारण ही हमारा देश सन 1947 में आज़ाद हो पाया। श्रोताओं, आज पूर्व राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी की जयंती है। उनका जन्म 19 मई वर्ष 1913 को आंध्र प्रदेश में हुआ था। उन्होंने स्वतंत्रता संघर्ष में सक्रिय योगदान देने के साथ ही स्वतंत्रता के बाद आंध्र प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, दो बार लोकसभा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री के रूप में देश सेवा की और वर्ष 1977 में निर्विरोध निर्वाचित होकर देश के छठे राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया। उन्हें कुशल प्रशासक और लोकतंत्र के रक्षक के रूप में भी याद किया जाता है। 1 जून वर्ष 1996 को इनका देहावसान हो गया। श्रोताओं, आज भारतीय उद्योग के जनक टाटा समूह के संस्थापक प्रसिद्ध उद्योगपति जमशेद जी नूसरवान जी टाटा की पुण्यतिथि है। उन्होंने देश के इस्पात उद्योग की नींव रखने के साथ ही औद्योगिक शहर जमशेदपुर विकसित किया। आधुनिक तकनीक द्वारा कपड़ा उद्योग को नई ऊंचाइयां प्रदान की। मुंबई की शान और देश के पहले बिजली से चलने वाले प्रसिद्ध ताजमहल होटल का निर्माण किया। उनके प्रयासों से ही बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान IISc की स्थापना हुई। उनकी दूरदर्शिता, औद्योगिक सूझबूझ और योगदान से देश की अर्थव्यवस्था की नींव मजबूत हुई और देश का महाशक्ति बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ। 19 मई वर्ष 1904 को ये महान शख्सियत पंचतत्व में विलीन हो गई। श्रोताओं, आज विश्व प्रसिद्ध भारतीय साहित्यकार रस्किन बॉन्ड का जन्म दिवस है। उनका जन्म 19 मई वर्ष 1934 को हिमाचल प्रदेश के कसौली में हुआ था। उन्होंने बच्चों के लिए अनेक लघु कथाएं, निबंध और उपन्यास लिखे हैं। द रूम ऑफ द रूफ, द ब्लू अम्ब्रेला, अवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरादून और अ फ्लाइट ऑफ पिजन्स उनकी रचनाएं हैं। उन्हें पद्मभूषण, पद्मश्री और साहित्य अकादमी पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। और श्रोताओं, आज जयंती है दिग्गज नाटककार, अभिनेता, फिल्म निर्देशक और लेखक गिरीश कर्नाड की। उनका जन्म 19 मई 1938 को हुआ था। उन्होंने 1970 और 80 के दशक में पैरेलल सिनेमा और भारतीय रंगमंच को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। पद्मश्री, पद्मभूषण और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित ये महान कलाकार 10 जून 2019 को इस दुनिया से विदा हो गए। और श्रोताओं, इस जानकारी के साथ ही सम्पन्न होती है आज की बात। FM 100.8 MHz पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं देशगान।

अभी आप सुन रहे थे देशगान। FM 100.8 MHz पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा। कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को शीला दुर्गापाल का नमस्कार। विविधा कार्यक्रम में आज बात स्वास्थ्य के लिए लाभकारी संगीत थेरेपी पर। श्रोताओं, संगीत एक ऐसी भाषा है जिसे बिना शब्दों के भी समझा जा सकता है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हम इतने व्यस्त हो गए हैं कि सुकून के दो पल पाने को तरस गए हैं। हमारी मानसिक शांति हमसे कोसों दूर हो गई है। तनाव, डिप्रेशन, अनिद्रा और हृदय रोग जैसी समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में संगीत थेरेपी एक ऐसी औषधि बनकर सामने आई है जो बिना किसी दुष्प्रभाव के तन मन को स्वस्थ बनाती है। श्रोताओं, जब जीवन की परेशानियां हमें चारों खाने चित्त कर देती हैं, हमारा तनाव हम पर पहाड़ बनकर टूट पड़ता है, तब संगीत की मधुर धुन सुकून का मरहम बनकर हमें ढांढस सा बधा देती है। संगीत में वो शक्ति है जो रोते चेहरे पर मुस्कान सजा देती है, टूटे मन में आशा और निराश जीवन को नई रोशनी से भर देती है। जहाँ दवाइयाँ असर छोड़ देती हैं श्रोताओं, वहीं संगीत अपना कमाल दिखाता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार मधुर संगीत सीधे हमारे मस्तिष्क और भावनाओं को प्रभावित करता है। इससे मांसपेशियों का खिंचाव कम होकर मन को शांति का अनुभव होता है। वैज्ञानिक शोध भी बताते हैं कि संगीत शरीर में तनाव उत्पन्न करने वाले कार्टिसोल हार्मोन को कम करता है और खुशी महसूस कराने वाले हार्मोन डोपामाइन और सेराटोनिन को बढ़ाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार संगीत मानसिक तनाव कम करने और मरीजों को भावनात्मक संबल देने में बेहद प्रभावी होता है। अनेक रिसर्च भी बताती हैं श्रोताओं कि

प्रतिदिन कुछ समय मधुर संगीत सुनने से रक्तचाप नियंत्रित रहता है, जिससे हृदय संबंधी रोगों का खतरा कम हो जाता है। संगीत कैंसर से जूझ रहे मरीजों का दर्द कम करने में भी सहायक होता है। गौर करें श्रोताओं, तो संगीत कला के साथ साथ आज विज्ञान द्वारा प्रमाणित औषधि भी बन गई है और थेरेपी के रूप में काफ़ी कारगर सिद्ध हो रही है। संगीत थेरेपी में संगीत की धुन, ताल, स्वर और लय के माध्यम से व्यक्ति के मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जाता है। इस थेरेपी में मधुर संगीत सुनना, गाना गाना, नृत्य करना, वाद्य यंत्र बजाना और ध्यान के साथ संगीत का प्रयोग करना जैसी गतिविधियां शामिल हैं। श्रोताओं, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार धीमा और शांत संगीत सुनने से मन शांत होता है और मन में सकारात्मक विचार बढ़ते हैं, जिससे व्यक्ति का जीवन के प्रति सकारात्मक नजरिया बनता है। सोते समय मधुर संगीत सुनने से नींद जल्दी आती है और गहरी भी आती है। माँ की लोरी सुनकर सोते नन्हे शिशु को देखकर हम इस बात को आसानी से समझ सकते हैं। श्रोताओं, संगीत के हर उम्र के लोगों के लिए फायदे हैं श्रोताओं, और योग, ध्यान और संगीत के साथ दिन की शुरुआत हमें नई ऊर्जा देती है, बच्चों की स्मरण शक्ति और एकाग्रता बढ़ाती है, युवाओं का मनोबल बढ़ता है और बुजुर्गों का अकेलापन दूर होता है। आज ऑटिज्म, डिमेंशिया और अल्जाइमर जैसी समस्याओं में संगीत थेरेपी काफ़ी लाभकारी सिद्ध हो रही है। आघात से उबरने में भी संगीत थेरेपी बहुत मदद करती है। संगीत थेरेपी के फायदों को देखते हुए आज कई अस्पतालों में मरीजों को ऑपरेशन से पहले कुछ समय संगीत सुनाया जाता है, जिससे उनका डर और घबराहट दूर होकर उनका मन शांत रहे। श्रोताओं, भारतीय शास्त्रीय संगीत में ऐसे कई राग हैं जिन्हें सुनकर मन हल्का हो जाता है। ये राग तन मन दोनों को शांत रखने की क्षमता रखते हैं। आधुनिक विज्ञान और शोध भी संगीत से स्वास्थ्य लाभ के महत्व को समझते हैं। तो संगीत के इतने सारे महत्व हैं, तो संगीत को अपने दैनिक जीवन का एक हिस्सा बनाइए और एक शांत और सुकून भरी जिंदगी का आनंद लीजिए, क्योंकि संगीत एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम अपना तन मन का तनाव तो कम करते ही हैं, अपना स्वास्थ्य भी बेहतर बना पाते हैं। आज की विविधा में इतना ही। शीला दुर्गापाल को अनुमति दीजिए। नमस्कार। FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। अब आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे, पहले संस्कृत में, उसके बाद हिंदी में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नॉर्वे को 100 अरब अमरीकी डॉलर निवेश और भारत में 10 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए। श्री मोदी कल ओस्लो में भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस सम्मेलन में नॉर्वे के क्राउन प्रिंस हाकोन और प्रधानमंत्री योनस गहरस्तुर भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
1: आज नॉर्वे और भारत के बिजनेस और रिसर्च कम्युनिटी के बीच होना, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। कुछ साथियों को जो सुना, ये सुनकर ये विश्वास होता है कि हमारी पार्टनरशिप की नींव बहुत ही मजबूत है। ये केवल संभावनाओं की नहीं, ये एक प्रूवन पार्टनरशिप है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत की हरित ऊर्जा नीति और नॉर्वे की स्वच्छ ऊर्जा, समुद्री क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने तथा जलवायु वित्तीय सहयोग में वैश्विक नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने दोनों देशों के व्यापारी समुदाय से नए सहयोग क्षेत्रों की पहचान कर आर्थिक साझेदारी मजबूत करने का आग्रह भी किया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज शाम इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेल्ला से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से भी बातचीत करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया है। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन वह परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये केवल तकनीकी प्रगति ही नहीं बल्कि नए भारत की पहचान भी है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में देश में वाटर मेट्रो सेवाओं की शुरुआत को लेकर समीक्षा बैठक की। श्री सोनोवाल ने कहा कि केंद्र सरकार पहले चरण में गुवाहाटी समेत 18 शहरों में वाटर मेट्रो सेवा शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वाटर मेट्रो सेवा पर्यावरण के अनुकूल और किफायती सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था बनेगी। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ने पिछले वर्ष 12 अगस्त को इस समिति का गठन किया था। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष के खिलाफ मुकदमा चलाने को मंजूरी दे दी है। ये कार्रवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश और सीबीआई की जांच के बाद की गई है। संदीप घोष पर मेडिकल कॉलेज में खरीद से जुड़े मामलों में वित्तीय अनियमितताओं का आरोप है। सीबीआई ने भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश के तहत मामला दर्ज किया है, जबकि प्रवर्तन निदेशालय भी धन शोधन के पहलुओं की जांच कर रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के अनुरोध पर उन्होंने ईरान पर सैन्य हमले को फिलहाल स्थगित कर दिया है। श्री ट्रंप ने कहा कि संघर्ष विराम के लिए गंभीर वार्ता हो रही है, जिसके कारण सैन्य हमलों को स्थगित कर दिया गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि जल्द ही ऐसा समझौता हो सकता है जो अमरीका और पश्चिम एशिया के देशों को स्वीकार्य होगा। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बना ली है। आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से जयपुर में शाम 7:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। आज रात्रि 8:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात्रि 10:00 खेल दर्पण कार्यक्रम हमारे लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा। संध्या 6:50 पर गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार और संध्या 7:30 पर कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से रिले किए जाएंगे। अब से कुछ ही देर बाद प्रातः 7:10 पर आज आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस गान पाठ से अगला प्रसंग। प्रातः 7:50 पर हिंदी कार्यक्रम में आज त्रिभुवन गिरी का काव्य पाठ सुनाया जाएगा। प्रातः 8:30 पर होगा कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत, जिसमें आज आप सुनेंगे विदुषी एन राजम का वायलिन पर बजाया राग देवगिरी विलावल। महिलाएं अपना कार्यक्रम अर्पण सुनेंगी दोपहर 12:30 पर, जिसमें आज आप सुनेंगे आर्थिक आत्मनिर्भरता और शिक्षा वास्तविक सशक्तिकरण विषय पर श्रीमती रेखा

प्रभा पांडे की क्षेत्र संकलित बातचीत, साथ ही जानेंगे गैर संचारी रोगों के बारे में। इसी कार्यक्रम में आज चर्चा होगी आर्थिक आत्मनिर्भरता और शिक्षा वास्तविक सशक्तिकरण विषय पर। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग की 1287वीं कड़ी हम लेकर आएंगे दोपहर 1:30 पर, और दोपहर 2:30 पर होगा कार्यक्रम खेती की बातें, जिसमें आज आप सुनेंगे डॉक्टर नवल किशोर सिंह से जानकारी। विषय होगा शंकर नस्ल के पशुपालन और डेयरी व्यवसाय। युवाणी कार्यक्रम में संध्या 5:15 पर आज की बात का विषय रहेगा अपार क्षमता का भंडार।

दोपहर 2:30 पर होगा कार्यक्रम खेती की बातें, जिसमें आज आप सुनेंगे डॉक्टर नवल किशोर सिंह से जानकारी। विषय होगा शंकर नस्ल के पशुपालन और डेयरी व्यवसाय। युवाणी कार्यक्रम में संध्या 5:15 पर आज की बात का विषय रहेगा अपार क्षमता का भंडार युवा। जानेंगे व्यक्ति विशेष और आज का इतिहास। इसी कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे आर्यन कुमार की वार्ता। वार्ता का विषय रहेगा खेल से ऊपर खेल भावना। संध्या 5:45 पर आप सुनते हैं उत्तरायण कार्यक्रम, जिसमें आज चर्चा होगी विश्व निष्पक्ष खेल दिवस पर। मुस्कान अग्रवाल और अनूप जलोटा की गायी भक्ति रचनाओं का आनंद लीजिएगा। भक्ति संगीत कार्यक्रम में संध्या 6:41 पर और किसानवाणी कार्यक्रम में संध्या 7:00 आज की बात क्रम में जानेंगे सूक्ष्म जीवों का संतुलित प्रयोग के बारे में और चर्चा होगी औषधीय फसलों से लाभ विषय पर। इसी कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे डॉक्टर आरपी मीणा से संजय जोशी की भेंटवार्ता। भेंटवार्ता का विषय रहेगा उर्वरकों का संतुलित प्रयोग कब और कैसे। हमारे केंद्र से कुमाऊनी लोकगीत आप सुनते हैं लोकमंजरी कार्यक्रम में प्रातः 7:30 पर। पूर्वाहन 11:30 पर लोकसुर। मध्यान्ह 2:00 उत्तराखंड के लोकगीत और संध्या 5:05 पर शैलस्वर कार्यक्रम में सुगम संगीत सुनिएगा। पूर्वाहन 10:05 पर सबरंग कार्यक्रम में। मध्यान्ह 1:15 पर सुगम संगीत सबरस कार्यक्रम में रात्रि 8:00 और रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे फरमाइशी गजलों का साप्ताहिक कार्यक्रम महफिल। फिल्म संगीत हम लेकर आएंगे सुबह 9:05 पर गीत निर्झर कार्यक्रम में। पूर्वाहन 10:35 पर सुरबहार। 11:00 सैनिकों के लिए कार्यक्रम में। मध्याह्न 12:00 मेरी पसंद। 2:45 पर एक ही फनकार। अपराहन 3:00 सदाबहार फिल्मी गीत। संध्या 7:40 पर फिल्म संगीत और रात्रि 9:15 पर इंद्रधनुष कार्यक्रम के तहत। ये थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

राजा जनक के यज्ञ में शिव जी के धनुष का टूटना सुनकर वहां भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम का आगमन हुआ, जिन्हें देखकर उपस्थित राजाओं के समुदाय में हलचल मच गई। फिर सब कुछ देख जानते हुए भी अनजान की तरह परशुराम ने जनक जी से पूछा, ये भारी भीड़ कैसी है? सीता स्वयंवर का समाचार सुन मुनि ने जो दूसरी ओर देखा तो शिव जी के धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े दिखाई दिए। ये दृश्य देख परशुराम का क्रोध चरम सीमा पर पहुंच गया। रे चढ़ जनक, बता धनुष किसने तोड़ा, उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की पृथ्वी उलट कर रख दूंगा। सभा में आतंक छा गया, किसी को उत्तर देते ना बना। ये देख श्री राम ने निवेदन किया, हे नाथ, शिवजी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा।

अभी आप देहरादून से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नीता कांडपाल। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया। केंद्र सरकार ने कहा भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। अल्मोड़ा जिला योजना बैठक में 74,73,00,000 रुपए से अधिक को व्यय की मंजूरी। प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी, मैदानी जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार जाने की संभावना। और देहरादून नगर निगम का अतिक्रमण के खिलाफ अभियान तेज, विभिन्न क्षेत्रों में अवैध कब्जे हटाए गए।

अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा के दौरान दोनों देशों ने भारत नॉर्वे संबंधों को पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी में उन्नत करने की घोषणा की है। ओस्लो में प्रधानमंत्री योनस गौर स्टोर के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ये साझेदारी स्वच्छ ऊर्जा से लेकर जलवायु लचीलापन, समुद्री अर्थव्यवस्था से लेकर हर शिपिंग तथा क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देगी। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के महामहिम राजा हेराल्ड पंचम द्वारा रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया गया। चीन सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश के तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और

0: कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया में हाल की घटनाओं पर कल नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालयीय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है।
1: कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई 70% पर अभी बनी हुई है। मार्च के महीने से लेकर अभी तक लगभग 7,37,000 पीएनजी कनेक्शंस को गैसिफाई किया गया है। 2,76,000 कनेक्शंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा चुका है और 7,76,000 से अधिक ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने पीएनजी कनेक्शन के लिए अपने आप को रजिस्टर कराया है।
0: इस बीच सरकार ने YouTube के उन वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि भारत में केवल 9 दिन का तेल भंडार बचा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने दावे को भ्रामक बताते हुए कहा कि देश में लगभग 60 दिनों के कच्चे तेल का भंडार है और शोधन क्षमता भी पर्याप्त है। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की अध्यक्षता में अल्मोड़ा जिला योजना की बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 74,73,70,000 का व्यय अनुमोदन किया गया। कैबिनेट मंत्री ने विभिन्न विभागों की योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों से प्रगति की जानकारी ली और आगामी कार्य योजना को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डॉक्टर रावत ने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से जिले के समग्र विकास में सक्रिय सहभागिता निभाने और दृढ़ संकल्प के साथ कार्य करने का आह्वान किया। पत्रकारों से बातचीत में डॉक्टर रावत ने बताया कि प्रदेश के सभी जिलों में जिला योजना की बैठकें आयोजित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए सरकार द्वारा 22 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। साथ ही उन्होंने दावा किया कि रैंकिंग के आधार पर उत्तराखंड देश के शीर्ष 10 राज्यों में शामिल हुआ है।
2: सरकार के द्वारा सभी जिलों में आजकल जिला योजना की बैठकें हो रही हैं और उनके जो है परिवे पास किए जा रहे हैं। हर विभाग में जो अपने अपने प्रस्ताव दे रखे हैं आज उन पर चर्चा भी हम लोग करके उनको पास कर रहे हैं। शिक्षा विभाग में हमने 22 बड़े निर्णय किए हैं और उसी के कारण आप देख रहे होंगे कि जो आज रैंकिंग में हम पूरे देश में टॉप 10 पे आ गए हैं। अब एकमात्र हमारा काम रह गया है प्रमोशन का। प्रमोशन इसलिए नहीं हो पा रहे हैं कि हमारे कतिपय टीचर जो है कोर्ट गए हैं और कोर्ट में सरकार ने पूरी पैरवी कर दी है। मुझे लगता है कि जून के महीने में जैसे ही कोर्ट का कोई निर्णय आएगा तो हम एक हफ्ते में सभी टीचरों का प्रमोशन कर।
3: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: प्रदेश में गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि होने की संभावना है। विशेष रूप से हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर और देहरादून जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक रहने का अनुमान है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया। पेश है एक रिपोर्ट।
4: राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र ने सभी जिलों को अत्यधिक गर्मी के प्रभाव को देखते हुए आमजन को आवश्यक सावधानियों के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग को हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और गर्मी जनित बीमारियों से निपटने के लिए अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में पर्याप्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को कहा गया है। इसके साथ ही पेयजल आपूर्ति, विद्युत व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। विद्यालयों, निर्माण स्थलों और बाहरी कार्यों में लगे श्रमिकों के लिए आवश्यक एहतियाती उपाय सुनिश्चित करने तथा बच्चों, बुजुर्गों और बीमार व्यक्तियों के लिए विशेष सावधानी बरतने पर जोर दिया गया है। विभाग ने लोगों से धूप से बचने, अधिक मात्रा में पेय पदार्थों का सेवन करने, अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकलने तथा दोपहर के समय बाहर निकलने पर सिर को ढककर रखने की सलाह दी है। उधर देश के मैदानी इलाकों में पड़ रही भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों का रुख कर रहे हैं। राज्य के प्रमुख प्राकृतिक झरनों, तालाबों और गदेरों में भी सैलानियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। वीकेंड पर देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश और नैनीताल और अन्य पर्यटक स्थल सैलानियों से गुलजार हैं। बड़ी संख्या में पर्यटकों के आगमन से स्थानीय व्यापारियों में उत्साह है। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क है। यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए वीकेंड पर विशेष ट्रैफिक प्लान

0: लागू किया गया है, जिससे पर्यटकों की आवाजाही सुगम बनी हुई है। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से हिना आजमी।
1: देहरादून नगर निगम शहर को स्वच्छ, सुगम और अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए लगातार अभियान चला रहा है। इसी क्रम में नगर निगम ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में अतिक्रमण और अवैध कब्जों के विरुद्ध व्यापक कार्यवाही की है। नगर आयुक्त के निर्देश पर वार्ड संख्या 100 में पार्षद स्वाति डोभाल की शिकायत के बाद गुजरोवाली स्थित कृष्ण विहार क्षेत्र में सड़क पर किए गए अवैध कब्जों को जेसीबी मशीन की सहायता से हटाया गया। इस दौरान संबंधित लोगों को भविष्य में दोबारा अतिक्रमण न करने की कड़ी चेतावनी भी दी गई। इसी क्रम में बल्लूपुर पंडितवाड़ी क्षेत्र में सड़क किनारे और सार्वजनिक स्थलों पर किए गए अतिक्रमणों को हटाकर मार्ग को बाधा मुक्त कराया गया। वार्ड संख्या 3 में भी निगम की टीम लगातार कार्य अभियान चलाकर कार्य कर रही है और अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। नगर निगम ने शहर में लगाई गई अवैध होर्डिंग्स और विज्ञापन सामग्री को हटाने की कार्रवाई भी की। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी विधानसभा क्षेत्र के सुवाखोली में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र में विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश देते हुए अधिकारियों से सभी परियोजनाएं निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने को कहा। कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री ने क्षेत्रवासियों की समस्याएं भी सुनी और संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस बीच श्री जोशी ने गढ़पुरा आसकंडा मोटरमार्ग के सर्वे कार्य का निरीक्षण भी किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मौके पर मौजूद लोक निर्माण विभाग और जिला प्रशासन के अधिकारियों को मोटर मार्ग निर्माण कार्य को लेकर आवश्यक निर्देश दिए। और अब एक नज़र आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। प्रदेश में पर्यटकों के आवागमन पर दैनिक जागरण की सुर्खी है, वीकेंड पर उमड़ रहा वाहनों का रैला, 45,000 वाहन पहुंचे दून, दून अस्पताल में कैंसर की सस्ती जांच। इस शीर्षक के साथ हिंदुस्तान समाचार पत्र लिखता है, अस्पताल की रेडियोलॉजी विभाग अब शरीर की गांठों में कैंसर की सटीक और बेहद सस्ती जांच के लिए सीटी स्कैन गाइडेड बायोप्सी शुरू हो गई है। अपनी प्रतिभा और मेहनत के दम पर राज्य सरकार में चयनित युवाओं की नियुक्ति को आज सभी समाचार पत्रों ने पहले पृष्ठ पर प्रकाशित किया है। इस खबर पर अमर उजाला लिखता है, सीएम ने 4 साल में चयनित कर्मियों को डिजिटल माध्यम से लिखा पत्र। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया। केंद्र सरकार ने कहा, भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। अल्मोड़ा जिला योजना बैठक में 74,73,00,000 रुपए से अधिक के व्यय को मंजूरी। प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी, मैदानी जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार जाने की संभावना। और देहरादून नगर निगम का अतिक्रमण के खिलाफ अभियान तेज, विभिन्न क्षेत्रों में अवैध कब्जे हटाए गए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन पूर्वाह्न 10:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

FM 100.8 मेगाहर्ट्ज और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कुमाऊनी लोकगीतों का कार्यक्रम लोक मंजरी। कार्यक्रम के आरंभ में आइए सुनते हैं विमला बोरा और साथियों के स्वर में ये कुमाऊनी लोकगीत।

0: उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: आकाशवाणी अल्मोड़ा से इस वक्त आप सुन रहे हैं कुमाऊनी लोकगीतों का कार्यक्रम लोक मंजरी। इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं विमला बोरा और साथियों के स्वर में कुमाऊनी लोकगीत।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शी भर्तियों में 28,000 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी। राज्य ने G20 समिट, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और 38वें राष्ट्रीय खेल जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का भव्य और सफल आयोजन किया और राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर अपनी खास पहचान बनाई।
2: संकल्प बेहतर उत्तराखंड का, कायम की एक नई मिसाल। उत्तराखंड का हर घर अब देखो हो रहा खुशहाल।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की नगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी अल्मोड़ा से इसमें आप सुन रहे हैं कुमाऊनी लोकगीतों का कार्यक्रम लोक मंजरी। आइए सुनते हैं विमला बोरा और साथियों के स्वर में एक और कुमाऊनी लोकगीत।

0: विमला बोरा और साथियों के गाए इस कुमाऊनी लोकगीत के साथ ही लोक मंजरी कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। FM 100.8 MHz पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। हिंदी कार्यक्रम में आइए सुनते हैं श्री त्रिभुवन गिरी से काव्य पाठ।
1: सर्वप्रथम उत्तराखंड किसी देवभूमि के नाम से जाना जाता है, उसी की वंदना में एक कविता पढ़ रहा हूँ। देव भूमि वीर भूमि जन्म भूमि को प्रणाम, देव भूमि वीर भूमि जन्म भूमि को प्रणाम, सप्तरंग संस्कृतिमय उत्तराखंड को प्रणाम। उत्तराखंड है महान, शिखर शिखर नंदा जात, घाट घाट है शिवाल, विश्व विदित स्वर्ण मुकुट, भारती का उच्च भाल, भूति मुनाल कफू गाय जहाँ साम गान, स्वर्ग है वो परम पूज्य उत्तराखंड को प्रणाम। उत्तराखंड है महान, बाज और बुरांस भरी हरी भरी चोटियाँ, बाज और बुरांस भरी हरी भरी चोटियाँ, ब्रह्म कमल खिलखिलाते फूलों भरी घाटियाँ, मखमली बुग्याल जहाँ कस्तूरा है नृत्यमान, सनातनी सभ्यता है उत्तराखंड को प्रणाम। उत्तराखंड है महान, तीलू जिया नारी शक्ति चंद्र सिंह की पुकार, तीलू जिया नारी शक्ति चंद्र सिंह की पुकार, स्वाभिमान की भेटूली राष्ट्रभक्ति की रेबार, धर्म भीरु शांत धीर प्रभा पूरी दिव्यमान, गंगा जमुना कंठहार उत्तराखंड को प्रणाम। उत्तराखंड है महान, गोलू पोखू लोक देव न्याय के खुले हैं द्वार, गोलू पोखू लोक देव न्याय के खुले हैं द्वार, जागनाथ बागनाथ बद्रीनाथ और केदार, वास करें इष्ट देव नमन है हे धर्मधाम, अमर रहे कीर्ति तेरी उत्तराखंड को प्रणाम। गंगा यमुना सरस्वती बने जिसके कंठहार, गंगा यमुना सरस्वती बने जिसके कंठहार, युग युगों से बहे जहां अमृत तुल्य नीरधार, शोक हरें सभी जन का धरा का पवित्र धाम, मानस केदार खंड उत्तराखंड को प्रणाम। उत्तराखंड है महान, 33 कोटि देवगण करते जहाँ वास रे, जन्म यहाँ पाने वाला है सौभाग्य की बात रे, कण कण माटी पावनी है ये हमारा स्वाभिमान, इष्ट देव के चरणों में 100-100 बार है प्रणाम। उत्तराखंड है महान, उत्तराखंड है महान, वीर भूमि देव भूमि जन्म भूमि को प्रणाम, सप्तरंग संस्कृतिमय उत्तराखंड को प्रणाम। उत्तराखंड है महान, उत्तराखंड है महान। दूसरी माता सरस्वती के चरणों में अर्पित करते हुए, जल थल नभचर सकल हो निर्मय, जल थल नभचर सकल हो निर्मय, अजय अभय जग सारा, जल चर थल चर नभ चर सारे, निर्मय अजय जग सारा, सुख समृद्धि शांतिमय होवे यह संसार हमारा, सुमति सुबुद्धि

दुख दरिद्र हर लेना, प्रातः की पहली वेला में आकर हमें जगा देना, और स्वर्ण किरणों से माता भाग्य हमारा लिख देना। प्रातः की पहली वेला में धन्य किया मानव तन देकर, मानव पर मिट जाए नर वानर हम, मातु ये नैया भव सागर तर जाए। धन्य किया मानव तन देकर, मानव

0: स्वर्ण किरणों से मादा भाग्य हमारा लिख देना। प्रातः की पहली बेला में जो अज्ञान के अंध पथों में भटक रहे हैं ओ माँ, जो अज्ञान के अंध पथों में भटक रहे हैं ओ माँ, जो रूखे सूखे हों सारे इस धरती पर ओ माँ, सबको राह दिखा पाए हम जननी वह मति देना। और प्रातः की पहली किरणों में आकर हमें जगा देना। और स्वर्ण किरणों से माता भाग्य हमारा लिख देना। प्रातः की पहली वेला में घर घर दीप जले शिक्षा का छठे तमस अंधियारा। घर घर दीप जले शिक्षा का छठे तमस अंधियारा। ज्योतिर्मय हों दसों दिशाएं जग होवे उजियारा। अनपढ़ जग में रहे न कोई ऐसी युक्ति रचा देना। और प्रातः की पहली वेला में आकर हमें जगा देना। और स्वर्ण किरणों से माता भाग्य हमारा लिख देना। प्रातः की पहली वेला में
1: आजकल अब गर्मियां शुरू हो गई हैं, पहाड़ों पर एक दौर हरे भरे जंगलों में जलने का शुरू हो जाता है। ऐसे में एक छोटी सी कविता के संदर्भ में, हो गया वह गीत जंगल गा रहा था चलो देखें, हो गया वो गीत जंगल गा रहा था चलो देखें, रो रहा है मीत मंगल गा रहा था चलो देखें, टूटते संगीत के स्वर धुआं उगले राख कालिख, बीन कर तिनके बनाया जला कोटर चलो देखें, मखमली कालीन सा बुग्याल था फैला जहाँ पर, मखमली कालीन सा बुग्याल था फैला जहाँ पर, काली माँ ने चादरें अपनी बिछाई चलो देखें, खो गया वो गीत मेरा गा रहा था चलो देखें। सरित धारा युग युगों से बह रही थी लिए अमृत, सरित धारा युग युगों से बह रही थी लिए अमृत, कतरा पानी भर नहीं है सूखा पड़ा है चलो देखें, स्वयं अपना घर जलाकर कौन दिवाली मनाए, स्वयं अपना घर जलाकर कौन दीपावली मनावे, यहाँ होली जल रही है जंगलों की चलो देखें, यहाँ होली जल रही है जंगलों की चलो देखें। ग्राम्य बाला है उद्विग्न, ग्राम्य बाला है उदेखिल, हत गए सब ढोर डंगर तक रही है मुख परेसर, हाथ बाधे चलो देखें, बढ़ के रोकें कर सकें कुछ सखा आओ चलो देखें, बढ़ के रोकें कर सकें कुछ सखा आओ चलो देखें, धुंधु त्रिभुवन जल रहा है अंधेरों में चलो देखें। इसके साथ ही एक अंतिम कविता को आपके सामने रखने जा रहा हूँ और वो है धरती माता को और उस परमपिता परमेश्वर जिसने हमें इस सृष्टि में भेजा है और इस सृष्टि का कण कण बनाया है। हे धरती माता हे सत सत नमन, अखिलेश्वरी तेरा वंदन नमन, हे धरती माता हे सत सत नमन।

पवन बहते मृदुल जल छलन छन छनन पावक से पावक कर दे कर तपन पावक से पावन कर दे कर तपन महादान माटी का पुतला यतन है सत सत नमन तुझको सत सत नमन अखिलेश्वरी तेरा वंदन नमन फूलों से लकदक भरी डालों पर सतरंगी रंगत है भीनी सुगंध।

0: सत सत नमन तुमको सत सत नमन, हे धरती माता है तुमको नमन, हे अखिलेश्वरी तेरा वंदन नमन। नदियों की कलकल किलकारियां, पवन में झूलहर झूमती बालियां, सुनाते हैं पाखी मधुर बोलियां, रंगीले पाखों में उड़े टोलियां, सजाई है तूने ये हरियालियां, है सत सत नमन तुझको सत सत नमन, हे धरती माता है तुझको नमन। वर्षा में बादल जो छाए घनेरे, उफनती है नदियां उफनते गधेरे, सागर ये पर्वत ये झरनों की कतारें, ये चंदा सी झिलमिल झिलमिल सितारे, ये दिन रात सुबह शाम मनहर बहारे, कृपा की है तुमने माँ तेरी शरण, है सत सत नमन तुमको सत सत नमन, हे धरती माता है तुमको नमन। अपनी व्यथा गाथा तुमसे कहें, अपनी व्यथा गाथा तुमसे कहें, दुनिया में सभी लोग मिलकर रहें, औरों के दुख में हम साथी रहें, अपना समझकर ही कर लें सहन, हो कामना विश्व बंधुत्व की, जीवन की भाषा हो अपनत्व की, बनाया मनुज दे के वाणी वचन, है सत सत नमन, है सत सत नमन, हे धरती माता है सत सत नमन, हे धरती माता है सत नमन।
1: हिंदी कार्यक्रम में अभी आप श्री त्रिभुवन गिरी से काव्य पाठ सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से प्रसारित किया जा रहा था।

FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने वाले हैं। अब आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भारत ईएफटीए समझौते के तहत 100 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश और 10 लाख नौकरियों के सृजन का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में सभी 5 नॉर्डिक देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत का मजबूत आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को रिपोर्ट सौंपी। पश्चिम बंगाल सरकार ने वित्तीय अनियमितता मामले में आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नॉर्वे को व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत 100 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश लक्ष्य को प्राप्त करने और भारत में 10 लाख रोजगार सृजित करने के लिए प्रयास करने चाहिए। प्रधानमंत्री कल ओस्लो में आयोजित भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। क्राउन प्रिंस हकॉन और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनिस गहरस्तुर भी इस शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते

0: TEPA के लागू होने के बाद द्विपक्षीय व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
1: यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूनिक और स्पेशल एग्रीमेंट हमारे बीच टैलेंट, टेक्नोलॉजी और म्यूचुअल ट्रस्ट का एग्रीमेंट है। इसी एग्रीमेंट के माध्यम से एफ्टा कंट्रीज से भारत में अगले 15 वर्षों में 100 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत के हरित परिवर्तन पर बल देते हुए देश के विकास, बढ़ती ऊर्जा मांग, जलवायु प्रतिबद्धताओं और नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रिड अवसंरचना, हरित हाइड्रोजन और स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार का उल्लेख किया।
1: 2030 तक हमने 500 गीगावाट क्लीन एनर्जी और 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का टारगेट रखा है। क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट नॉर्वे वेल फंड की भी प्राथमिकता है। मैं नॉर्वे को भारत के क्लीन एनर्जी फ्यूचर में अहम हिस्सेदार बनने के लिए आमंत्रित करता हूं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारिक समुदायों से नई साझेदारियां बनाने, सहयोग के उभरते क्षेत्रों की पहचान करने और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने का आग्रह किया। शिखर सम्मेलन में 50 से अधिक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और भारत तथा नॉर्वे के व्यापार और अनुसंधान समुदायों के 250 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया। विदेश मंत्रालय के सचिव पश्चिम सिबी जॉर्ज ने प्रेस वार्ता में इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के हरित और समुद्री अर्थव्यवस्था में साझेदारी से अधिक निवेश आएगा, रोजगार सृजित होगा और भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा सहित सतत ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकेगा।
2: Recognizing the ambitious
3: भारत के महत्वाकांक्षी समुद्री अमृतकाल विजन 2047 को मान्यता देते हुए दोनों नेताओं ने जहाज निर्माण, हरित जहाज रानी, जहाज पुनर्चक्रण, बंदरगाह अवसंरचना का विकास, नाविकों का प्रशिक्षण, मत्स्य पालन, जलीय कृषि और बंदरगाहों के हरितकरण सहित समुद्री अर्थव्यवस्था साझेदारी को बढ़ाने का आह्वान किया है।
2: ग्रीनिंग ऑफ पोर्ट्स।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे की यात्रा के दूसरे दिन आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। अधिक जानकारी ओस्लो से हमारी संवाददाता से।
4: भारत और 5 नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में आज तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़े हुए क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करेगा। 2022 में डेनमार्क के कोपनहेगन में पिछला सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी और नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण यह चर्चा के मुख्य क्षेत्र हैं। TEPA लागू होने के परिप्रेक्ष्य में यह शिखर सम्मेलन व्यापार और निवेश संबंधों को अधिक मजबूत करने का प्रयास करेगा। वर्तमान में इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय व्यापार का मूल्य 19 अरब डॉलर है। तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेल्ला से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से बातचीत भी करेंगे।
5: रोम पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली में बसे भारतीय समुदाय के सदस्यों से मुलाकात करेंगे, जिनकी यहां उल्लेखनीय उपस्थिति है। वे भारतीय मूल के बच्चों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखेंगे, जिसमें प्रवासी भारतीय समुदाय के बच्चों द्वारा गाया गया एक पंजाबी लोकगीत शामिल है। ये बच्चे रोम के पास स्थित फोंदी कस्बे से आते हैं, जहां उनके माता पिता कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं। ये पंजाबी लोक शैली का गीत एक जट किसान के गर्व, शक्ति और उत्साहपूर्ण जीवन का उत्सव मनाता है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
7: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आप

0: कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन वह परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये केवल तकनीकी प्रगति ही नहीं बल्कि नए भारत की पहचान भी है। गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की

0: के लिए तैयार है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये केवल तकनीकी प्रगति ही नहीं बल्कि नए भारत की पहचान भी है। गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पिछले 6 दशकों के दौरान नक्सलवाद के कारण बस्तर को बड़े पैमाने पर जो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार अगले 5 वर्षों में करेगी। उन्होंने कहा कि अगले 1.5 वर्षों के दौरान बस्तर में स्थापित सुरक्षा बलों के करीब 200 कैंपों में से 70 कैंपों को जन सेवा केंद्रों में बदलकर उन्हें आदिवासी कल्याण का केंद्र बनाया जाएगा। इन सेवा केंद्रों में बैंकिंग, आधार, राशन कार्ड, कौशल प्रशिक्षण सहित केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत की गई। एक रिपोर्ट।
2: उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए लोकसभा अध्यक्ष द्वारा पिछले वर्ष 12 अगस्त को एक समिति का गठन किया गया था। रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में उचित समय पर प्रस्तुत किया जाएगा। न्यायाधीश जांच समिति के पीठासीन अधिकारी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार, बम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर और कर्नाटक उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता बीवी आचार्य ने श्री बिरला को न्यायाधीश जांच समिति की रिपोर्ट सौंपी। आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय को मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आधिकारिक आदेश जारी कर निदेशालय को घोष के खिलाफ कथित वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में मुकदमा चलाने की अनुमति दी है। श्री अधिकारी ने कहा कि पूर्व की तृणमूल कांग्रेस सरकार ने इस मामले की जांच प्रक्रिया को लंबे समय तक जबरन और अनैतिक रूप से रोक रखा था। ये मामला एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या से भी संबंधित है। सीबीआई ने 29 नवंबर 2025 को आजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में आरोप पत्र दाखिल किया था। अमरीका ने समुद्र में पहले से मौजूद रूस के तेल पर प्रतिबंधों की छूट की अवधि को 1 महीने के लिए बढ़ा दिया है। अमरीका के वित्त विभाग ने कल एक आदेश जारी कर 17 अप्रैल या उससे पहले समुद्र में फंसे रूसी तेल पर प्रतिबंधों से मिली छूट की समय सीमा को 17 जून तक बढ़ा दिया है। इससे पहले अमरीका ने 5 मार्च को 1 महीने के लिए रूस का तेल खरीदने पर भारत को प्रतिबंधों से छूट दी थी। कुछ दिनों बाद ये छूट अन्य देशों को भी दी गई, जो 11 अप्रैल को समाप्त हो गई थी। अमेरिका इस वर्ष 30 और 31 अक्टूबर को जॉर्जिया के अटलांटा शहर में G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कल घोषणा की कि इस बैठक में दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के विदेश मंत्री शामिल होंगे, जिससे वैश्विक स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए G20 के मुख्य उद्देश्यों को आगे बढ़ाया जा सके। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बना ली है। चेन्नई में पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 180 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद ने 19 ओवर में 5 विकेट पर लक्ष्य हासिल कर लिया। ईशान किशन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आज जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से शाम 7:30 बजे से होगा। मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में दिन के समय मौसम गर्म और उमस भरा रहने की संभावना है। राजस्थान, विदर्भ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज रात भी गर्मी बने रहने का अनुमान है। जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में आज बादल गरजने के साथ बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की गई है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
3: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपना शीर्षक बनाया है। दैनिक जागरण

0: लिखता है, अमेरिका प्रतिबंध हटाए या लगा कर रखे, रूस से तेल खरीद जारी रखेगा भारत। सरकार की दो टूक, अपने देश की ऊर्जा जरूरत के हिसाब से तेल खरीदेंगे। हिंदुस्तान ने अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के दावे को प्रमुखता दी है। ईरान का नया शांति प्रस्ताव भी खारिज। पंजाब केसरी ने लिखा है, ट्रंप ने युद्ध पूरी तरह खत्म करने के लिए रखी 5 शर्तें। जवाब में तेहरान ने भी 5 शर्तों की सूची थमाई। देशबंधु की खबर है, ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट पर लागू की नई व्यवस्था। स्ट्रेट के प्रबंधन के लिए नया निकाय बनाने की घोषणा की गई है। नवभारत टाइम्स के अनुसार नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने सोमवार को महाराष्ट्र के लातूर से 10वीं गिरफ्तारी की। सीबीआई का दावा, नीट से 10 दिन पहले मिले थे सवाल। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ में प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा पर विश्लेषण दिया है। नए समीकरणों की उम्मीद शीर्षक से पत्र लिखता है, गहरे भू राजनीतिक संकटों और आर्थिक अनिश्चितताओं के दौर में प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की 6 दिवसीय यात्रा सिर्फ औपचारिक राजनयिक दौरा भर नहीं है, बल्कि इसके व्यापक कूटनीतिक, आर्थिक और सामरिक निहितार्थ भी हैं। दैनिक भास्कर की विशेष खबर ध्यान आकर्षित करती है, स्मार्ट से उबे लोग, बेसिक चीज़ों में सुकून की तलाश, जो गैजेट चुपचाप काम करे अब वही ज्यादा समझदार।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भारत EFTA समझौते के तहत $100 अरब अमरीके निवेश और 10 लाख नौकरियों के सृजन का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में सभी 5 नॉर्डिक देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत का मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। पश्चिम बंगाल सरकार ने वित्तीय अनियमितता मामले में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कॉल्स फॉर $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट एंड 1 मिलियन जॉब्स अंडर इंडिया EFTA एग्रीमेंट एट बिजनेस एंड रिसर्च समिट इन ओस्लो नॉर्वे। Prime Minister Modi to meet leaders of all 5 Nordic nations at 3rd India-Nordic summit today. Defence Minister Rajnath Singh describes Operation Sindoor as testament to India's transformation into strong, confident and capable nation. Judges Inquiry Committee investigating allegations against Justice Yashwant Verma submits report to Lok Sabha Speaker Om Birla. West Bengal government allows ED to prosecute former principal of RG Corps Medical College Sandeep Ghosh in financial irregularity case. And in IPL cricket, Sunrisers Hyderabad secure playoff berth, beating Chennai Super Kings by 5 wickets. Prime Minister Narendra Modi attended the India-Norway Business and Research Summit in Oslo. Crown Prince Haakon and the Prime Minister of Norway, Jonas Gahr Støre, also participated in the summit. Addressing the business and research community, Prime Minister Modi appreciated the growth in bilateral trade and investments following the entry into force of Trade and Economic Partnership Agreement, TEPA. He underlined that stakeholders on both sides should make efforts to achieve the investment target of $100 billion under and the consequent creation of 1 million jobs in India.
3: EFTA countries se Bharat mein अगले 15 वर्षों में $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है। ये एम्बिशियस टारगेट है लेकिन अचीवेबल है, और भारत में आपके इन्वेस्टमेंट को आउटकम्स में बदलना, मैं आपको विश्वास से कहता हूँ, ये हमारी गारंटी है।
2: Mr. Modi also underscored India's ambitious green transition agenda, emphasizing the country's scale, growing energy demands, climate commitments and rapid expansion in renewable energy, grid infrastructure, green hydrogen and clean energy.
3: 2030 tak humne 500 gigawatt clean energy aur 5 million ton green hydrogen produce karne ka target rakha hai. Green energy investment Norway Wealth Fund ki bhi

0: शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में अभी आप विदुषी एन राजम का वायलिन पर बजाया राग देवगिरी बिलावल सुन रहे थे। आपके साथ तबला संगतकर्ता थे विजय घाटे। FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9 बजने वाले हैं। अब आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे की यात्रा के दूसरे दिन आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। अधिक जानकारी ओस्लो से हमारी संवाददाता से।
2: भारत और 5 नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों के उपस्थिति में आज तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़े हुए क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करेगा। 2022 में डेनमार्क के कोपेनहेगन में पिछला सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी और नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण, यह चर्चा के मुख्य क्षेत्र हैं। प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ विपक्षीय बैठक भी करेंगे। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों को व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत 100 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश लक्ष्य को प्राप्त करने और भारत में 10 लाख रोजगार सृजित करने के लिए प्रयास करने चाहिए। प्रधानमंत्री कल ओस्लो में आयोजित भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। क्राउन प्रिंस होकॉन और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गहर स्तुर भी इस शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते TEPA के लागू होने के बाद द्विपक्षीय व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
3: यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूनिक और स्पेशल एग्रीमेंट हमारे बीच टैलेंट, टेक्नोलॉजी और म्यूचुअल ट्रस्ट का एग्रीमेंट है। इसी एग्रीमेंट के माध्यम से एफ्टा कंट्रीज से भारत में अगले 15 वर्षों में $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब क्रिएट करने का लक्ष्य है।
1: शिखर सम्मेलन में 50 से अधिक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और भारत तथा नॉर्वे के व्यापार और अनुसंधान समुदायों के 250 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे

0: राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेल्ला से भी मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया है। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन वह परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये केवल तकनीकी प्रगति ही नहीं बल्कि नए भारत की पहचान भी है। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ने पिछले वर्ष 12 अगस्त को इस समिति का गठन किया था। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय को मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आधिकारिक आदेश जारी कर निदेशालय को घोष के खिलाफ कथित वित्तीय अनियमितताओं और धन शोधन के आरोप में मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज फिर से करीब 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। इंडियन ऑयल के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में पेट्रोल की कीमत अब बढ़कर 98.64 रुपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल की कीमत 91.58 रुपये प्रति लीटर हो गई है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से होगा। कल रात चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.8 मेगाहर्ट्ज और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए पेश है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत निर्झर।

बेहद स्वागत आप सभी का आज के गीत निर्झर कार्यक्रम में। कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को शीला दुर्गापाल का नमस्कार। कार्यक्रम का पहला गीत आप सब के नाम। ये मंजिल भी उसी की है, ये रास्ता भी उसी का है। नज़र उसने अगर दी है, नज़रिया भी उसी का है। वो मेरे हक़ में जो भी फ़ैसला लेगा सही लेगा। ये कश्ती भी उसी की है, ये दरिया भी उसी का है।

कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया था साजन का घर फिल्म से कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में। गीतकार थे समीर और संगीतकार थे नदीम श्रवण। इस गीत की फरमाइश हमारे पास आई थी मानपुर साबिर ज़िला मुरादाबाद से शेख ज़ियाउर रहमान, शेख अताउर रहमान, शेख हबीबुर रहमान, कोटवा नारायणपुर बाला बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबीहा नेवादा ज़िला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय, शेरपुर कला ज़िला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय, जीटीबी मार्केट अहमदगढ़ मंडी पंजाब से मोहम्मद अनवार अंसारी, रवीना आफिया, सना समा, हिना सकीला, जैस्मीन राजिया सुल्ताना, अख्तर अंसारी, सुराज मोहम्मद, जावेद अंसारी और गांव चौहलदा बागपत से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया, छोटी बलिया मुंबई करजत से अहमद भाई फूलवाले, दुखना सदफ, जूही इकबाल, इमरान अहमद फूलवाले, कापर हेड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से आमना नसरीन बागवान, आसमा परी, राबिया और आशु अहमद फूलवाले।

है? रवि और इंदर ने बंगाल से, दतरंगी भाटापाड़ा छत्तीसगढ़ से, हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, अनोखे लाल वर्मा, दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से, मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहमद, निफरा नवाज और बेबी चाहत, मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट ज़िला बिजनौर से, मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी, हिना कौसर, ज़िला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से, मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बौडाना और आदलपुरा गोगांवा से, संजय बामनिया, माया कान्हा और कृष्णा ने। लीजिए, आप सब की फरमाइश पर पेश है माय नेम इज खान फिल्म का गीत, शफकत अमानत अली की आवाज़ में।

0: उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: गीत निर्झर कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमारे पास आई है पलारी छत्तीसगढ़ से। नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, तनुजा देवांगन और ईशान देवांगन की। इसी गीत को सुनना चाह

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शी भर्तियों में 28,000 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी। राज्य ने G20 समिट, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और 38वें राष्ट्रीय खेल जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का भव्य और सफल आयोजन किया और राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर अपनी खास पहचान बनाई।
2: संकल्प बेहतर उत्तराखंड कायम की एक नई मिसाल। उत्तराखंड का हर घर अब देखो हो रहा खुशहाल।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की नगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: दोस्तों, आज हम याद कर रहे हैं भारतीय रंगमंच के जाने माने कलाकार गिरीश कर्नाड साहब को। उन्होंने हिंदी सिनेमा में भी अपने अभिनय की खूब धाक जमाई थी। आज उनकी जयंती है। उन्होंने नाटककार, अभिनेता, फिल्म निर्देशक के रूप में 1970-80 के दशक में पैरेलल सिनेमा और भारतीय रंगमंच को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और मंथन, निशांत, स्वामी, उत्सव, पुकार, डोर, एक था टाइगर और इकबाल जैसी यादगार फिल्मों से हिंदी सिनेमा को संवारा। उन्हें याद करते हुए उनके निर्देशन से सजी फिल्म उत्सव का ये गीत सुनवाने का अनुरोध हमसे किया है रोहिदास चौक पंढरपुर सिटी से सुनीता शिंदे, प्रशांत शिंदे, यशराज शिंदे, ऋषि शिंदे, कृष्णा घोटके, नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी, नर्मदा पार्क मंगलवेड़ा से मास्टर अलीम पटेल, मुजाहिद पटेल, नदीम पटेल, एमएलटी रोड ग्वालियर से सुरेश खुनाना, किरण खुराना, लव्या, आरव, मेघा, साक्षी, आशीष, अनुज, विशु, छोटे और एसके खुराना, ओम रेडियो श्रोता संघ कोली नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार गायकवाड़ और साई गायकवाड़, और वीरम गाम गुजरात से अजीत भावसार, प्रमिला भावसार, भावेश सनी, जैमिन भावसार। और इसी गीत के लिए हमारे पास फरमाइश आई है भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिम्पा, कपिल छिम्पा और पूजा परिहार की। तो लीजिए पेश है आप सबकी फरमाइश पर उत्सव फिल्म का गीत लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाज़ों में।

0: चाहिए, वो भी ऐप से।
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, देवी आराध्या साहू। शास्त्री नगर बीड़ शहर से किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया सपकाल, साईंराज सपकाल, विशाल सपकाल। माल टेकड़ी अमरावती से प्रशांत ढेकरे, वर्षा ढेकरे, श्रद्धा ढेकरे। धनौरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू। नई दिल्ली टैगोर गार्डन से रविंद्र सिंह छावड़ा, इंद्रजीत कौर छावड़ा और स्वीटी छावड़ा। और ज़िला नांदेड़ एताला महाराष्ट्र से शंकरलाल जायसवाल, गणेशलाल जायसवाल, शुभम प्रसाद जायसवाल, कुमारी दुर्गेश्वरी जायसवाल। छत्तीसगढ़ सरगांव बाज़ार से नसीब मोहम्मद, हबीब मोहम्मद, इरफान मोहम्मद। और छत्रपति संभाजी नगर से राजेश सावले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश। पार्थ रेडियो क्लब छत्रपति संभाजी नगर से राजेश सामले पाटिल और इनके परिवार के सभी सदस्य। आप सभी ने सुनना चाहा है गोरा और काला फिल्म का गीत, मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारे लाल।

0: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमने ली है साधना सरगम की आवाज़ में। फिल्म का नाम है दिल का क्या कसूर और इस गीत की फरमाइश हमारे पास आई है मनाली हिमाचल से हर्ष, विनय, विनीत और रोजस की। चंडीगढ़ से शेफाली, शेफी, डेविस, विमला और सतीश अनेजा। फातिमा कॉलोनी महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद शाहिद। गोविंदपुरा अहमदनगर से जुनेद मुजावर, सबीहा मुजावर, मिखाइल, जैनब मुजावर। रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश से विजय महोबिया, कविता महोबिया, विशाल, विवेक, सोनू, मोनू, रानू, ईशु बाबा, सपना, शिवी, सलोनी और पेंटर बाबू। सदर बाजार मारवाड़ बिलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण चौहान, प्रतीक चौहान। और इसी गीत को सुनना चाहा है संदीप मक्कर, ज्योति मक्कर, मन्नत मक्कर, भारत मक्कर, कमल साहनी, पिंगावाला चौक, गोरिया, जालंधर से। लीजिए पेश आप सबकी फरमाइश पर साधना सरगम की आवाज़ में दिल का क्या कसूर फिल्म का ये गीत।

कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमारे पास आई है तेली पारा बिलासपुर छत्तीसगढ़ से गुणवंत श्रीवास, श्रीमती कमला श्रीवास, आयुष श्रीवास, विवेक श्रीवास, बेबी आयुषी श्रीवास, कोरबी बेलतरा छत्तीसगढ़ से मोहन सिंह राज, अनीता राज, सुमित, सोनू, मानस राज, ग्राम धुर्रा बांधा भाटापारा से प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, नवीन कुमार साहू और युवराज साहू, खमहरिया छत्तीसगढ़ से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, प्रतीक राय, नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नहावकर, निर्मला नहावकर, विशाल नहावकर, मलकापुर से नारायण इंगले, राजकुमार खर्चे, आशीष मोहेरकर, आप सभी ने सुनना चाहा है धरती फिल्म का गीत मोहम्मद रफी की आवाज़ में। लीजिए पेश है आप सबकी फरमाइश पर ये गीत।

रहाट गांव कैंप अमरावती महाराष्ट्र से हर्षा रामेकर, दिलीप रामेकर, अक्षय रामेकर, रुद्रा रामेकर, रुचिका रामेकर, रामेकर परिवार पूरा, और गांव चौहलदा बागपत से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया, पटियाली रोड गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से एम खलील कुरैशी, नुसरत बेगम, आकिल कुरैशी, एजाद कुरैशी, बेबी अरीबा हबीबा, मॉडल टाउन करनाल से सुधीर, नूतन, संदीप, गुंजन, जगमोहन, प्रजापति, प्रतिभा शर्मा, ईशप्रीत शर्मा, सुहानी शर्मा, किरण ठाकुर, बिपाशा शर्मा, सोनिया कायका, जिला नादेड़ एनाला महाराष्ट्र से शंकरलाल जायसवाल, गणेशलाल जायसवाल, शुभम प्रसाद जायसवाल, कुमारी दुर्गेश्वरी जायसवाल, अडार नाद घाट छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी, भूपेश, दीपेश वर्मा, और ग्राम खड़कुना ज्योली अल्मोड़ा से दिव्यांशु लोहनी, प्रमोद लोहनी, खगेश लोहनी, मुकेश लोहनी, ज्योति, भूमिका लोहनी, अमरनाथ लोहनी, सुरेश लोहनी, मानस तिवारी, देवांश तिवारी, भरत, कुलदीप और इनके परिवार के सभी सदस्य। आप सभी ने सुनना चाहा है बैराग फिल्म का गीत आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

ये फरमाइश हमारे पास आई है कोल सिटी बरका काना से, अफजल ताज, शाहीन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, कमल कुमार, एमडी अफजल मलिक, भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, श्रीमती अर्चना जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, श्रीमती बानी चावला, लोकेश जोशी, श्रीमती पायल जोशी, मुरली छत्री, श्रीमती कविता छत्रिय, मिथिलेश यदू, दशरथ साहू, कुमारी अंकिता, बेबी वैदेही, और खंडवा मध्य प्रदेश से अब्दुल गफ्फार डाबर, चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा, गाड़गे नगर यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पनाताई लोखंडे, शैलेश लोखंडे, प्रतीक्षा लोखंडे, स्वप्निल लोखंडे, रक्षिता लोखंडे और इनका पूरा परिवार, नांगचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डाबर, अब्दुल हक डाबर, जियाउल हक डाबर, मोहम्मद उमर डाबर और राजेंद्र कटारे, भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी और पायल जोशी, कुंभार गली श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, रोहिणी दले, श्रीकेश दले, जीविका दले पुनावले पुणे से अजय सोनवने, करिश्मा सोनवने, अविका सोनवने, विशाखा सोनवने, सनावत से शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा, राजकुमार बौड़ाना और जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना अंसारी और मोहम्मद कैफ अंसारी। आप सभी ने सुनना चाहा है लता मंगेशकर की आवाज़ में एक महल हो सपनों का फिल्म का गीत, गीतकार साहिर और संगीतकार रवि।

कार्यक्रम की आखिरी फरमाइश हम ले रहे हैं गांव नंगलखेड़ा फगवाड़ा पंजाब से बालकृष्ण शर्मा, प्रवीण शर्मा, मुनीश शर्मा, राहुल शर्मा। फुटानी चौक नरहन स्टेट से ललन मिश्रा, उदयकांत ठाकुर, अमन पारासर, बेबी आराध्या, लल्लू पंडित। नरहन बाजार से भाई फटफटिया झा, गुंजन पारासर, अमित सुमित और छोटू, और इनके साथ हैं बीके सुरगनिया। ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेन नेताम, कुसुम नेताम, रोनिका और उत्कर्ष नेताम। और इसी गीत की फरमाइश हमारे पास आई है विदर्भ श्रोता क्लब जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना काले, प्रज्वला मेशराम, आदेश कुमार काले और प्रोफेसर वसुधा वजेसेन की। आप सभी ने सुनना चाहा है जाने अनजाने फिल्म का गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। तो लीजिए पेश है आप सब की फरमाइश आपके लिए।

0: खोए खोए सपने भी दिलबर आज मिल गए मिल गए मिल गए।
1: मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के गाए जाने अनजाने फिल्म के इस गीत के साथ ही आज का गीत निर्जय कार्यक्रम यहीं पर संपन्न करने की शीला दुर्गापाल को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्म गीतों का कार्यक्रम गीत निर्झर FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। पूर्वाहन के 10 बजने वाले हैं। अब आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे।
1: इंद्रप्रस्थ चैनल है, 10 बजने को हैं, कुछ ही क्षणों में आप समाचार सुनेंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे की यात्रा के दूसरे दिन आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। अधिक जानकारी ओस्लो से हमारी संवाददाता से।
3: भारत और 5 नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में आज तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़े हुए क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करेगा। 2022 में डेनमार्क के कोपेनहेगन में पिछला सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी और नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण, यह चर्चा के मुख्य क्षेत्र हैं। प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज़, ओस्लो, नॉर्वे।
2: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों को व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत 100 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश लक्ष्य को प्राप्त करने और भारत में 10 लाख रोजगार सृजित करने के लिए प्रयास करने चाहिए। प्रधानमंत्री कल ओस्लो में आयोजित भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। क्राउन प्रिंस हाकोन और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गहर स्टोरे भी इस शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते TEPA के लागू होने के बाद द्विपक्षीय व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
4: यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूनिक और स्पेशल एग्रीमेंट हमारे बीच टैलेंट, टेक्नोलॉजी और म्यूचुअल ट्रस्ट का एग्रीमेंट है। इसी एग्रीमेंट के माध्यम से एफ्टा कंट्रीज से भारत में अगले 15 वर्षों में $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब क्रिएट करने का लक्ष्य है।
2: प्रधानमंत्री ने भारत के हरित परिवर्तन पर बल देते हुए देश के विकास, बढ़ती ऊर्जा मांग, जलवायु प्रतिबद्धताओं और नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रिड अवसंरचना, हरित हाइड्रोजन और स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार का उल्लेख किया। शिखर सम्मेलन में 50 से अधिक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और भारत तथा नॉर्वे के व्यापार और अनुसंधान समुदायों के 250 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से भी मुलाकात करेंगे। रक्षा

0: राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया है। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन वो परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ने पिछले वर्ष 12 अगस्त को इस समिति का गठन किया था। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय को मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आधिकारिक आदेश जारी कर निदेशालय को घोष के खिलाफ कथित वित्तीय अनियमितताओं और धन शोधन के आरोप में मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। कल रात चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ हैदराबाद ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। लीजिए पेश है सुगम संगीत का कार्यक्रम सब रंग। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं पंकज उधास के गाए इस गजल के साथ।

0: इश्क में।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
2: अनजान ऐप से बचें।
3: आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: सुगम संगीत का कार्यक्रम सबरंग इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से। लीजिए सुनिए आशा भोसले को।

0: उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: सुगम संगीत का कार्यक्रम सदरंग इस वक्त आप सुन रहे हैं।

आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं हरिहरन को। कलाम है इब्राहिम अश्क का।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

चंदन दास की गाई निदा फाजली की इस रचना के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम सबरंग अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.8 MHz पर। पूर्वाहन के 10:30 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से रिले किए जाएंगे।

तेल विपणन कंपनियों ने लोगों से अपील कर कहा, प्रदेश में पेट्रोल, डीजल एवं रसोई गैस सहित सभी पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता सामान्य बनी हुई है। कंपनियों ने लोगों से अपील करते हुए कहा, अफवाहों के आधार पर पेट्रोलियम पदार्थों की खरीद न करें। कंपनियों ने लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा कि टर्मिनलों एवं डिपो से लेकर रिटेल आउटलेट्स तक संपूर्ण ईंधन आपूर्ति श्रृंखला सुचारू एवं प्रभावी रूप से संचालित हो रही है और कहीं भी किसी प्रकार का व्यवधान नहीं है। राज्य के सभी स्थानों पर ईंधन स्टॉक की निरंतर निगरानी की जा रही है। सभी कार्य सुचारू रूप से जारी हैं। उन्होंने कहा कि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी की आपूर्ति को प्राथमिकता दी जा रही है और राज्य भर में इसकी उपलब्धता सामान्य बनी हुई है। सभी उपभोक्ताओं तक निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है। चारधाम यात्रा और उच्च हिमालयी क्षेत्रों में सुरक्षित हवाई सफर के लिए उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम जल्द शुरू करेगा। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण के कार्यकारी अधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने कहा कि चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए राज्य सरकार आधुनिक तकनीक और सुरक्षा व्यवस्थाओं को लगातार मजबूत कर रही है। श्री चौहान ने कहा कि ATC प्रणाली शुरू होने के बाद उच्च हिमालयी क्षेत्रों में हेली सेवाएं

0: और अधिक सुरक्षित, भरोसेमंद और सुव्यवस्थित होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सेंटर अहम भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि इस आधुनिक नियंत्रण केंद्र में DGCA मौसम विभाग और यूकाडा की विशेषज्ञ टीम तैनात है, जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ समन्वय स्थापित कर हेली सेवाओं की निगरानी कर रही है। केंद्र से प्रत्येक हेली रूट, हेलीकॉप्टर ट्रिप और शटल सेवाओं की रियल टाइमिंग मॉनिटरिंग की जा रही है। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में बेहतर यातायात और पार्किंग व्यवस्था पर जोर दिया जा रहा है। आवास विभाग ने विभागीय व्यय समिति की बैठक में चमोली के गैरसैंण और जनपद बागेश्वर के कांडा में मल्टीलेवल पार्किंग निर्माण परियोजनाओं को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। आवास एवं राज्य संपत्ति सचिव डॉ आर राजेश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक में गैरसैंण और बागेश्वर जनपद के कांडा में मल्टीलेवल पार्किंग बनाने की परियोजनाओं पर चर्चा की गई। श्रमिकों को बेहतर सुविधाएं और सम्मानजनक मानदेय देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। ये बात श्रम आयुक्त उत्तराखंड प्रकाश चंद दुमका ने की। श्रमिकों के धरने प्रदर्शन की घटनाओं के बाद श्रम विभाग ने कहा कि श्रमिकों के अधिकारों और उनकी सुरक्षा के प्रति सरकार पूरी तरह संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि सरकार ने श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में वृद्धि लागू की है और उद्योगों को ओवरटाइम बोनस और अन्य सुविधाएं समय पर देने के भी निर्देश दिए हैं। चमोली में जिलाधिकारी गौरव कुमार ने धरती आवा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान 2026 का शुभारंभ किया। इस अभियान के तहत चमोली के मलारी, गमशाली एवं माड़ा ग्राम पंचायतों में 20 से 22 मई 2026 को विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे, जहां विभिन्न विभागों द्वारा आमजन को योजनाओं की जानकारी एवं लाभ उपलब्ध कराया जाएगा। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि ये अभियान दूरस्थ तथा सीमांत जनजातीय क्षेत्रों तक सभी सरकारी योजनाओं को प्रभावी रूप से पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जिला समाज कल्याण अधिकारी धनंजय लिंगवाल ने कहा कि शिविरों में समाज कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्य, बैंकिंग, आधार, पेंशन, आयुष्मान, स्वरोजगार एवं अन्य विभागों की सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे जनजातीय समुदाय को योजनाओं से लाभान्वित हो सकें। चंपावत जिले में एग्रीस्टेक योजना के तहत किसानों की फार्मर रजिस्ट्री अभियान को रफ्तार देने के लिए गांव में पंजीकरण कर्मी तैनात किए जाएंगे। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने कहा कि इस नई व्यवस्था के तहत ग्राम रोजगार सेवक पंचायतों में तैनात डाटा एंट्री ऑपरेटर किसानों का पंजीकरण कराने में मदद करेंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 1:05 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: FM 100.8 MHz पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर बहार।

कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को शीला दुर्गापाल का नमस्कार। दोस्तों, सुर बहार कार्यक्रम में एक ही फिल्म के तहत आज हम लेकर आए हैं साल 1967 में रिलीज हुई सुपरहिट फिल्म मिलन के चंद सुरीले नगमे। दोस्तों, मिलन फिल्म भारतीय सिनेमा की उन यादगार फिल्मों में से एक है जो प्रेम, पुनर्जन्म और वियोग के दर्द को बेहद संजीदगी से छूती हैं। ये फिल्म तेलुगु फिल्म मूणा मनसुलु का रीमेक थी, जिसका निर्माण किया था एलवी प्रसाद ने और निर्देशन था अदुर्थी सुब्बा राव का। आइए सुनते हैं समय की सीमाओं से परे सच्ची मोहब्बत का एहसास जगाता मिलन और जुदाई के मिले जुले जज्बात से भरा रूह में समाता ये गीत, जिसे स्वर दिया है लता मंगेशकर और मुकेश ने।

दोस्तों सुपरहिट फिल्म मिलन अपने अमर गीत संगीत के लिए भी खूब याद की जाती है। इसके हर गीत में एक नई कहानी बयां होती है। इस फिल्म की कहानी में गीतकार आनंद बख्शी के लाजवाब गीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का सदाबहार संगीत और दर्द के बादशाह मुकेश साहब के साथ लता जी की जुगलबंदी में प्यार मोहब्बत बीते वक्त की याद और अधूरी मोहब्बत का अनकहा दर्द बेहद खूबसूरती से पिरोया गया है। आइए सुनते हैं एक और सदाबहार गीत इस फिल्म का, जिसे आवाज़ दी है लता मंगेशकर ने।

0: उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: आकाशवाणी अल्मोड़ा से इस वक्त आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरबहार, और इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं सुपरहिट फिल्म मिलन के सदाबहार नगमे। दोस्तों, मिलन फिल्म की कहानी पुनर्जन्म की थीम पर आधारित है, जिसमें समाज की बंदिशों के कारण बिछड़े दो प्रेमी दिलों की जन्म जन्मांतर तक चलने वाली मोहब्बत को फिल्माया गया है। सच्ची मोहब्बत, इंतज़ार और किस्मत के ताने बाने में बनी इस फिल्म की कहानी दर्शकों के दिलों में एक कसक छोड़ जाती है, और फिल्म में समाया मासूम मोहब्बत का सच्चा एहसास दिल छू लेता है। पेश है लता मंगेशकर की सुरीली आवाज़ से सजा ये गीत।

दोस्तों 1970 के दशक की बेहतरीन फिल्मों में शामिल मिलन फिल्म के लोकप्रिय गीतों ने गीतकार आनंद बख्शी को सफलता की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। लाजवाब अदाकारा नूतन को इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्मफेयर पुरस्कार मिलने के साथ ही संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का फिल्मफेयर पुरस्कार प्राप्त हुआ। आइए सुनते हैं मुकेश साहब की गायकी के नए अंदाज से सजा बरखा की रिमझिम फुहारों के साथ मोहब्बत का खुशनुमा एहसास जगाता तन मन को रोमांचित करता ये गीत।

दोस्तों, सुपरहिट फिल्म मिलन बीते पलों की खुशबू बिखराती, खुशी के साथ दर्द का एहसास जगाती, अपनेपन और अनकहे प्रेम से सजी देखने वालों को सुकून देने के साथ ही आंखों को नम भी कर जाती है। युगों युगों से चली आ रही मोहब्बत की दिल छू लेने वाली दास्ता के साथ दर्शकों का ये फिल्म भरपूर मनोरंजन करती है। कार्यक्रम के समापन में आइए सुनते हैं मुकेश की आवाज़ से सजा मोहब्बत की दीवानगी का बखान करता ये गीत।

सुरबहार कार्यक्रम में आज आपने मिलन फिल्म के चंद सुरीले नगमे सुने और अब मुकेश के गाए इस गीत के साथ ही शीला दुर्गापाल को आज का कार्यक्रम यहीं पर संपन्न करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरबहार, आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। सुबह के 11 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

के शान और साथियों की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे ज़मीन फिल्म का गीत। गीत लिखा था समीर ने और संगीत दिया था हिमेश रेशमिया ने। आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। सैनिक भाइयों और आप सभी को सुनवाते हैं निखिल विनय के संगीत निर्देशन में समीर का लिखा, उदित नारायण और अलका याग्निक का गाया मुस्कान फिल्म का गीत।

जाने मन चुपके चुपके सारी दुनिया से छुपके तुमने ऐसी बात कही, दिल मेरा खो गया।

जाने मन चुपके चुपके सारी दुनिया से छुपके तुमने ऐसी बात कही, दिल मेरा खो गया।

मुस्कान फिल्म के इस गीत के बाद आइए फौजी भाइयों आप सभी को सुनवाते हैं सोनू निगम, महालक्ष्मी अय्यर और साथियों का गाया बंटी और बबली फिल्म का ये गीत। गीत लिखा है गुलजार ने और संगीत दिया है शंकर एहसान और लॉय ने।

तुम फिल्म के इसी गीत के साथ सैनिक भाइयों, अब आज का हमारा फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। कल फिर से इसी कार्यक्रम में आपके साथ होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत सैनिकों के लिए। एफएम बैंड 100.8 मेगाहर्ट्ज और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 11:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है गढ़वाली और कुमाऊनी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकसुर।

कार्यक्रम के आरंभ में अभी आप सुन रहे थे शांति जोशी का गाया ये कुमाऊनी लोकगीत। आइए अब आपको सुनवाते हैं अनीशा गोसाई का गाया ये गढ़वाली लोकगीत।

0: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी वही सुकून वाली वाइब म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज
1: लोक सुर कार्यक्रम में आइए श्रोताओं अब आपको सुनवाते हैं रवि गोसाई का गाया ये गढ़वाली लोकगीत

रवि गुसाई के गाए इस गढ़वाली लोकगीत के बाद आइए अब आपको सुनवाते हैं कुसुम नैथानी के स्वर में ये लोकगीत।

प्रकाश रावत के गाए इसी कुमाऊनी लोकगीत के साथ अब आज का हमारा लोकसुर कार्यक्रम श्रोताओं यहीं पर संपन्न होता है। FM बैंड 100.8 मेगाहर्ट्ज और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12 बजे हैं। लीजिए पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम मेरी पसंद।

लीजिए श्रोताओं, हाजिर हूँ मैं एक बार फिर से फिल्म संगीत का आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम मेरी पसंद लेकर। सभी श्रोताओं को कविता का प्रेम भरा नमस्कार। दोस्तों, एक नए विषय के साथ और कुछ मनोरंजन से भरे गीतों के साथ शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम, हमारी जीवन की बगिया। जी हाँ दोस्तों, हमारी जीवन की बगिया में रिश्ते क्या महत्व रखते हैं, क्या हैं ये रिश्ते? आपसी रिश्तों में सामंजस्य और सहचर्य किस तरीके का हो? ऐसे सवाल जो दिल दिमाग में कभी न कभी हर किसी के मन में उलझन तो पैदा करते ही होंगे। तो चलिए आज थोड़ी सी बातचीत अपने आपसी रिश्तों के बारे में। दोस्तों, ऐसा इसलिए क्योंकि हम कई बार अपने संबंधों को लेकर सजग होते हैं, इसीलिए ये उथल पुथल हमारे मन में हमेशा कौंधती रहती है और कई बार कुछ रिश्तों का महत्व ही नहीं समझ पाते। आधुनिकता के इस दौर में तो रिश्तों की महक कहीं खो सी गई है और जीवन की बगिया में रिश्तों का फूल मुरझाने की कगार में आ खड़ा हुआ है। लेकिन आज भी कई दिलों में आने वाले समय में रिश्तों को लेकर नए सपनों का पुल खड़ा हो ही जाता है, या यूं कहें हो ही रहा है। तो चलिए आधुनिकता के इस दौर में भी अपने रिश्तों के फूल से जीवन की बगिया में चार चांद लगाएं इस प्यारे से कार्यक्रम के पहले गीत के साथ।

दोस्तों आज इस कार्यक्रम में, जी हाँ मेरी पसंद कार्यक्रम में, आपके साथ हम बातचीत कर रहे हैं रिश्ते और आधुनिकता के बारे में, क्योंकि हमारा ये मानना है कि आज के इस युग में समाज में रिश्तों का एक अलग ही दृश्य बनता जा रहा है और जीवन के हर रिश्ते की पावनता अलग रूप ले रही है। दोस्तों रिश्ते जीवन का अहम हिस्सा है, इसलिए इस विषय पर बात करना भी उतना ही जरूरी बनता है। आधुनिकता की इस चकाचौंध में हम अपनी सभ्यता, संस्कृति और संस्कारों को दरकिनार करके आगे बढ़ रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए। श्रोताओं, हमारे भारतीय समाज में कोई भी धर्म या संप्रदाय हो, उसके लिए रिश्तों को जीवन भर अपने पास रखने के लिए ये तीनों शब्द काफ़ी महत्व रखते हैं। जी हाँ, सभ्यता, संस्कृति और संस्कार। और युवा पीढ़ी के पास सभ्यता, नैतिकता, संस्कारों की कमी है, ऐसा कहकर हम पूरा दोष नई पीढ़ी में डाल लें और अपना पल्ला झाड़कर रिश्तों का अपमान करें, ये सही नहीं। युवा पीढ़ी में प्यार, शिष्टाचार और अपनेपन का सही बीज बोकर ही आने वाले समाज में हम रिश्तों को नई दिशा दे सकते हैं। दोस्तों जब बच्चा छोटा होता है तो उसका दिमाग कोरा पन्ना होता है। आप उसको जिस प्रकार से संस्कार और शिक्षा देंगे वो उसी राह पर आगे बढ़ेगा। और दोस्तों हमारा तो ये मानना है कि बाल्यकाल में बुजुर्गों द्वारा दी गई शिक्षा का उम्र भर बहुत बड़ा हाथ होता है। किस तरीके से अपने रिश्तों में प्यार के बीज बोने हैं ये हमें बचपन से ही सीखने को मिल जाता है। तो अपने बच्चों को अच्छी राह पर लाने के लिए, रिश्तों का महत्व समझाने के लिए अभी से कोशिश में लग जाइए और साथ ही सुनते रहिए आकाशवाणी से ये प्यारा प्यारा संगीत।

0: उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: संकल्प बेहतर उत्तराखंड का, कायम की एक नई मिसाल। उत्तराखंड का हर घर अब देखो हो रहा खुशहाल।
2: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
3: पारदर्शी भर्तियों में 28,000 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी। राज्य ने G20 समिट, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और 38वें राष्ट्रीय खेल जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का भव्य और सफल आयोजन किया और राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर अपनी खास पहचान बनाई।
1: संकल्प बेहतर उत्तराखंड कायम की एक नई मिसाल। उत्तराखंड का हर घर अब देखो हो रहा खुशहाल।
3: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की नगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
4: इस अंतराल के बाद स्वागत आप सभी का एक बार फिर से फिल्म संगीत के कार्यक्रम मेरी पसंद में। दोस्तों, आज हम मेरी पसंद कार्यक्रम में रिश्तों और आधुनिकता के बारे में जो आपसे चर्चा कर रहे हैं, वो इसलिए भी क्योंकि आपसे भी हमारा एक प्यारा सा रिश्ता है जिसे हम कभी भी खोना नहीं चाहते। और हमारे आकाशवाणी से प्रसारित कार्यक्रमों को सुनने और समझने के लिए बहुत ज़्यादा समय की आवश्यकता नहीं है आप सबको। बस अपना महत्वपूर्ण कार्य करते रहिए और हमसे रिश्ता बनाए रखिए अपने कानों के द्वारा। यही तो है इस रिश्ते की खासियत। दोस्तों, रिश्तों का नजरिया न बदले इसलिए मनोरंजन का ये सफर नए विषय के साथ हमेशा आपके साथ होता है और गीतों के माध्यम से कहीं अनकहीं बातों को हम आपके सामने रख ही देते हैं। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम में ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओ, आज के मानव जगत में हर कोई अपने को दूसरों से श्रेष्ठ बताने के लिए किसी न किसी रूप में अपने आप को प्रदर्शित करने का प्रयास करते रहते हैं, चाहे फिर तरीका गलत हो या फिर सही। अनजान लोगों को अपने पास लाने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए कई तौर तरीकों का उपयोग समाज का आईना बनता जा रहा है। लेकिन दोस्तों, क्या हमने कभी सोचा है कि इन्हीं तौर तरीकों का उपयोग अगर हम अपने आपसी रिश्तों को पक्का करने के लिए करें तो सामाजिक रूप में एक सफल व्यक्तित्व ही सामने आएगा। आधुनिक रूप में अगर रिश्तों में किसी निजी स्वार्थ का तलाश ना हो तो सच्चे सुख दुख के साथ ही ये रिश्ते इस धरती को फिर से पावन कर देंगे। फिर से शायद इस धरती पर रामराज्य लौट आएगा।

दोस्तों, हर रिश्ते को समर्पण की आवश्यकता होती है, चाहे फिर वो पति पत्नी का रिश्ता हो, बच्चों और माँ बाप का, या भाई बहन का, या फिर कुछ बच्चों के स्कूल का। जी हाँ दोस्तों, बच्चा स्कूल में केवल गणित, अंग्रेजी, विज्ञान जैसे विषयों में निपुण होता है, और आज के आधुनिक दौर में तो हम इन विषयों पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। जोर न देकर शिष्टाचार, नैतिकता और संस्कारों पर जोर देंगे ना, तो एक सफल और समृद्ध व्यक्तित्व निखर कर आएगा, जो आने वाले समाज में अपने रिश्तों के प्रति संवेदनशील होगा और समाज का एक सुखद निर्माण करेगा। इसी विचार के साथ अब आज का मेरी पसंद हमें यहीं पर संपन्न करने की अनुमति दीजिए। कल इसी कार्यक्रम में फिर से नए विषय के साथ आपके मनोरंजन के लिए कुछ गीतों के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम मेरी पसंद। दोपहर के 12:30 हुए हैं। अब महिलाएं सुने अपना कार्यक्रम अर्पण।

स्वागत छू आपू सबने ओक कार्यक्रम एपण में कार्यक्रम सुनने सदा दीपाणी कहें प्रभा पांडे नमस्कार। देखो खत्म भय आपू और हम इंतजारी और हमें पुज्ञा कार्यक्रम एपण ले आपू सब स्वस्थ होने ला कुशल मंगल होने ला। बस देखो हम ले यही चाहें कि आपू सब स्वस्थ रहो कुशल मंगल रहो इसी के आपू सबने प्यार हमारे कार्यक्रम के मिलते रहो। देखो कोई ला देशक आर्थिक विकासक रीढ़ छू शिक्षा। आर्थिक विकास में शिक्षा अपन महत्वपूर्ण हिस्सा छू। मनुखों के लिए रोजगार और विक साधन और देश बैठी गरीबी दूर करना के लिए शिक्षा बहुत जरूरी छू। किला कि जब हम शिक्षित होते तबे हम सही ढंग रोजगार अपन लिए खोज सकूँ। रोजगार को हमारे लिए सही छी और कति हम इनके भल ढंग कर सकलूँ यह सब बातों ध्यान दें बहुत जरूरी छी और यह हम तब दे सकूँ जब हम शिक्षित हों। फिर चाहे रोजगार हो या अपन हम खुदक स्वरोजगार सब न लीजिए शिक्षा छी तब ते वो आत्मनिर्भर बढ़ो देशा विकास लीजिए। देखो दियो शिक्षा और रोजगार दियो जरूरी छे। फिर चाहे ठूल हो या नान हो शुरुआत में जब हम घर है भय जब कोई काम करना के लीजिए यानी तो थोड़ा मन में डर ले हमन के लग दगड़ में घर परिवार और ले बहुत कुछ हमन दगड़ जुड़ी हों लेकिन शिक्षा में हमें बहुत मदद करे यो हमन के सही दिशा तरह बढ़ में मदद करेंगे। किला की दगड़ियों आत्मनिर्भर भारतक अर्थ केवल देशक स्वयं खुदक आर्थिक स्थिति ठीक होने दगड़ दगड़े यो लक्ष्य कि दगड़ में हर मन की आत्मनिर्भर होना जरूरी है। महात्मा गांधी युगल चिंतन और उन्हें स्वदेशी भावना और बुनियादी शिक्षा में स्पष्ट रूप देखना मिले। दिव्यणी कुछ ज़्यादा दूर नहीं जब कुछ वक्त पहले की अगर हम बात करूं तो कोरोना महामारी में आत्मनिर्भरता तरफ एक बार फिर हम बढ़ने लग गए और अपन खुद का स्वरोजगार ढूंढ बैठ हम अपने गौनों में रहकर रोजगार करेंगे। देखो मनखी के जीवन पर जीवन में उसी ले दूसरे पर भरोसा नहीं करवे आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में कहते हम आत्म सहायता ही भी जीवन का पहल सिद्धांत और आदर्श होनी चाहिए। जब हम अपने खुटा पर ठाड़े पे कोई काम करूँ जब काम को काम करने में हम उनका फिर भल लाख और माठू माठू कहे वो हमारे आदत में शामिल रहेगा। किले की दगड़ियों हम उस समाज में रहूँ जहाँ पारस्परिक सहायता और सहयोग का भावना दगड़े में हम दगे हिते यो एक हाथ दियूँ तो दूसरा हाथ लूँ लो यानी कि आत्मनिर्भरता भारत का अर्थ यही चूँकि खुद पर निर्भर हो यानी खुद पर आप खुटा पर ठा हो और कह पर भारत में हमें देखें कि हमारे संस्कृति के देखते हुए हम यह न जानूँ कि प्राचीन काल बटी हमारे देश आत्मनिर्भर रही चूँ और आत्मनिर्भरता का तरफ आखिर का बढ़ो हमारे देश अगर आत्मनिर्भर हो तो भी लीजिए हमन गले अपन शिक्षा पढ़ाई लिखाई और दगड़ में स्वरोजगार सब में मन लगे फिर अखिल का बन पाओ। यह बात है कि हम सब जानो कि शिक्षा महत्ता गए शिक्षा महत्व गए हम कोई ना क्षेत्र में नहीं वो हम नकार नहीं सकूँ हम चारों ओर शिक्षा के आविष्कार शिक्षा के बारे में हम देखो कोई ना खोज हो उन्हें सब है मुख्य भूमिका शिक्षा छो हम पढ़ाई लिखाई छो असंभव काम गले संभव हूँ तो उमें ले शिक्षा ही महत्वपूर्ण छू। अगर हम कोई ला विकसित और आत्मनिर्भर देश पर हम देखूँ तो हम देख लूँ कि शिक्षा ही चीज जो हम आत्मनिर्भरता तरफ आखिर का बढ़ो तो कार्यक्रम में आप देखा और ले बातचीत हम करूँ लेकिन यह पहली हम मन आखिर का बढ़ लूँ और कर लूँ आप मनोरंजन और सुन लूँ योगी

0: स्वागत है एक बार फिर आप सबने यह कार्यक्रम में। लेकिन अब कार्यक्रम में मैं अखिल कर वर्ण और सोनो क्षेत्र संकलित पहल वार्ता हम विषय छे आर्थिक निर्भरता और शिक्षा वास्तविक सशक्तिकरण विषय पर श्रीमती रेखा भट्ट पिथौरागढ़ दगड़ करी गई यह हमारे क्षेत्र संकलित बातचीत।
1: रोजगार आगे बखत में एक ऐसा रोजगार हमारे हाथ में से ये स्वरोजगार माध्यम जब मन की खुद लिजी काम करूँ और खुद अपन व्यवसाय चलूँ और पूरा रूपल वो एक मालिक हूँ और ये मैं वो स्वतंत्र रूपल काम करूँ पर वो चाहे फिर पारंपरिक रोजगार हो या फिर अपन मन पसंद कोई नहीं है रोजगार जब हम दिलचस्पी छो जगह हम गो अपन मन वो करण चाहूँ चाहे आपको खुद काम करना की दिलपण नहीं हो लेकिन यह शुरुआत हमको करना पड़े और तभी हम आपन और अपन घर परिवार और सबसे ठोस चीज छे कि हम आपो लीजिए सोच सकें क्योंकि आगे जो भागम भाग करे जीवन में कुछ वक्त हमको अपन मन पसंद है काम जरूर करना चाहिए ताकि हम ले अपन फटाफट ठाड़ू और घर परिवार हमें मदद कर सकूँ। लेकिन यह बात में सही चुकी ये कोई ना काम जब हम शुरू करूँ तो थोड़ी बार में सोचे हमको जरूर पड़ू कि कैसे हमें शुरुआत करूँ ये बाजार हमारे का हो बहुत सारी चीज हुई लेकिन इस बनी यो बात में सही थी कि जहाँ चाह छू वहीं रह ले और यही सब बातों पर आज हम आपको कार्यक्रम में बातचीत न करूँ तो क्योंकि देखो आगे वक्त आपको हम सब जानू की ये बढ़ती हुई बेरोजगारी आज हर कोई परेशान छे ये चिंता सबने छे रोजगार एक बहुत जरूरत छे तो यह कह लीजिए बेरोजगारी है रोजगार तरफ बढ़ना चाहिए हम उनके अपन कदम जरूर अखिल कर बढ़ो पड़े। तो आज हम आपको कार्यक्रम मिले तो देखो आज आपको कार्यक्रम में हम बातचीत करने से एक महिला दगा जनर नाम छे श्रीमती रेखा भट्ट जो कि वर्तमान वक्त में घुनसेरा पिथौरागढ़ में रहूँ तो सब ने कह रही थी रेखा भट्ट जो हम आपको बहुत बहुत स्वागत कर लूँ यह कार्यक्रम में।
2: मैं सबसे पहले तो मैं सब उनके मेरे परिणाम छा लिख लीजिए आज मैं सब उनके बहुत बहुत धन्यवाद।
1: तो दीदी हम आपको जगह आपको काम है संबंधित तो बातचीत का कार्यक्रम कर ली लेकिन यह पहली हम आपको बार मतलब जान चाहना।
2: मेरा नाम रेखा भट्ट है और मैं जिला पिथौरागढ़ छूँ और मेरे गांव घुनसर गांव छ मैं समूह में काम कर छू।
1: तो दीदी अपोल कहो कि अपोले समूह बड़ा रहो तो कब बटी अपोले समूह शुरुआत करे
2: 2000 साल में मेरे बरियान बैठे मतलब मेरे मैद बैठे लिए थोड़ा गरीब स्थिति थी तो एक गरीब परिवार में ही मेरे बरियात हो गए थी तो यहाँ थोड़ा आर्थिक स्थिति ठीक न थी तो मैं खुद बैठे शुरुआत कर छ सबसे पहली मैं गोरु पैलक थी मैंने और दुस्तान की जमीन कम उठा और दूध बेचन बैठे शुरू कर से मैं बाजार दूध दिन ही जाऊँ और जो हमारे गाँव में बहुत बड़े सब्जी हुई थी तो वो सब्जी उसी रहती थी मैं फिर बैठे खुद बैठे शुरुआत कर छ लेकिन जब आर्थिक स्थिति आज में खराब हुई थी तो फिर कोई करने पड़ सके इंडियन की लगी इस जबान में मतलब सबसे ठूल सब जरूरत मतलब पूरी पैसा कर छ तो मैं सब्जी उत्पादन बैठे शुरू कर छ सब्जी बेचन बैठे यहीं बैठे मैं फिर 2006 में मैं स्वर्ण स्वरोजगार जयंती योजना बैठे जुड़ी हूँ समूह में तब मेरे सिर्फ एक समूह थो
1: स्वर्ण स्वरोजगार जयंती योजना की थी
2: यो ब्लॉक है की एक सरकार की एक योजना छ स्वयं सहायता समूह का अंडर उन्नान जो समूह बनना तब वो योजना नाम है स्वर्ण स्वरोजगार योजना।
1: तो यह फायदा
2: मैं जुड़े पहली तो हम मेरे एक समूह थे अपन गाँव में हम सिर्फ 10-10 रुपए जमा कर विभागों के लिए बहुत सहयोग रही थे जब हम कबेले के काम करना हो मैं सपोर्ट है बहुत जरूरत हो चाहे परिवार हो चाहे समाज हो चाहे विभाग हो और ब्लॉक विभाग बैठे लिए मैं बहुत सपोर्ट मिल सा।
1: तो फिर दीदी आपको बता कि आप स्वर्ण स्वरोजगार योजना बटी जुड़ छा और आप एक समूह गठन ला करो वर्तमान वक्त में कतु जनी आपको समूह जुड़ी हुई था और मैं के उत्पाद आपको यूँ बढ़ू छा।
2: सबसे पहले तो हम 7 महिला थे हमें 7 महिलाओं को हमारे ग्रुप थे जिन हम 10-10 रुपए जमा करते हैं और तब की ज्यादा जानकारी लेना थी सिर्फ हम लोन लिवरे अपन व्यवसाय हमने शुरू कर सब्जी बेचन बैठे शुरू करते हमने।
1: तो एल वर्तमान वक्त अगर हम बात करूँ तो दीदी के चीज उत्पादन अपन यह समूह में करी जाओ कि चीज में आप समूह में बड़े हुए बिच्छा।
2: तो मैं सबसे पहले तो मैं अपन समूह एक समूह बैठे मैं शुरुआत कर छा था आज मेरे कम से कम 2000 स्वयं सहायता समूह को मैं सामान नई मार्केटिंग कर छू मैं जैसे हमारे महिला कई उत्पादन कर रहा कोई मसाला उत्पादन कोई मडवा बिस्किट मतलब बनौना तो मैं सिर्फ उन महिलाओं की बिक्री कर छू जो महिलाओं चाहे मडवा चाहे दाल छ काल भट्ट छ राजमा सब चीजें की महिलाओं की बिक्री कर दे रहे उन्हें थोड़ा सपोर्ट कर छो।
1: वर्तमान वक्त में आप सात महिला या समूह है जुड़ी हुई छा, तो फिर दीदी इमें जो आप सामान हो मैं जब हम कोई ला काम शुरुआत कर लू वीर जी पहल जरूरत हमन का पड़े आर्थिक स्थिति हमारे ठीक ठाक हो और दूसरा जो सामान हमारे समूह में छो एक बाजार एक व्यवस्था की कहा हमें दरोल का हमें बिचूल कैसे क्या व्यवस्था करूँ और यह खर्च पानी तो यह का व्यवस्था कैसे करे।
2: एक में थोड़ा विभाग बैठे ले मैं सपोर्ट मिल छ पहले तो एक जो हमारे गाँव में मतलब हमारे जिला में जिला पिथौरगढ़ में एक सरस मार्केट बन गयो उल्ला मतलब बहुत बढ़िया मार्केटिंग बहुत बड़ी स्टेज एक विभाग द्वारा दी इसकी जो ले हमारे लोकल उत्पाद हूँ डायरेक्ट तो हमारे सरस मार्केट में जाए बिक्री हो जाए और महिलाओं से जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र महिलाओं सन उनसे दर दर अपन सामान बेचने की भटकना पड़ो ये लीजिए हमारे विभाग सपोर्ट करता हमसे आर एफ फंड दी जो एक माध्यम है हम उन्हें सामान खरीद लू और बिक्री भी करनी नाना में सब उनको मेरे हमारे जिला में आठ ब्लॉक सन आठ ब्लॉक उनकी मैं फेडरेशन है अध्यक्ष से हूँ तो आठ ब्लॉक में हमारे 5,500 स्वयं सहायता समूह बन रहे जनर जैकले जिले उत्पादन हो चाहे घी चाहे चूक छन माल्टा छ जिले ग्रामीण उत्पाद छ अदरक छ हल्दू छ तो मैं सब चीज उनर सामान हम बिक्री करनु सरस मार्केट में दगाड़ दगाड़ बिक्री कम हो चुके हम कभी कभी सार्वजनिक स्थल उनमें त्योहारा टाइम में तो हम नन जगह में सार्वजनिक स्थल उनमें अपने स्टॉल लगा दिल हम महिलाओं को सामान बेचनु ऊके अलावा जो ले राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मेला लगना सरस मेला लगना तो हम वहाँ जाविरन ले महिलाओं को सामान बेच दे रहे बचा के एक नए पहचान मिल सकते
1: राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो बाजार लगनी आपको उम्र सामान बिक्री कर छा तो दीदी ये जानकारी आपको कैसे मिली थी मिली यो मैं यह कार्यक्रम माध्यम आपको जरूर जान छो किले की दीदी हमारे महिलाओं ने प्रोग्राम बहुत सारी दिव्यांग हमारे कार्यक्रम के सुन लग रही तुम आपको जरूर एक जान चाहनी
2: हमारे विभाग बैठे मैं जानकारी मिल छी किला की सबसे पहले तो महिलाओं ले घर बैठे निकल आला मीटिंग में जोला कार्यशाला में जोला ट्रेनिंग में तब हमसे पता चल सके यहाँ ये सोच यहाँ वो सोच यहाँ ये चीज लाग छ हम सब विभाग बैठे मैं लेटर मिल सके यहाँ मेला लाग हम दे तो मैं वहाँ की एक महीने पहली हमसे लेटर मिल जाए उस बाद में एक महीने तक पूरी तैयारी कर छो। हाँ मेरे लंबा समय हो गई थी मैं काम करते करते समून का लगा समूह बनून बैठे लीवे समून की हेल्प करन समून से स्वरोजगार बैठे जोड़ने की और उनर जो उत्पादन था वो मार्केटिंग दिलूंगी एक मतलब रोजगार दिना उपलक्ष्य में सरकार द्वारा तिलू रोतीलू पुरस्कार 2025 बहुत गर्व हुई थे।
1: अच्छा बहुत बहुत बधाई आपको घर बैठी आप जमीनी स्तर पर जुड़वा आप काम शुरू करो यहाँ तक पहुँचा और यहाँ पहुँच से आपको तिलू रोतीलू पुरस्कार सम्मानित करी दे रहे हो तो घर परिवार सहयोग आप काम करते हुए
2: मैं तो बहुत सपोर्ट था मेरे बच्चान को जब मेरे नंतना नाना नाना थे मेरी जरूरत थी मैं मेरे बच्चान से मैं तभी अपन बच्चान छोड़ छाड़ जा रहे अपन मैदान का दगा काम करन शुरू कर दी नाना नन थे लेकिन मेरे बहुत बड़े परिवार से मेरे सासू के लिए बहुत सपोर्ट और मेरे जो मेरे पतिदेव सन उन्होंने मेरे बहुत सपोर्ट जहाँ जहाँ से कहीं मनाने और मैं घर हो चाहे कह ले जहाँ से जैसे मिलान में ले तब मेरे दगा उन खुद आ जानी हुआ और बहुत सपोर्ट था उन्होंने
1: तो दीदी वर्तमान वक्त में को कुछ घर परिवार
2: चाहन मेरा और मेरा जगन और मैं चाचा जान सास ससुर तक खत्म हो गया
1: काम लीजिए जान पड़ो या ऑफिस में आपको अध्यक्ष चाहे तो वहाँ आपको जान पड़ो ना तो फिर कैसे आप तालमेल बैठा रखो घर परिवार तक।
2: हाँ बस सबसे ठूली चुनौती हुई मुझ पे एक महिला जब घर बैठे बाहर निकल सी परिवार एक समाज एक सब चीज देखन पड़ता लेकिन समय सारणी करन बरसी थोड़ा टाइम है लूट गया अपन घर काम निपटाने घर बैठे बिहार जानी और किला की बच्चा उनको ले सपोर्ट से हजबैंड उनको ले उन देख ली नान घर जब घर भी आज बस
1: यह कार्यक्रम माध्यम आपको हमारे सोनवा श्रोता भाई बहन के संदेश देना चाहूँ
2: मैं तो यही कहूँ कोशिश करने वाला की कभी हार न हो हम महिला

0: कवेले खुदस कमजोर न समझी जाए। अगर हम चाहू की केले काम हम कर सकू लेकिन चाह जहाँ चाहे वहाँ रहा है, हमले सोचन जाती हम कर सकू बस हो गया, मेहनत करना जरूरत मुझे कार्यक्रम के द्वारा तुम सब उनसे बतू जाती महिला केले कर सकती। जब मेरे बनियान बैल मैं सिर्फ आठवीं कक्षा पास थी, लेकिन आज मेरे बच्चा ने जब ग्रेजुएशन कर रहे वो बाद में ट्वेल्थ पास कर चे और कोशिश करने वाला की कभी हार न हो तो हमले की ये चीज मेरी कोशिश कर जरूर सफलता मिलती हूँ। मैं सिर्फ 7 महिला बैठे शुरू कर चा, आज मेरे पास 5,500 स्वयं सहायता समूह है। गर्व महसूस कि मेरे दगा तो महिला जोड़े हैं, लेकिन साहस ले उन जांच कि मैं सब महिला था यू कुछ जांच कोई ले काम अगर हम कर नान ठुल अगर हम सही रास्ता में जानू मेहनत है हम के लिए काम कर जरूर हमसे सफलता मिलती।
1: मेहनत करने वाला का हमेशा सफलता जरूर मिले। तो छोटे छोटे काम बैठी ले हम शुरुआत करवे एक भल रोजगार अपने लिए ठाड़ कर सकनो। यही बार में सब बातचीत हमन के कार्यक्रम माध्यम रेखा भट्टी बतौन लाग रही। इतु सुंदर जानकारी अपन यह कार्यक्रम माध्यम हमन के दे और अपन कीमती बखत बटी इतु बखत हमारे कार्यक्रम में जिन डालो। रेखा दी हम तो चाहू की अपन हमेशा अखिल के इसी के जीवन पथ पर अखिल के बढ़ते रहो और ये बातों दगा इतु बखत अपूल हमारे कार्यक्रम को दे। रेखा दी यह कही आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद मैम।
2: आर्थिक आत्मनिर्भरता और शिक्षा वास्तविक सशक्तिकरण विषय पर श्रीमती रेखा भट्ट पिथौरागढ़ दगाड़ करी गई जो क्षेत्र संकलित बातचीत हम उठाए। आप कार्यक्रम में मरा अखिल का वर्ण और थोड़ा बातचीत करने दगड़ियों गैर संचारी रोग के बारे में दगड़ा। गैर संचारी रोग वो रोग से जो लंब वक्त तक रो और जो रोग एक मन की बदी दूसर मन की तक निसर है यानी कि यूँ फैलन नाती। विभिन्न गैर संचारी रोग उम्र बढ़ना और अस्वास्थ्यकार हमारे खान पीन शारीरिक गतिविधि कम हो और ज़्यादा वजन बढ़ और लकत को कारण है सकनी जय कारण यह रोग होनी और विभिन्न रोग लंब वक्त तक रहने और बीमारी आज चैन जन इलाज करो मिले लंब वक्त तक हम उनका दवाई पान करना पड़ो यू कत को प्रकारक होनी और यू रोगों में हमन के अपन रोजाना खान पीन पर उन पर ले बहुत ध्यान देना चाहिए। गैर संचारी रोग में अगर हम बात करूँ मधुमेह तो देखिए यह एक यस रोग छू। यह रोग देखिए तब हूँ जब हमारे शरीर में इंसुलिन बढ़न कम है जा या हमारी शरीर कोशिकाएँ या सही ढंगल नीली पान तो तब कि हमारे खून में ग्लूकोज मात्रा बढ़ जाए और जय कारण शायद हमारे खराब खान पीन ज़्यादा शारीरिक गतिविधि नहीं हो और मोटापा बढ़ और बहुत कुछ कारण इनमें शामिल हो सकें। जैसा कि मैं शुरुआती हम उनका लक्षण दिखाई देने कि हम उनको बार बार पेशाब जान पड़ और बहुत ज़्यादा प्यास और भूखा मन के लगे। जब हम काम ले नहीं करूँ तब ले बिना शारीरिक गतिविधि के हम उनको भूख लगे और बिना कारण कतु वक्त में वजन ल कम है जा खान पीन में जब हम बदलाव बिल्कुल नहीं कर रहा कि बावजूद नहीं मैं हमन के लागू कि हमार वजन तेजी दगर कम हो और दगर में हमन के दगड़ियों थकान और कमजोरी यल इमें हमन के महसूस हो और सब ने ज़्यादा यह एक असर हमार आँखों पर ले पड़ सके। तो यह एक लीजिए जब ले हमको यह शुरुआती लक्षण दिखाई देनी हमको डॉक्टरी सलाह जरूर लेनी चाहिए और उनर कई बातों को ध्यान में दिए हुए अपन खान पीन और अपन शारीरिक गतिविधि हमन के शुरू करना चाहिए और छोट छोट बातों को ध्यान दी गई हम लोग स्वस्थ रह सकें। तो आप मन कार्यक्रम में अगिल का वर्णन करना आप मनोरंजन और सुनना योगी।

दगड़ियों माठू माठू के बखत लहुनो कार्यक्रम में आपू हैं विदा लेनो। कार्यक्रम में आगिन के आपू दगे फिर भेंट हुई। प्रभा पांडे के दीवानुमति नमस्कार। यह कार्यक्रम प्रस्तुत करता छी दीपिका पंत।

0: अभी महिलाएं सुन रही थी अपना कार्यक्रम अर्पण। आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। दोपहर के 1 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार सुनेंगे। रुपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे यात्रा के दूसरे दिन आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: भारत और पांच नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में आज तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़े हुए क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करेगा। 2022 में डेनमार्क के कोपनहेगन में पिछला सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी और नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण, यह चर्चा के मुख्य क्षेत्र हैं। प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ विपक्षीय बैठक भी करेंगे। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: प्रधानमंत्री आज शाम इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का दो दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि केवल भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन लोग भी भारत में व्यावसायिक अवसरों की तलाश करने के लिए उत्सुक हैं।
2: इटली के विभिन्न हिस्सों से आए भारतीय समुदाय के सदस्यों के लिए यह अवसर किसी ऐतिहासिक पल से कम नहीं है। शिक्षा, कृषि, डेयरी फार्मिंग, रियल एस्टेट और अन्य व्यवसायिक क्षेत्रों से जुड़े ये लोग दोनों मित्र देशों के शीर्ष नेताओं के बीच होने वाली इस उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक से अपनी अपनी आकांक्षाएं और अपेक्षाएं लेकर आए हैं। भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन नागरिक भी भारत में उभरते व्यावसायिक अवसरों को लेकर उत्साहित हैं। आकाशवाणी के लिए रोम से सुपर्णा भाटिया।
0: भारत और स्वीडन का विश्वास है कि वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में सहयोग से साझा समृद्धि और सतत भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन द्वारा लिखे गए एक लेख में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बढ़ती भू राजनीतिक अनिश्चितता, ऊर्जा असुरक्षा और आर्थिक बिखराव के समय में दुनिया को फैसला करना है कि वो या तो संकीर्ण राष्ट्रीय सोच की ओर लौट जाए या फिर आपसी सहयोग को सुदृढ़ करे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम से भेंट की और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी महत्वपूर्ण है। श्री सिंह ने कहा कि भारत और वियतनाम साझा मूल्यों, रक्षा, सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में घनिष्ठ सहयोग साझा करते हैं। श्री सिंह ने हनोई में वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की उच्च स्तरीय बैठक शुरू हो गई है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हिस्सा ले रहे हैं। रेलवे ने अरक्कोनम चेंगलपट्टू दोहरीकरण परियोजना के लिए 993 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। चेन्नई उपनगरीय रेल नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला किया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये परियोजना इस मार्ग पर लोगों की भीड़भाड़ कम करने और समय की पाबंदी तथा परिचालन दक्षता में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए लावारिस कुत्तों को टीकाकरण या नसबंदी के बाद वापस न छोड़ने के अपने पूर्व निर्देशों को वापस लेने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवंबर 2025 के आदेश में संशोधन की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया और अधिकारियों को ऐसे कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया। मिजोरम में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो गया है। मिजोरम के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉ. लाल रोजामा ने जनता और निर्वाचन आयोग की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जो एक सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बढ़ोतरी है। ये बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और होर्मुज जलडमरू मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हुई है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 0.3% की वृद्धि दर्ज की गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी का निधन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुख व्यक्त किया, कहा उनका निधन उत्तराखंड ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति के लिए भी अपूर्णीय क्षति है। प्रदेश सरकार बड़े स्तर पर नई पार्किंग योजनाओं पर कर रही काम, यातायात और जाम की समस्याओं से लोगों को राहत मिलेगी। पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने नंदा देवी ईस्ट ट्रैकिंग अभियान के लिए 26 सदस्यीय छात्र छात्राओं के दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में बच्चों को उनके अधिकारों और सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए बाल संस्कार शिविर का आयोजन। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आशुतोष उनियाल और अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी का आज निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार थे और देहरादून के एक निजी अस्पताल में उनका उपचार चल रहा था। वे केंद्र सरकार में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री रहे और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने दो कार्यकालों में सेवा दी। उनका राजनीतिक जीवन सादगी, पारदर्शिता और सुशासन के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय खंडूड़ी ने भारतीय सेना में रहते हुए राष्ट्र सेवा, अनुशासन और समर्पण का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया। सार्वजनिक जीवन में भी उन्होंने उत्तराखंड के विकास, सुशासन, पारदर्शिता और ईमानदार कार्यशैली की मजबूत पहचान बनाई। उन्होंने प्रदेश हित में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लेकर विकास को नई दिशा प्रदान की। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्गीय खंडूड़ी की सादगी, स्पष्टवादिता और कार्यकुशलता सदैव प्रेरणा स्रोत रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका निधन उत्तराखंड ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति के लिए भी अपूर्णीय क्षति है। राजधानी देहरादून सहित प्रदेश के अन्य शहरों में बढ़ते यातायात और जाम की समस्या से लोगों को जल्द राहत मिलेगी। इसके लिए राज्य सरकार बड़े स्तर पर नई पार्किंग योजनाओं पर काम कर रही है ताकि शहरों की यातायात व्यवस्था को और बेहतर बनाया जा सके। आवास व राज्य संपत्ति विभाग के सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया कि ऐसे कई स्थान चिन्हित किए गए हैं जहां आधुनिक पार्किंग का निर्माण किया जाएगा। इससे ज्यादा संख्या में वाहन व्यवस्थित तरीके से पार्क हो सकेंगे और सड़कों पर यातायात का दबाव कम होगा।
1: अर्बन एरियाज पे काफी तनाव भी बढ़ रहा है, उसी के नतीजेगत जो है जो आवास विभाग हम लोगों ने 2021 में पार्किंग नीति विकसित की और पार्किंग नीति के तहत लगभग 200 से भी ज्यादा जगहों का चयन किया गया जहां पे पार्किंग व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा सकती है और इसमें से लगभग 55 जगहों पे पार्किंग की व्यवस्थाएं बनाई गई है। बहुत ही बड़ी प्रगति है।
0: राजधानी देहरादून में नगम निगम की ओर से नदी नालों को साफ और स्वच्छ बनाए रखने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही नदी नालों के किनारे कूड़ा कचरा फेंकने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने बताया कि पिछले एक महीने में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनमें लोगों द्वारा नदी नालों में कूड़ा फेंका गया। नगर निगम की टीम ने ऐसे लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई करते हुए नोटिस भी जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि कुछ शराब विक्रेताओं और कैंटीन संचालकों पर भी गंदगी फैलाने को लेकर कार्रवाई की गई है।
2: कतिपय लोगों के द्वारा जो है नालों में कूड़ा जो है फेंका जा रहा है तो उन पर चलानी कार्रवाई क्षेत्र अनुसार की गई है। सुपरवाइजर्स और इंस्पेक्टर के माध्यम से भी चलानी कार्रवाई की गई है और हमारे द्वारा भी निरीक्षण में पाया गया जहां जहां तो हम लोगों के द्वारा भी कार्रवाई की गई है और चलानी कार्रवाई करके नोटिस भी दिए गए। ऐसे में जो है कई जो वहां पे शराब विक्रेता थे, शराब की दुकानों की जो कैंटीने थी उन पे भी कार्रवाई की गई है और 50,000 का चलान तो हमारे लोगों के द्वारा किए गए।
3: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: ब्लॉक प्रमुख संगठन उत्तराखंड के प्रतिनिधियों ने देहरादून में कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी को एक ज्ञापन सौंपते हुए अपनी विभिन्न मांगों और क्षेत्रीय समस्याओं से अवगत कराया। इस अवसर

पर कैबिनेट मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल की मांगों के त्वरित और प्रभावी समाधान का आश्वासन देते हुए कहा कि सरकार जन प्रतिनिधियों तथा क्षेत्रीय संगठनों के सुझावों को गंभीरता से लेकर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के समग्र विकास का मार्ग गांव और विकासखंडों से होकर गुजरता है तथा इस प्रक्रिया में ब्लॉक प्रमुखों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हुए स्वरोजगार को बढ़ावा देने और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेक जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन कर रही है। पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने नंदा देवी ईस्ट ट्रैकिंग मिलम ग्लेशियर अभियान के लिए चयनित 26 सदस्यीय छात्र छात्राओं के दल को आज सुबह हरी झंडी दिखाकर

0: मजबूत करते हुए स्वरोजगार को बढ़ावा देने और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेक जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन कर रही है। पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने नंदा देवी ईस्ट ट्रैकिंग मिलम ग्लेशियर अभियान के लिए चयनित 26 सदस्य छात्र छात्राओं के दल को आज सुबह हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह विशेष ट्रैकिंग अभियान जिला योजना के अंतर्गत वित्त पोषित है, जिसका संचालन पर्यटन विभाग कर रहा है। अभियान के दौरान अनुभवी गाइड और प्रशिक्षकों की टीम भी दल के साथ रहेगी। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि इस प्रकार के अभियान युवाओं में साहस, अनुशासन, आत्मविश्वास और टीम भावना का विकास करते हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को पर्वतीय क्षेत्रों की भौगोलिक और सांस्कृतिक विशेषताओं से जोड़ने के उद्देश्य से इस प्रकार के ट्रैकिंग अभियानों का आयोजन किया जा रहा है।
1: इसमें हमारे जनपद के जो स्टूडेंट्स हैं उनके द्वारा प्रतिभा किया गया और स्टूडेंट्स काफी उत्साहित हैं। नंदा देवी ईस्ट बेस कैंप तक जाएंगे, इसके साथ ही साथ मिलम ग्लेशियर का भी ट्रैक करेंगे और इनके साथ एक्सपर्ट भी जा रहे हैं। इनको काफी कुछ सीखने को मिलेगा और इस तरीके से जो स्टूडेंट्स हैं हमारे इस डायरेक्शन में भी, इस दिशा में भी अपनी आजीविका के संबंध में सोच सकते हैं। तो उसी का एक प्रयास किया गया है, जो कि एक अच्छा प्रयास है और इसको जिला योजना से वित्त पोषित किया गया है।
0: उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में बच्चों को उनके अधिकारों और सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए महिला कल्याण विभाग और समाज सेवी संस्थाओं की ओर से बाल संस्कार शिविर आयोजित किया गया। जगपुरा आवास विकास स्थित बालिका विद्या मंदिर जूनियर हाईस्कूल में आयोजित शिविर में बच्चों को बाल अधिकार, पोक्सो एक्ट, गुड टच बैड टच, बाल विवाह, बाल श्रम और साइबर अपराध से जुड़ी अहम जानकारियां दी गई। इस अवसर पर जिला प्रोबेशन अधिकारी ब्योमा जैन ने छात्र छात्राओं को चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 और पुलिस हेल्पलाइन 112 के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी।
2: जैसे कि आजकल बच्चों के साथ बहुत क्राइम्स भी हो जाते हैं, तो गुड टच बैड टच के बारे में, पॉक्सो एक्ट के बारे में और भारत सरकार द्वारा उनके लिए एक निःशुल्क हेल्पलाइन चलाई गई है 1098, उसके बारे में अवगत कराया गया है। साथ ही उन्हें सेफ अडल्ट के बारे में बताया गया है कि यदि किसी बच्चे के साथ कुछ गलत हो जाता है दुर्भाग्यवश, तो वो किसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सारे हेल्पलाइन नंबर उन्हें बताए गए हैं, 1098, 112, साइबर हेल्पलाइन 1930, ताकि बच्चे जो हैं सेफ रहें। और ऑनलाइन फ्रॉड से भी किसी तरह मॉर्फिंग है और AI की तरह की यूज से जैसे बच्चों को कोई और क्राइम वो शिकार हो सकते हैं, तो कैसे उससे वो अपने आप को बचा सकते हैं, इसके संबंध में जो आज महिला कल्याण विभाग द्वारा जानकारी दी गई।
0: छात्रा सुनैना ने बताया कि उन्हें शिविर के माध्यम से बच्चों के अधिकार को लेकर काफी महत्वपूर्ण जानकारी मिली।
3: आज के कार्यक्रम से हमें ये सीख मिली कि किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ हमें नहीं जाना है, चाहे फिर वो हमें कितना भी लालच दे। और हमें गुड टच और बैड टच के बारे में बताया गया और ये भी बताया कि हमारे कोई ऐसा होना चाहिए जिसे हम अपनी सारी बात शेयर कर सकें। और हमें एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया, अगर हमें कोई भी दिक्कत है तो हम उस पर कॉल कर सकते हैं, अगर हमारे पास फोन नहीं है तो हम शोर करके लोगों को बुला सकते हैं। तो हमें ऐसी बहुत सारी जानकारियाँ मिली जिसकी हमें जरूरत थी और ये हमें बताया और हम अपने घर में बताएंगे। धीरे धीरे सभी को पता चलना ये अच्छी चीज सीख है जो हमें मिली।
0: प्रदेश में गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि होने की संभावना है। विशेष रूप से हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक रहने का अनुमान है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी का निधन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुख व्यक्त किया, कहा उनका निधन उत्तराखंड ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति के लिए भी अपूर्णीय क्षति है। प्रदेश सरकार बड़े स्तर पर नई पार्किंग योजनाओं पर कर रही है काम। यातायात और जाम की समस्याओं से लोगों को राहत मिलेगी। पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने नंदा देवी ईस्ट ट्रैकिंग अभियान के लिए 26 सदस्य छात्र छात्राओं के दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में बच्चों को उनके अधिकारों और सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए बाल संस्कार शिविर का आयोजन। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
4: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं।

उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: खुशहाल।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
2: पारदर्शी भर्तियों में 28,000 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी। राज्य ने G20 समिट, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और 38वें राष्ट्रीय खेल जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का भव्य और सफल आयोजन किया और राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर अपनी खास पहचान बनाई।
3: संकल्प बेहतर उत्तराखंड का, कायम की एक नई मिसाल। उत्तराखंड का हर घर अब देखो हो रहा खुशहाल।
2: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की नगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

अभिजीत के गाए इसी गीत के साथ अब आज का हमारा सुगम संगीत कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। दोपहर के 1:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग की 1227वीं कड़ी।

0: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश, आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूं उमंग कार्यक्रम में।
0: और मैं हूं आपका मित्र अजीत। नमस्कार श्रोताओं, आइए सुनते हैं सबसे पहले सुविचार जो हमें भेजा है पुराना तालाब डुमराओं से वलीउल्लाह अंसारी और बेबी पूजा मलिक जी ने।
2: शिक्षा जितनी रोचक होगी सीखना भी उतना ही रोचक और मनोरंजक होगा।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखते हैं,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सर प्रेम नमस्ते जी।
0: नमस्ते।
2: उमंग कार्यक्रम में कहानी जुर्माना सुनी, कहानी पसंद आई। अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला जी पर केंद्रित कार्यक्रम बेहद पसंद आया। कार्यक्रम प्रस्तुति ने दिल जीत लिया। ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं। उमंग कार्यक्रम का हर एपिसोड जरूर सुनते हैं, ये कार्यक्रम बेहद पसंद आता है। कहानी लालची कुत्ता, शहीद राम प्रसाद बिस्मिल जी पर केंद्रित मेरी माँ एवं सम्राट अशोक पर प्रसारित कार्यक्रम सुने और पसंद आए। देश विदेश की जानकारी के साथ ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस संदेश के लिए। और अगला संदेश हमें मिला हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदाड़े जी का।
2: साथ ही साथ हमें संदेश प्राप्त हुआ है जालंधर से संदीप कौर, प्रभा कौर और राधिका कौर।
0: और डोंडिया खेड़ा से प्रभा जटोलिया ने लिखा है, चेतक कविता बहुत अच्छी लगी, आपको बधाई।
2: चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा लिखते हैं, ये भी जानिए के तहत उड़ान का इतिहास और कल्पना चावला पर जानकारी बेहद अच्छी लगी। आज का कार्यक्रम दिल छू गया, परीक्षा कहानी बहुत अच्छी लगी। विमलेश चौधरी जी और अजीत होरो जी को बहुत बहुत बधाई।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है दिल्ली से रेशमा अंसारी, शकीला अंसारी और सईद अंसारी जी का। और साथ ही साथ बागपत से सुंदर और सुंदरी और बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन जी का। धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए।
2: स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। तो आइए करते हैं शुरुआत एक कविता से।
0: श्रोताओं अंदाजा जरूर लगाइएगा कि ये कविता किस विषय पर है। आइए सुनते हैं कविता।
2: घने पत्तों की छाया गहरी, जंगलों की श्रृंखला घनेरी, प्रतिदिन वर्षा गाती गीत, इस जंगल की यही है रीत।
0: प्रतिदिन वर्षा गाती गीत, इस जंगल की यही है रीत। श्रोताओं आपने अंदाजा जरूर लगा लिया होगा कि हम एक ऐसे जंगल या वन की बात कर रहे हैं जहाँ अक्सर वर्षा होती रहती है। तो विमलेश जी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।
2: जी अजीत जी, पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी समुद्र की, आज हम चर्चा करेंगे ऐसे वनों की जहाँ वर्षा होती रहती है, जिन्हें हम वर्षा वन कहते हैं। अजीत जी, अब ये सवाल उठता है कि वर्षा वन किसे कहते हैं, या दूसरे शब्दों में इसकी परिभाषा क्या है?
0: जी विमलेश जी, देखिए तकनीकी रूप से वर्षा वन या रेन फॉरेस्ट उसे कहते हैं जहाँ साल भर बहुत अधिक वर्षा होती रहती है
2: जी,
0: और जहाँ हर समय नमी पाई जाती है और साथ ही साथ घने सदाबहार पेड़ पौधों के साथ वन्य जीवन भी बहुत ही समृद्ध होता है
2: जी। एक बात और जोड़ दूं इस सूचना में कि यहाँ वर्षा सालाना औसतन 70 से 80 इंच तक होती है। पृथ्वी के कई वर्षावन तो ऐसे भी हैं जहाँ साल भर लगातार वर्षा होती रहती है, कभी कभी ही रुकती है।
0: लेकिन एक और प्रश्न है विमलेश जी मेरे मन में कि वर्षा वनों में इतनी बारिश क्यों होती है, अन्य जगहों पर क्यों नहीं होती?
2: श्रोताओं को बता दें कि इसकी वजह है वर्षा वनों का भूमध्य रेखा या इक्वेटर के पास होना।
0: तो जरा श्रोताओं को बताइए ना कि इससे फर्क क्या पड़ता है?
2: फर्क ये पड़ता है कि भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्रों में सूरज की किरणें क्षेत्रों पर सीधी पड़ती हैं
0: जी,
2: जिससे भूमि और जल दोनों बहुत गर्म हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं इससे क्या होता है।
0: तो इससे होता यह है कि इस क्षेत्र में भाप बहुत अधिक बनती है, समुद्रों और नदियों से बहुत अधिक भाप बनती है जो भाप आकाश में जाकर बादल बनाती है
2: जी,
0: और जब बादल भारी हो जाते हैं तो वर्षा होती है। इसीलिए इस क्षेत्र में गर्मी और नमी के कारण वर्षा बहुत अधिक होती है।
2: लेकिन श्रोताओ जरूरी नहीं है कि सभी वर्षा वन भूमध्य रेखा के पास ही हों, इसके अलग अलग कारण हैं, लेकिन निष्कर्ष ये निकलता है कि वर्षा वन सबसे अधिक भूमध्य रेखा या पृथ्वी की काल्पनिक मध्य रेखा के आसपास ही पाए जाते हैं। लेकिन निष्कर्ष ये निकलता है कि वर्षा वन सबसे अधिक भूमध्य रेखा यानी पृथ्वी की काल्पनिक मध्य रेखा के आसपास ही पाए जाते हैं। आइए अब जानते हैं वर्षा वनों की और कुछ रोचक बातें।
0: तो श्रोताओं एक बड़ी रोचक बात है वर्षा वनों के बारे में, और वो ये है कि समुद्र के बाद वर्षा वनों को धरती का फेफड़ा भी कहा जाता है
2: जी।

0: ऐसा इसलिए कि सदाबहार पेड़ पौधों के कारण ये वन भारी मात्रा में प्राणवायु यानी ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसके कारण हम सुगमता से सांस ले पाते हैं। वर्षा वन तो क्या, हमें पृथ्वी की सारी वनस्पतियों के प्रति हमेशा आभारी होना चाहिए।
1: जी, यही कारण है अजीत जी कि चारों वेदों और पुराणों में वनस्पति की स्तुति की गई है, उन्हें नमन किया गया है। पुराणों में विशेषकर पद्म पुराण और स्कंद पुराण में वृक्षारोपण को पुनीत कार्य बताया गया है
0: जी।
1: और इससे पूर्व भी आदि मानव और जनजातियां प्रकृति की पूजा करती रही हैं। हड़प्पा संस्कृति में भी वृक्षों को विशेष आदर दिया गया है। चलिए श्रोताओं, अब जानते हैं अजीत जी से वर्षा वनों की एक और बहुत रोचक बात।
0: जी विमृषि, श्रोताओं एक और रोचक बात वर्षा वनों की ये है कि ये जैव और वनस्पति विविधता के अद्भुत भंडार हैं। यानी जितने पेड़ पौधे, जीव जंतु और अनोखे सूक्ष्म जीव इन वर्षा वनों में पाए जाते हैं, उतने कहीं और नहीं पाए जाते
1: जी।
0: तो अब एक और रोचक बात जानते हैं बिमलेशी से।
1: जी श्रोताओं, आपने ऊंचे से ऊंचे पेड़ देखे होंगे, लेकिन वर्षा वनों के पेड़ों की ऊंचाई का तो कहना ही क्या। कुछ वर्षा वनों के पेड़ 40 से 60 मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं। और हाँ, ये पृथ्वी के तापमान और जलवायु को संतुलित रखने में अहम भूमिका निभाते हैं।
0: तो श्रोताओं, ये थी सामान्य जानकारी वर्षा वनों की। श्रोताओं, वर्षा वन तो क्या, सभी वनों का यही संदेश है कि हमें ना काटो
1: जी,
0: जितना हो सकता है पेड़ लगाओ, वरना एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें शुद्ध हवा के लिए और फिर सांस लेने के लिए भी तरसना होगा।
1: जी हाँ, कल नहीं परसों नहीं, लेकिन आज ही अवसर है संभलने का और पेड़ों को बचाने का। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
0: तो आज का प्रश्न है, अधिकांश वर्षा वन पृथ्वी के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लें।
1: अधिकांश वर्षा वन पृथ्वी के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं।
0: 8800440559 यानी हमारे IBRS नंबर और audio@cit.nic.in यानी हमारे ईमेल पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओ, बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम बैंगनी जोजो।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें एक प्यारे डॉगी की रोचक कहानी है। वो एक पेड़ के नीचे सो गया था और जब जगा तो उसने देखा कि उसका सारा शरीर बैंगनी रंग का हो गया है। लेकिन क्यों, आइए जानते हैं एक मजेदार कार्यक्रम के माध्यम से।
0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है NCERT की कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक सारंगी के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम बैंगनी जोजो।
2: जोजो एक सफेद कुत्ता था। वह एक पेड़ के नीचे सो रहा था। वो जग गया।
3: किसने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
2: उसने देखा एक बादल को आकाश में धीरे धीरे चलते हुए।
3: बादल, बादल, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
4: नहीं, मैं तो सफेद हूं।
2: बादल हट गया। जोजो ने ऊपर सूरज को देखा।
3: सूरज, सूरज, क्या तुमने मुझे दिए बैंगनी धब्बे?
4: नहीं, मैं तो पीला हूं।
3: कौवे, कौवे, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे? नहीं, नहीं, मैं तो काला हूं।
5: गुब्बारे, गुब्बारे,
3: क्या तुम

0: ने दिए मुझे बैंगनी धब्बे।
1: नहीं, मैं तो लाल हूं।
0: घास घास, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
2: नहीं, मैं तो हरी हूँ।
1: बेचारा जोजो।
0: किसने दिए मुझे बैंगनी धब्बे? आहा, तो वो जामुन का पेड़ था।
3: तो बच्चों, सुना आपने? अब जरा याद कीजिए कि जोजो किस किस के पास गया। और कुछ फलों के नाम लिखिए और उनका रंग बताइए। बैंगनी जोजो, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, कलाकार ममता मलकानी और बाबला कोचर, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्माण सहायक तनु गुप्ता तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। और साथ ही हमारे ईमेल पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है audio@cieet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली, भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। बैंगनी जोजो, अभी आपने सुना यह कार्यक्रम। श्रोता और प्रस्तुत है कार्यक्रम गौरा देवी, एक महान पर्यावरण नेत्री।
4: इस कार्यक्रम में महान पर्यावरण नेत्री गौरा देवी के जीवन और पर्यावरण बचाने में उनके प्रसिद्ध अभियान चिपको आंदोलन की जानकारी दी गई है। ये कार्यक्रम हमें उत्तराखंड के रमणीक राज्य में ले चलता है और वहाँ की पर्वतीय संस्कृति की झलक भी प्रस्तुत करता है।
3: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करने वाली महिलाओं के जीवन पर आधारित श्रृंखला छू लूं मैं आकाश।

0: इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम गौरा देवी एक महान पर्यावरण नेत्री।
1: भारत के सबसे रमणीक राज्यों में से एक है उत्तराखंड। इसी उत्तराखंड के चमोली जिले में एक गांव है लाटा। ये गांव विशेषकर बड़े बड़े पेड़ों के कारण जाना जाता है।
2: लाटा गांव के ग्रामीण खेती बाड़ी और पशुपालन द्वारा अपनी जीविका चलाते थे। दिन भर खेतों और जंगलों में काम करने के बाद जब ग्रामीण शाम को घर आते तो उनके नृत्य और लोक संगीत से सारी घाटी गूंज जाती।
1: इसी गांव में सन 1925 में एक प्यारी सी बालिका ने जन्म लिया। नाम रखा गया गौरा। गौरा का बचपन से ही पेड़ पौधों के प्रति बहुत लगाव था। यदि गांव के बच्चे किसी भी प्रकार से फूल पत्तियों और पौधों को कष्ट पहुंचाते तो वो उन्हें मना करती और उन्हें समझाती भी।
3: मारो, मारो, ठीक से निशाना लगाओ।
4: अरे इस बार भी नहीं लगी।
5: अरे
3: नहीं लगा ना? लाओ लाओ, रुको रुको रुको। अरे मैं
5: तुम लोग इस पेड़ पर पत्थर फेंक रहे हो। अभी तो फल भी नहीं लगे। गोविंद, तुम तो सबसे बड़े हो, इनको क्यों नहीं समझाते?
3: अरे पत्थर फेंका है तो क्या हो गया, पेड़ ही तो है ना। देखो
5: मैंने मना किया है ना कि पेड़ पौधों को पत्थर मत मारो, उन्हें चोट लगती है।
4: तुम हमें इस तरह रोका टोका मत करो।
5: मैं तो टोकूंगी और बार बार रोकूंगी।
3: बड़ी आई रोकने वाली।
1: तो साथियों, ये था गौरा का पेड़ पौधों के प्रति लगाव और स्नेह। स्थानीय लोग बताते हैं कि गौरा ने अपने गांव में कई पौधे लगाए थे जो आज भी जिंदा हैं।
2: समय बदला। उस समय की रीति के अनुसार गौरा की शादी मात्र 12 वर्ष की उम्र में पास के गांव रैणी के मेहरबान सिंह के साथ हो गई।
1: सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी शादी के मात्र 10 वर्षों के बाद पति मेहरबान सिंह की मृत्यु हो गई। गोद में 2.5 वर्ष का बच्चा था। पति के निधन के बाद 22 वर्ष की गौरा देवी पर अपने बच्चे और बूढ़े सास ससुर के भरण पोषण का पूरा बोझ आ गया। उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए जितना भी समय गौरा के पास बचता था वो उसे गांव के कामों में लगा देती थी। गौरा अपने गांव के महिला मंगल दल की अध्यक्ष भी बनी।
2: महिला मंगल दल का विशेष काम था गांव की महिलाओं के रोजगार और उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर ध्यान देना। स्त्रियों पर होने वाली घरेलू हिंसा की स्थिति में महिलाओं के समूह द्वारा हस्तक्षेप करना और ये भी सुनिश्चित करना कि ग्रामीण बालिकाओं की पढ़ाई नियमित रूप से चल रही है या नहीं।
6: बहनों, अब हमें ये देखना है कि हमारे गांव में शराबखोरी तो कम हो गई है और इसके चलते चलते आगे बच्चियों की पढ़ाई भी शुरू करनी पड़ेगी हमें।
5: हाँ, बहुत जरूरी है। मेरी बेटी तो पढ़ने जाने लगी है अब।
6: अरे वाह, कितनी अच्छी बात बताई इसने।
7: लेकिन मेरा आदमी तो अभी काम ही पे नहीं जाता।
6: आप तो काम करती है ना?
7: हाँ मैं करती हूँ, लेकिन उसे होता क्या है?
6: मैं तो ये मानती हूँ कि नारी सशक्तिकरण एक बहुत जरूरी अंग है हमारे समाज का। नारी सशक्त बनेगी तभी तो परिवार सशक्त बनेगा।
1: समय बीतता गया। सन 1962 की बात है। चमोली के ग्रामीण अंचल में विकास के लिए तत्कालीन प्रशासन द्वारा सड़क बनाने का निर्णय लिया गया, जिसके कारण गौरा के गांव रैणी और आसपास के गांवों के लोगों की पुश्तैनी जमीन छिन गई।
2: गढ़वाल क्षेत्र के जंगलों में अंगू का पेड़ प्रचुरता में पाया जाता है। खेती करने के लिए पारंपरिक कृषि के औजार अंगू पेड़ों की लकड़ी से बनाए जाते हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों से निवेदन किया कि उन्हें खेती करने के औजार बनाने के लिए अंगू के पेड़ों को काटने की अनुमति दी जाए।
1: लेकिन वन विभाग भला कहां सुनने वाला था। एक ओर वन विभाग ने ग्रामीणों को साफ इनकार कर दिया तो दूसरी ओर जंगल की जमीन का कुछ हिस्सा खेल सामग्री बनाने वाले एक निर्माता को व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए आवंटित कर दिया। अंगू पेड़ों की लकड़ी से उम्दा स्तर की खेल सामग्री भी बनाई जाती थी। दिन था 24 मार्च 1976। इस दिन रैणी और आसपास के गांवों के कुल 2400 पेड़ों को काटने का आदेश दे दिया गया। इन जंगलों को बचाने के लिए लंबे समय से आंदोलन चल रहा था। गांवों के स्त्री पुरुषों ने बड़ी मुस्तैदी से मोर्चा संभाल रखा था और हर परिस्थिति का सामना करने के लिए वे तैयार थे।
2: लेकिन संयोग कहिए कि उसी दिन गांव के लोगों को उनके उन खेतों का मुआवजा दिए जाने का आदेश हुआ जो सन 1962 के अधिग्रहण के कारण उनसे छिन गए थे। रैणी, मलारी और लाता गांव के लगभग सभी पुरुष मुआवजा लेने जिला मुख्यालय चमोली चले गए।

0: इधर पुरुषों की अनुपस्थिति में 100 से भी अधिक मजदूर रैणी और उसके आसपास के गांवों के जंगलों की ओर बढ़ने लगे। गौरा देवी उस समय गांव में ही महिला मंगल दल की स्त्रियों के साथ बातचीत कर रही थी। उन्हें नहीं पता था कि ठेकेदारों की अगुवाई में मजदूरों का दल जंगल की ओर आ रहा है।
1: और तभी गांव की एक लड़की दौड़ती हुई आई। वो बहुत डरी हुई थी।
2: गौरमा, गौरमा,
3: क्या बात है चंपा? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? कहां से आ रही हो?
2: गौरमा, वो लोग आ रहे हैं।
3: कौन लोग आ रहे हैं? अरे कहां आ रहे हैं, कुछ तो कहो।
2: गौरमा,
3: हाँ,
2: पहाड़ की ओर से ठेकेदार के बहुत से मजदूर जंगल की ओर आ रहे हैं।
3: क्या?
2: हाँ गौरमा, उनके हाथों में कुल्हाड़ियाँ, रस्सियाँ और पेड़ काटने वाली आरी है। मैं बकरी चराने गई थी तो देखा कि 3-4 ट्रक आकर रुके। उनसे मजदूर उतरे और जंगल की ओर बढ़ने लगे।
3: अच्छा, तो ये बात है। बहनों,
4: हाँ गौरमा, हाँ गौरमा,
3: चलो हम सब तैयार हो जाएं।
5: बिल्कुल,
3: समय आ गया है अब इस गांव के जंगल को बचाने का।
4: हाँ, हाँ,
6: सब तैयार हैं।
4: किसी
6: भी हाल में जंगल कटने
5: नहीं कटने देंगे।
2: बिल्कुल नहीं कटने देंगे।
0: और चल पड़ी गौरा जंगल की ओर। उसके साथ गांव की 27 स्त्रियां थीं। उनकी चाल में दृढ़ता थी, आंखों में संकल्प झलक रहा था और उनके नारों में ऊंच था।
3: ये है जंगल के उपकार।
4: मिट्टी, पानी और बयान।
3: मिट्टी, पानी और बयान।
7: और अब वो स्त्रियां वहां पहुंच गईं, जहां मजदूर पेड़ों को काटने के लिए तैयार खड़े थे।
8: अरे क्या कर रहे हो?
9: भूखे ताक रहे हो? बजाओ शुरू।
8: अरे
10: भाई कौन है? रुको, इस पर चढ़ जाएंगे पेड़ से।
3: अरे ओ हरिया, तू तो इसी गांव का है ना रे? जिस जंगल ने तुझे पाला, पोसा, बड़ा किया, तेरी सारी जरूरतों को पूरा किया, उसे नष्ट करने के लिए कुछ पैसों के लालच में आकर तूने कुल्हाड़ी उठा ली। शर्म आनी चाहिए तुझे।
9: आगे बढ़ो।
10: अरे कहां से?
9: मैं इनकी बातों में बताओ, मैंने तुम्हें पेशगी दी है, पेशगी इस काम के लिए। बोलो शुरू।
3: आगे बढ़कर तो दिखाओ तुम। एक भी पेड़ को हम हाथ नहीं लगाने देंगे आज।
2: नहीं लगाने देंगे।
3: बहनों, आगे बढ़कर चिपक जाओ पेड़ों से।
4: हाँ, हम चिपक जाएंगे।
9: ठीक है, तो वहां चलो, उन पेड़ों को काटो, चलो।
0: मजदूरों के सामने एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई थी। वे जिस पेड़ की ओर बढ़ते, गांव की स्त्रियां भागकर उसी पेड़ से चिपक जाती। इस संघर्ष में लगभग 4 घंटे बीत गए थे। इस दौरान किसी ने भागकर ये सूचना गांव के पुरुषों तक पहुंचा दी।
7: ये खबर वैसे भी जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। आसपास के गांवों से सैकड़ों की संख्या में लोग जंगल की तरफ आने लगे। स्थिति बिगड़ती देख ठेकेदार और जंगल काटने वाले मजदूर वहां से भाग खड़े हुए।
9: ठीक है, तो वहां चलो, उन पेड़ों को काटो, चलो।
0: बता दें कि इन पेड़ों की कटाई को रोकने के प्रयास में ये आंदोलन 3 साल पहले 1973 में शुरू हुआ था। इसकी नींव सुंदरलाल बहुगुणा, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत और चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में रखी गई थी।

0: इस घटना ने गौरा देवी को चिपको आंदोलन की महान नेत्री बना दिया और इसकी गूंज पूरे विश्व में सुनाई पड़ी। गौरा देवी विश्व मीडिया में चिपको वुमन के नाम से मशहूर हुई। इस घटना का बहुत बड़ा प्रभाव ये पड़ा कि सरकार ने हिमालयी क्षेत्र में आगामी 15 वर्षों के लिए वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया और राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार पर्यावरण मंत्रालय गठित करने पर विमर्श संभव हुआ।
1: जुलाई सन 1991 में 66 साल की उम्र में इस महान पर्यावरण नेत्री का निधन हो गया।
0: एक साक्षात्कार में गौरा देवी ने जंगल के प्रति अपना स्नेह दर्शाते हुए कहा था,
2: ये जंगल हमारी माता के घर जैसा है। यहाँ से हमें फल, फूल और सब्जियां मिलती हैं। अगर यहाँ के पेड़ पौधों को काटोगे तो निश्चित ही बाढ़ आएगी।
1: चिपको आंदोलन अहिंसक आंदोलन था जिसमें ग्रामीणों और गढ़वाल की बहनों ने पेड़ों को कटने से रोकने के लिए उन्हें गले लगा लिया। इस महान पर्यावरण नेत्री को हमारा नमन।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी एक महान पर्यावरण नेत्री। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, ध्वनियांकन विकास सांगवान, कलाकार बाबला कोचर, पूनम एस कुदेसिया, ममता मलकानी, प्रज्ञा प्रवीण शर्मा और गीतांजलि, आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्माण सहायक कुसुम लता, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आप ईमेल पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी। आशा है श्रोताओं ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है, तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग की 1287वीं कड़ी। इसी के साथ ही ये कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम उत्तराखंड के लोकगीत।

अनिल कुमार का गाया ये कुमाऊनी लोकगीत अभी आप सुन रहे थे उत्तराखंड के लोकगीत कार्यक्रम के आरंभ में। आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम में पुष्कर सिंह मेहर का गाया ये लोकगीत।

पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

इस अंतराल के बाद आइए अब आपको सुनवाते हैं कमलेश कुमार का गाया ये कुमाऊनी लोकगीत। ये लोकगीत इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से।

0: कमलेश कुमार के गाए इसी कुमाऊनी लोकगीत के साथ अब आज का हमारा उत्तराखंड के लोकगीत कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2:15 होने वाले हैं। अब आप दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा और व्यापार में सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित 3rd भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने समाचार पत्र में एक संयुक्त लेख में वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में साझेदारी पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय का टीकाकरण या नसबंदी किए गए लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के अपने पूर्व के आदेश को वापस लेने से इनकार और मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में अगले 3 दिन के लिए लू का येलो अलर्ट जारी किया। IPL क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में 3rd भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा, सतत विकास और व्यापार जैसे क्षेत्रों में नॉर्डिक देशों के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के अलावा डेनमार्क, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री भी शिखर सम्मेलन

0: में शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी ने आज ओस्लो में आइसलैंड की प्रधानमंत्री क्रिस्टन म्यूल फ्रॉस्टडॉटर और फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटरी ओर्पो के साथ द्विपक्षीय बैठक की। और जानकारी के लिए बात करते हैं नॉर्वे में मौजूद हमारे संवाददाता संगीता गोडबोले से। संगीता, नॉर्वे के साथ साझेदारी भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है?
1: कनकलता, नॉर्डिक देश अपनी 90% से अधिक बिजली ग्रीन स्रोतों से उत्पन्न करते हैं। भारत का अपना एक महत्वाकांक्षी ऊर्जा परिवर्तन लक्ष्य है। इसी विषय में नॉर्डिक तकनीकी विशेषज्ञता का लाभ पवन ऊर्जा, जल विद्युत, बायोमास जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने में हो जाएगा। हरित भागीदारी की दिशा में उठाया गया सबसे ठोस कदम कल था। इससे नॉर्वेजियन कंपनियां हरित हाइड्रोजन, नीली अर्थव्यवस्था, चक्रीय अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों में नवाचार और निवेश कर सकेंगी। भारत एक डेडिकेटेड पवेलियन के साथ नॉर शिपिंग 2027 में भी भाग लेगा। कल व्यापार शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस हिस्सेदारी को बढ़ाकर 25% करने का विजन साझा किया है।
0: धन्यवाद संगीता। भारत और स्वीडन का विश्वास है कि वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में सहयोग से साझा समृद्धि और सतत भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन द्वारा लिखे गए एक लेख में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बढ़ती भू राजनीतिक अनिश्चितता, ऊर्जा असुरक्षा और आर्थिक बिखराव के समय में दुनिया को फैसला करना है कि वो या तो संकीर्ण राष्ट्रीय सोच की ओर लौट जाए या फिर आपसी सहयोग को सुदृढ़ करे।
2: इस लेख में दोनों प्रधानमंत्रियों ने इस बात का जिक्र किया है कि इस समय जब संयुक्त राष्ट्र अपनी 80वीं वर्षगांठ मना रहा है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और बहुपक्षवाद का महत्व और भी अधिक स्पष्ट हो गया है। दोनों नेताओं ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभु समानता पर आधारित नियमों से संचालित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था ने दशकों तक स्थिरता और विकास सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाई है। लेख में ये भी बताया गया है कि एक प्रमुख विकास इंजन और ग्लोबल साउथ की जिम्मेदार आवाज के तौर पर निकट भविष्य के लिए भारत के दो महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। पहला 2047 तक विकसित देश का दर्जा हासिल करना और दूसरा 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करना। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का दो दिन का ये दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के व्यक्तिगत निमंत्रण पर वहां जा रहे हैं। केवल भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन लोग भी भारत में व्यावसायिक अवसरों की तलाश करने के लिए उत्सुक हैं। और जानकारी के लिए बात करते हैं हमारी संवाददाता सुपर्णा भाटिया से, जो इस समय रोम में मौजूद है। सुपर्णा, प्रधानमंत्री का आज इटली में क्या क्या कार्यक्रम है?
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इटली पहुँचने वाले हैं, जो उनके 5 देशों के दौरे का अंतिम चरण है। इस यात्रा से भारत इटली रणनीतिक संबंधों को कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश और औद्योगिक साझेदारियों से जुड़ी सहयोग योजनाओं की घोषणा होने की संभावना है, क्योंकि दोनों देश आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सहयोग के नए क्षेत्रों की तलाश में हैं। व्यापारिक संबंध पहले से ही मजबूत हैं और इस यात्रा के दौरान होने वाली उच्च स्तरीय वार्ताओं के बाद इनके और आगे बढ़ने की उम्मीद है। मुझे यहाँ भारतीय प्रवासी समुदाय से बात करने का भी अवसर मिला, जो प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर विशेष रूप से उत्साहित हैं।
0: जानकारी के लिए धन्यवाद सुपर्णा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम से भेंट की और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी महत्वपूर्ण है। श्री सिंह ने कहा कि भारत और वियतनाम साझा मूल्यों, रक्षा, सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में घनिष्ठ सहयोग साझा करते हैं। श्री सिंह ने हनोई में वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। दोनों पक्षों ने समुद्री सुरक्षा, रक्षा उद्योग, प्रशिक्षण और क्षेत्रीय स्थिरता में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग से मुलाकात के लिए चीन की यात्रा पर हैं। क्रेमलिन के अनुसार दोनों नेता आर्थिक सहयोग और प्रमुख क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये यात्रा चीन रूस मैत्री संधि की 25वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित की गई है। ये वार्ताएं ऐसे समय में हो रही हैं जब वैश्विक भू राजनीतिक तनावों के बीच चीन, अमरीका और रूस दोनों के साथ अपने संबंधों को संतुलित करने का प्रयास कर रहा है। यूक्रेन संघर्ष को लेकर पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद चीन रूस का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और रूसी तेल तथा गैस का

0: प्रमुख खरीदार बना हुआ है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए लावारिस कुत्तों को टीकाकरण या नसबंदी के बाद वापस न छोड़ने के अपने पूर्व निर्देशों को वापस लेने से इनकार कर दिया है। एक रिपोर्ट।
1: न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवंबर 2025 के आदेश में संशोधन की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया और अधिकारियों को ऐसे कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया। अदालत ने बच्चों, बुजुर्गों और राह चलते लोगों पर कुत्तों के हमलों की बेहद चिंताजनक घटनाओं का हवाला देते हुए कहा है कि यह समस्या हवाई अड्डों और आवासीय कॉलोनियों सहित संवेदनशील सार्वजनिक क्षेत्रों तक पहुँच गई है। पीठ ने चेतावनी दी है कि निर्देशों का पालन न करने वाले अधिकारियों को अवमानना और अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: भारतीय रेलवे ने जम्मू श्रीमाता वैष्णो देवी कटरा खंड पर 238 करोड़ रुपए की लागत से महत्वपूर्ण ढलान स्थिरीकरण, सुरंग पुनर्निर्माण और पुल संरक्षण कार्यों को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये कार्य देश के कुछ सबसे चुनौतीपूर्ण भूभागों में सुरक्षित और विश्वसनीय संपर्क सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। रेलवे ने अरक्कोनम चेंगलपट्टू दोहरीकरण परियोजना के लिए 993 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। चेन्नई उपनगरीय रेल नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए ये फैसला किया गया है। रेलवे ने 54 किलोमीटर लंबे क्यूल झाझा तीसरी लाइन प्रोजेक्ट को 962 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री ने कहा है कि ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाले हावड़ा दिल्ली कॉरिडोर पर क्षमता को बढ़ाएगा और रेल सेवाओं की समय की पाबंदी और ऑपरेशनल लचीलेपन को बेहतर बनाने में मदद करेगा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर को स्मार्ट पावर का एक सटीक उदाहरण बताया है। वे आज राष्ट्रीय राजधानी में सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज में सुरक्षा से समृद्धि सतत राष्ट्र विकास के लिए स्मार्ट पावर विषय पर आयोजित एक सेमिनार को संबोधित कर रहे थे।
2: ऑपरेशन सिंदूर डिलीवर्ड मिलिट्री प्रिसिशन इंफॉर्मेशन कंट्रोल।
3: ऑपरेशन सिंदूर ने सटीकता, सूचना नियंत्रण, कूटनीतिक संकेत और आर्थिक संकल्प को सुसंगत राष्ट्रीय कार्रवाई के रूप में प्रस्तुत किया। इसने दुश्मन पर गहरा प्रहार किया और आतंकी ढांचे को ध्वस्त कर दिया तथा एक लंबे समय से चली आ रही रणनीतिक धारणा को भी तोड़ दिया। सेना ने फिर इसके बाद सोच समझ कर विवेक सम्मत ढंग से अपनी कार्रवाई रोक दी। 88 घंटे चला ऑपरेशन सिंदूर स्मार्ट पावर का सबसे पूर्ण और सटीक उदाहरण था।
2: स्मार्ट पावर इन इट्स मोस्ट कंप्लीट एक्सप्रेशन।
0: मिजोरम में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो गया है। मिजोरम के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉक्टर लाल रोजामा ने कहा कि संशोधन प्रक्रिया के दौरान अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की आवश्यकता है क्योंकि अधिकारी सीधे तौर पर मतदाता सूचियों का काम संभालेंगे। उन्होंने अधिकारियों से पूरी ईमानदारी, सटीकता और सतर्कता के साथ काम करने का आग्रह किया ताकि मिजोरम के वास्तविक नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जो एक सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बढ़ोतरी है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 98.64 रुपए प्रति लीटर है जबकि डीजल की कीमत 91.58 रुपए है। मुंबई में पेट्रोल 107.59 रुपए और डीजल 94.08 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमतें 109.70 रुपए और डीजल की 96.07 रुपए दर्ज की गई जबकि चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 104.49 रुपए और डीजल की 96.11 रुपए प्रति लीटर है। ये बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और हुर्मुज जलडमरू मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हुई है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता भुवन चंद्र खंडूरी का आज एक निजी अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। सेना के पूर्व मेजर जनरल रहे श्री खंडूरी ने 2 बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री भी रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके निधन को एक अपूर्णीय क्षति बताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री खंडूरी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने दिल्ली, मध्य प्रदेश, पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार और मराठवाड़ा में भी आज ऐसी स्थिति रहने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में अगले 5 दिन तक लू चलेगी। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिन के लिए भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार दिन के समय दिल्ली में कुछ स्थानों पर भीषण गर्मी पड़ने की आशंका है। एक रिपोर्ट।
1: विभाग के अनुसार दिल्ली में आज का अधिकतम तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। कल मौसम विभाग के रिज क्षेत्र स्टेशन पर 44.6 डिग्री सेल्सियस, सफदरजंग स्टेशन पर 43.4 डिग्री सेल्सियस, लोदी रोड स्टेशन पर 43.8 डिग्री सेल्सियस और पालम स्टेशन पर 43.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
0: उत्तर प्रदेश में अगले सप्ताह भीषण गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में बांदा 47 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ लगातार दूसरे दिन भी देश का सबसे गर्म स्थान रहा।
2: आज भी राज्य भर में भीषण गर्मी और लू की स्थिति बनी हुई है। बुंदेलखंड और अन्य इलाके तेज धूप और झुलसा देने वाली हवाओं की चपेट में हैं। धीमी हवा के कारण उमस और बढ़ गई है, जिससे राज्य के कई हिस्सों में सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। वहीं राज्य के कई जिलों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ऊपर बना हुआ है। मौसम विभाग ने 33 जिलों के लिए लू की चेतावनी जारी की है। राज्य के दक्षिणी और मध्य भागों में अगले सप्ताह तक लू के हालात बने रहेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि धरती माँ के लिए पूरी मानवता एक परिवार है। सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि संपूर्ण विश्व एक घर की तरह है, जहाँ हर संस्कृति का अपना महत्व और सम्मान है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से होगा। कल रात चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही हैदराबाद ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.2% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 136 अंक की वृद्धि के साथ 75,451, जबकि निफ्टी 42 अंक बढ़कर 23,692 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा और व्यापार में सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित 3rd भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने समाचार पत्र में एक संयुक्त लेख में वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में साझेदारी पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय का टीकाकरण या नसबंदी किए गए लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के अपने पूर्व आदेश को वापस लेने से इनकार। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में अगले 3 दिन के लिए लू का येलो अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं संकर नस्ल के पशुपालन और डेयरी व्यवसाय पर डॉक्टर नवल किशोर सिंह की वार्ता।
4: स्थानीय दुधारू नस्ल के पशुओं की उत्पादकता विदेशी व संकर नस्ल के पशुओं से कम, जबकि रोग प्रतिरोधक क्षमता अपेक्षाकृत अधिक होती है तथा इसके साथ ही रख रखाव एवं पालन पर खर्च भी अन्य नस्लों के पशुओं से कम लगता है। परंतु बढ़ती जनसंख्या द्वारा बढ़ते दुग्ध उत्पादन की मांग को ध्यान में रखते हुए संकर नस्ल के पशुओं की संख्या में वृद्धि वर्तमान समय की आवश्यकता है। स्थानीय गाय व भैंस को उन्नत नस्ल के नर पशुओं से परस्पर समागम करके या उन्नत दुधारू नस्ल के नर पशुओं के वीर्य से कृत्रिम गर्भाधान विधि द्वारा उत्पन्न नस्ल के पशु को संकर नस्ल का पशु कहते हैं। वर्ष 2012 की पशुगणना के अनुसार उत्तराखंड में संकर नस्ल के गोवंशीय पशुओं की संख्या

42,000 थी, जबकि गोवंशीय पशुओं की कुल संख्या 9,06,000 थी। इसमें कोई शक नहीं कि हमारा देश 15,51,00,000 टन दुग्ध उत्पादन के साथ विश्व में प्रथम स्थान पर है। फिर भी प्रति पशु दुग्ध उत्पादकता अन्य देशों की तुलना में कम है। यह आंकड़ा देशी गाय में औसतन 2.2 किलोग्राम, भैंस में 4.58 किलोग्राम तथा संकर नस्ल के गाय में 6.63 किलोग्राम प्रतिदिन प्रति पशु है। उत्तराखंड राज्य में दुग्ध उत्पादन को दुगुना करने के लिए संकर नस्ल के पशुओं की संख्या बढ़ानी होगी। इसके लिए पशुपालक भाइयों को पशु प्रजनन हेतु कृत्रिम गर्भाधान विधि को अपनाना चाहिए। वर्तमान में सिर्फ 36% प्रजनन योग्य पशु ही इस विधि द्वारा गर्भित किए जाते हैं, जबकि इस विधि का लाभ 80% प्रजनन योग्य पशुओं तक पहुंचाना होगा, तभी दुगुने दुग्ध उत्पादन के साथ साथ आय में वृद्धि संभव है। पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा प्रत्येक पशु चिकित्सालय, पशु सेवा केंद्र एवं कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों तथा बायफ के केंद्रों पर उपलब्ध है। आवश्यकता सिर्फ पशुपालक भाइयों को जागरूक होने की है, जिससे अपने पशुओं में गर्मी के लक्षण को पहचान कर समय से कृत्रिम गर्भाधान करवा सकें, तभी दुग्ध उत्पादन दुगुनी एवं दुगुनी आय के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान हेतु सुबह में गर्मी के लक्षण दिखने पर उसी दिन शाम तक गर्भित करा दें, या यदि शाम के वक्त गर्मी में आया है तो उसे दूसरे दिन सुबह के वक्त गर्भित कराना चाहिए। समय से पूर्व तथा समय के बाद पशुओं को गर्भित कराने पर गर्भ रुकने की संभावना कम हो जाती है। पशुपालन हमारे देश में मुख्यतः दुग्ध उत्पादन हेतु किया जाता है। अधिक दूध उत्पादन के लिए सर्वप्रथम अच्छी नस्ल के गाय भैंस का चुनाव करना चाहिए। हमारे देश में वर्तमान में गाय की कुल 37 नस्लें, भैंस की 13 नस्लें, बकरी की 23 नस्लें तथा भेड़ की 39 नस्लें पंजीकृत हैं। इन पशु नस्लों में अधिकांश नस्लें कम दुग्ध उत्पादन करती हैं, किंतु देसी नस्ल के गाय व भैंस में रोगरोधी क्षमता अधिक होती है। अतः दुग्ध उत्पादकता एवं रोग प्रतिरोधी क्षमता को ध्यान में रखते हुए संकर नस्ल के पशु का चुनाव को सही माना गया है। इसलिए देसी गाय को जर्सी या होल्स्टीन फ्रीजियन के साथ संकर कृत करके अथवा देसी अवर्णित गाय को दुग्ध नस्ल वाली देसी गाय जैसे साहिवाल, रेड सिंधी, थारपरकर के से संसर्ग द्वारा प्राप्त संतति का चुनाव करके दुग्ध उत्पादन में अपेक्षाकृत वृद्धि की जा सकती है। जर्सिंद, करण स्विस, करण फ्रायस, वृंदावनी आदि संकर नस्ल के गाय देश में विकसित की गई है। हमारे देश में भैंस की सर्वश्रेष्ठ नस्लें पहले से ही पाई जाती हैं, अतः भैंसों में संकरीकरण हेतु विदेशी नस्ल के भैंस की आवश्यकता नहीं होती है। हिमालयी पर्वतीय क्षेत्रों में गाय तथा भैंसों में कोई विशिष्ट नस्ल नहीं पाई जाती है, फिर भी इन अवर्णित नस्लों का स्थान विशेष के अनुसार अपना एक खास महत्व है। इनका भी संकरीकरण द्वारा नस्ल सुधार की प्रतिक्रिया प्रत्येक राज्यों के अनुसंधान केंद्रों तथा विभिन्न पशुधन विकास योजनाओं के माध्यम से चल रहा है। किसान भाइयों को डेयरी व्यवसाय शुरू करने से पहले योजना बनाकर कार्य करना चाहिए। सफल डेयरी व्यवसाय के 4 प्रमुख बिंदु हैं: उन्नत नस्ल, समुचित आवास व्यवस्था, संतुलित भोजन तथा स्वास्थ्य प्रबंधन। इन 4 बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उन्नत नस्ल के अंतर्गत अधिक दूध देने वाली गाय व भैंसों का चुनाव करना तथा स्थानीय पशुओं को नस्ल सुधार विधि द्वारा उन्नत करना शामिल है। उचित आवास व्यवस्था के अंतर्गत पशुओं को विषम वातावरणीय प्रकोप से बचाने तथा शांतचित्त वातावरण के लिए आवास की आवश्यकता होती है। सुनियोजित एवं पर्याप्त आवास व्यवस्था के बिना पशुओं का प्रबंधन अधूरा ही रह जाता है। अकुशल आवास प्रबंधन योजना से धन तथा श्रम का दुरुपयोग तो होता ही है, साथ ही इस व्यवसाय में लाभ के बजाय हानि ज़्यादा होती है। आवास बनाते वक्त उस स्थान विशेष की जलवायु तथा स्थानीय सामग्री की उपलब्धता का ध्यान रखना चाहिए। आवास में प्रति पशु स्थान की आवश्यकता इतनी होनी चाहिए जिससे पशु आराम से अपनी गतिविधियां कर सके। इसके साथ ही पशुपालक भाइयों को किसी प्रकार की परेशानी न हो और साफ सफाई आराम से हो सके। आवास चाहे कच्चे हों या पक्के, स्थानीय मौसम के अनुकूल होना चाहिए जिससे उत्पादन प्रभावित न हो।

साथ ही प्रकाश एवं हवा का आवागमन भी बाधित न हो। पशुपालक भाइयों, सफल पशुपालन के लिए पशु आहार प्रबंधन का विशेष महत्व है, क्योंकि पशुपालन पर आने वाले व्यय का 70-75% व्यय पशुओं के आहार प्रबंधन पर ही होता है। पशु पोषण का सीधा संबंध पशुओं की शारीरिक वृद्धि एवं उत्पादन क्षमता से है। पशुओं के लिए संतुलित आहार का मतलब ऐसे आहार से है जिसे खिलाने से पशुओं को उचित मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज लवण मिल सके। इन सब की प्राप्ति के लिए पशुओं को हरा चारा, सूखा चारा तथा दाना, जिसे हम राती मिश्रण भी कहते हैं, खिलाया जाता है। गर्मी के मौसम में हरे चारे के लिए मक्का, ज्वार, बाजरा तथा लोबिया का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा हाइब्रिड नेपियर, सीता घास, कंगो सिग्नल इत्यादि बहुवर्षीय चारे उगाए जा सकते हैं। राती मिश्रण में अनाज, अनाज के सह उत्पाद, खल, खनिज मिश्रण तथा नमक को उचित मात्रा में मिलाकर बनाया जाता है, जिसे पशुपालक भाई स्वयं बना सकते हैं। राती मिश्रण बनाने की विधि इस प्रकार से है। प्रति 100 किलोग्राम राती मिश्रण बनाने के लिए अनाज की मात्रा 25 किलोग्राम, अनाज के उत्पाद की मात्रा 25 किलोग्राम, दाल चूनी की मात्रा 25 किलोग्राम, खली 22 किलोग्राम, खनिज मिश्रण 2 किलोग्राम तथा आयोडीन युक्त नमक की मात्रा 1 किलोग्राम लेकर अच्छी तरह से मिलाने के बाद ही पशुओं को उचित हिसाब से खिलाना चाहिए। यह राती मिश्रण 3 माह से अधिक उम्र के पशुओं को ही खिलाना चाहिए। वयस्क पशु को 2.5 किलोग्राम दाना निर्वाह राशन के रूप में तथा 1 किलोग्राम दाना प्रति 2.5 लीटर दूध के हिसाब से देना चाहिए। इसके अलावा 4-6 किलोग्राम सूखा चारा तथा 20-25 किलोग्राम हरा चारा खिलाना चाहिए। दुधारू पशुओं का स्वास्थ्य इनके खान पान, आवास एवं रख रखाव पर निर्भर करता है। इसमें कोई भी त्रुटि या असावधानियां होने पर पशु रोगग्रस्त हो जाते हैं। पशुओं में मुख्य रूप से 2 प्रकार के रोग होते हैं, असंक्रामक रोग तथा संक्रामक रोग। ऐसे रोग जो एक पशु से दूसरे पशु में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न फैलें, अर्थात रोगी पशु तक ही सीमित रहें, उसे असंक्रामक रोग कहते हैं। विभिन्न उपापचयी रोग जैसे दुग्ध ज्वर, कीटोन मैता, ग्रास टिटेनी, मधुमेह तथा विभिन्न अल्पता रोग जैसे अखाद्य पदार्थ खाना, जिसे पाइका कहते हैं, पीलिया, एनीमिया, घेंघा, रतौधी आदि रोग शामिल है। असंक्रामक रोग साधारणतया पशु आहार में पाए जाने वाले पोषक तत्वों की कमियों से उत्पन्न होते हैं। पशुओं को असंक्रामक रोगों से बचाव का एकमात्र उपाय है कि पशुओं को दाना संतुलित दिया जाए और उनके शरीर भार एवं अवस्था के अनुसार 25-50 ग्राम खनिज मिश्रण तथा 10-25 ग्राम नमक प्रतिदिन के राशन में मिलाकर अवश्य खिलाएं। ऐसे रोग जो एक पशु से दूसरे पशु में दूषित दाना, पानी, हवा, मनुष्य एवं पशु पक्षी आदि द्वारा तेजी से फैलते हैं तथा आसपास के स्वस्थ पशुओं को प्रभावित करते हैं तथा इनसे पशुओं में मृत्यु दर भी अधिक होती है। किसान भाइयों, विषाणु जनित पशु रोगों में मुख्यतः खुरपका एवं मुंहपका रोग, पोंकनी रोग, अढ़ैया रोग, रैबीज आदि रोग आते हैं। खुरपका मुंहपका रोग से रोकथाम का एकमात्र उपाय नियमित टीकाकरण ही है। टीकाकरण स्वस्थ पशुओं को साल में 2 बार अर्थात मार्च, अप्रैल एवं सितंबर, अक्टूबर के महीने में पशु चिकित्सक की सलाह से लगवाना चाहिए। PPR रोग में पशु को पतला दस्त, बदबूदार दस्त, तेज बुखार, आंखें लाल हो जाती हैं, नाक से पानी आना, मुंह में छीलन होना, मसूड़ों पर रक्तस्राव तथा निमोनिया होता है। रोगी पशु का उपचार सिर्फ लक्षण के आधार पर किया जाता है। इस रोग से बचाव के लिए 4 माह से अधिक उम्र के पशुओं को टीकाकरण कराना चाहिए। प्रथम टीका लगाने के बाद प्रति 3 वर्ष में यह टीका लगाया जाता है। अढ़ैया रोग या अल्पकालिक ज्वर, जिसे 3-day sickness के नाम से जानते हैं, इस रोग में पशु 3 दिन तक ग्रसित रहता है और रोगी पशु में तीव्र बुखार, कंपन, मांसपेशियों में जकड़न, लंगड़ाना, भूख न लगना, सुस्त पड़ना तथा दांत किटकिटाना आदि लक्षण दिखाई देते हैं। इनमें मृत्यु दर कम होता है और 3 दिन बाद पशु स्वतः ठीक हो जाता है। इस रोग से बचाव के लिए टीका उपलब्ध नहीं है। रैबीज बीमारी गाय और भैंसों में पागल कुत्ते, भेड़िया, सियार, लोमड़ी, शेर, चीता आदि के काटने से फैलता है। इस रोग से बचाव एवं उपचार दोनों में टीकाकरण लाभप्रद है। खुले घाव को साबुन से अच्छी तरह साफ करके एंटीसेप्टिक तथा एंटीबायोटिक का इस्तेमाल

0: माल पशु चिकित्सक के सलाह पर करना चाहिए। किसान भाइयों, अब बात करते हैं जीवाणु जनित रोगों का, जिनमें मुख्यतः गलघोंटू रोग, लंगड़ी रोग, संक्रामक गर्भपात, क्षय रोग, टीटेनस, एक्टिनोबेसिलोसिस, एक्टिनोमाइकोसिस, थनैला तथा प्लीहा ज्वर, जिसे एंथ्रेक्स रोग के नाम से जानते हैं, पाया जाता है। इन जीवाणु जनित रोगों से बचाव के लिए टीका तथा रोगग्रस्त पशुओं के इलाज के लिए उचित दवा पशु चिकित्सालयों में उपलब्ध है। गलघोंटू रोग एक जीवाणु जनित रोग है जो हिमरेजिक सेप्टिसिमिया नामक जीवाणु से होता है। यह रोग प्रायः वर्षा ऋतु या उसके उपरांत होता है। इस रोग में पशु को तेज बुखार, लार गिरना, गले के नीचे सूजन तथा सांस लेने में परेशानी होती है। इस रोग की रोकथाम के लिए अप्रैल मई माह में टीकाकरण कराना चाहिए। लंगड़ी रोग में पशु को तेज बुखार, पैरों में लंगड़ापन, मांसपेशियों में सूजन, जिसे दबाने पर चरचर की आवाज़ आती है, ऐसा लगता है जैसे हवा भरी हो। इस रोग से बचाव के लिए टीका वर्षा ऋतु से पूर्व यानी अप्रैल मई माह में करना चाहिए। लंगड़ी बुखार तथा गलघोंटू दोनों का टीका एक साथ या अलग अलग दोनों प्रकार से दिया जा सकता है। संक्रामक गर्भपात में पशु के घुटनों में सूजन तथा गाभिन पशु के अंतिम तिमाही में गर्भपात होता है। इस रोग से बचाव के लिए टीका 3 से 6 माह के केवल मादा पशुओं में ही लगता है। इस टीका से मादा पशु में जीवन भर के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो जाती है। इस टीका को नर पशु में नहीं लगाया जाता, क्योंकि इससे भविष्य में नर सांड का प्रजनन क्षमता प्रभावित होता है। एक्टिनोबेसिलोसिस रोग से ग्रसित पशु के निचले जबड़े में, गर्दन में तथा जीभ में गांठ बन जाती है, और बाद में जब गांठ पक जाता है तो फूटने पर उसमें मवाद निकलता है।
1: अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर नवल किशोर सिंह की वार्ता। विषय था संकर नस्ल के पशुपालन एवं डेयरी व्यवसाय। इसी के साथ ही खेती की बातें कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है अब जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। आज रात्रि 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। रात्रि 10:00 कार्यक्रम खेल दर्पण हम आपके लिए लेकर आएंगे हमारे लखनऊ केंद्र से। हमारी सायंकालीन सभा के आरंभ में संध्या 5:00 आप सुनेंगे हिंदी समाचार, और 5:05 पर होगा कुमाऊनी लोकगीतों का कार्यक्रम शैल स्वर। युवा श्रोता अपना कार्यक्रम युवाणी सुनेंगे 5:15 पर। इस कार्यक्रम में आज की बात का विषय रहेगा अपार क्षमता का भंडार युवा। इसी कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे आर्यन कुमार की वार्ता खेल से ऊपर खेल की भावना। उत्तरायण कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आएंगे 5:45 पर। भक्ति संगीत कार्यक्रम आप सुनेंगे 6:41 पर। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे मुस्कान अग्रवाल और अनूप जलोटा के गाए भक्ति गीत। गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे 6:50 पर। किसान वाणी कार्यक्रम होगा संध्या 7:00। इस कार्यक्रम में आज की बातें होंगी सूक्ष्म जीवों का संतुलित प्रयोग विषय पर, चर्चा होगी औषधीय फसलों से लाभ विषय पर। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे उर्वरकों का संतुलित प्रयोग कब और कैसे विषय पर डॉक्टर आर पी नीणा से भेंटवार्ता। फिल्म संगीत हम आपके लिए लेकर आएंगे 7:40 पर। सबरस कार्यक्रम होगा रात्रि 8:00 और फिल्म संगीत का कार्यक्रम इंद्रधनुष हम आपके लिए लेकर आएंगे 9:15 पर। महफिल गजलों का ये फरमाइशी कार्यक्रम होगा रात्रि 9:30 पर। रात्रि 10:30 पर होगा कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।

एफएम 100.8 मेगाहर्ट्ज और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही फनकार।

एक ही फनकार कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को कविता का प्रेम भरा नमस्कार। और श्रोताओं, हमारे आज के इस कार्यक्रम के फनकार हैं, जी हाँ, अभिनेता, फिल्म निर्माता, कहानी लेखक और समाज की आधुनिक समस्याओं को उजागर करने वाले महान साहित्यकार, जिनका आज ही के दिन जन्म हुआ है 1938 में महाराष्ट्र में। नाम है गिरीश कर्नाड। इनका पूरा नाम गिरीश रघुनाथ कर्नाड है। दोस्तों, एक जाने माने कवि, रंगमंच कर्मी, कहानी लेखक, नाटककार, फिल्म निर्देशक, फिल्म अभिनेता, जी हाँ, गिरीश कर्नाड। गिरीश कर्नाड दोस्तों बचपन से ही, स्कूल के समय से ही थिएटर से जुड़कर काम करने पर रुचि रखने वाले एक ऐसे एक्टर थे जिनकी कला आज भी लोगों के दिल में बसती है। तो दोस्तों, चलिए आज इस कार्यक्रम में उनके फिल्मों के कुछ गीत सुनते हैं और थोड़ी सी बातचीत करते हैं उनके बारे में। पहले ये गीत उनकी फिल्म मेरी जंग से।

दोस्तों, गिरीश कर्नाड साहित्य और सिनेमा में एक जाना पहचाना नाम थे। उनकी मुख्य रचनाएं थी ययाति, तुगलक, हयवदन, अंजू मल्लिगी, और मुख्य फिल्में थी निशांत, मंथन, पुकार, मेरी जंग, सुरसंगम, आशा, डोर और एक था टाइगर। दोस्तों, गिरीश कर्नाड साहब को 1994 में साहित्य अकादमी पुरस्कार और 1998 में ज्ञानपीठ पुरस्कार के अलावा पद्मश्री और पद्म भूषण जैसे महान सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका था। उन्होंने हिंदी सिनेमा में उत्सव, मंथन, इकबाल, डोर जैसी फिल्मों में काम करके कुछ ऐसी प्रसिद्धि पाई जो उनके इस दुनिया से चले जाने के बाद भी लोगों के दिल में कायम है। आइए सुनते हैं उनकी फिल्म जिसमें उन्होंने जितेंद्र के एक बेहतरीन दोस्त का रोल निभाया और ये फिल्म ब्लॉकबस्टर भी साबित हुई, आशा का ये गीत आप सभी के लिए।

दोस्तों, 1977 में आई हिंदी फिल्म स्वामी गिरीश कर्नाड की एक बहुचर्चित फिल्म रही। इसमें गिरीश कर्नाड ने सबाना आजमी के साथ मुख्य भूमिका निभाई थी। श्याम बेनेगल के निर्देशन में बनी निशांत गिरीश कर्नाड की एक और चर्चित फिल्म भी रही, और साथ ही साथ सुरसंगम इनकी

बेहतरीन फिल्मों में से एक थी। दोस्तों, मंथन फिल्म में गिरीश कन्नार ने जो मुख्य भूमिका निभाई थी, इस फिल्म में उन्हें नेशनल अवार्ड मिला। आइए अब सुनते हैं कि फिल्म सुरसंगम का ये गीत।

दोस्तों, सुर संगम फिल्म अपने समय की एक बहुचर्चित फिल्म थी। इस फिल्म में गिरीश कर्नाड ने एक शास्त्रीय संगीतज्ञ का किरदार निभाया था। जाने माने अभिनेता और साहित्यकार गिरीश कर्नाड का निधन दोस्तों 10 जून 2019 को बंबई में हुआ। आज हमारे एक ही फनकार कार्यक्रम के एक ऐसे फनकार को हम याद कर रहे थे इस कार्यक्रम में, जिन्होंने अपना व्यक्तित्व खुद ही बनाया बॉलीवुड में। दोस्तों, अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि एक ही फनकार कार्यक्रम से आप सभी से विदा लें। कल इसी कार्यक्रम में फिर से एक और फनकार के गीतों के साथ आपके लिए हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अपना रेडियो सेट छोड़कर कहीं ना जाएं, क्योंकि आकाशवाणी फिल्म संगीत सदाबहार फिल्मी गीत आपके लिए फिर से ला गया है। जी हाँ, अपराह्न के बज गए हैं 3 और आप सभी के लिए प्रस्तुत है सदाबहार फिल्मी गीत।

जो ना तो पुराने होते हैं और ना ही सुनने वालों के दिल से उतरते हैं। ये हैं हमारी हिंदी सिनेमा के सदाबहार नगमे। हर दौर में उतने ही तरोताज़ा लगते हैं जितने अपनी पहली धुन में थे। कभी लता जी की मधुर आवाज़ में, कभी किशोरदा की खिलखिलाहट में, तो कभी रफ़ी साहब की मखमली तान में। इन गीतों ने हर दिल को हर समय छुआ ही है। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम में सबसे पहले वो कौन थी फिल्म गायकी।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम में वो कौन थी फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर के स्वर में। गीत राजा मेहंदी अली खां का था और संगीत मदन मोहन का। चलो कुछ पल खुद को वक्त दे देते हैं, चलो कुछ पल खुद को वक्त दे देते हैं और इन मधुर गीतों के साथ एक मीठा सा सफ़र तय करते हैं। मीठा सा सफ़र जो आज भी उतना ही नया और नए एहसास के साथ दिल से गुजर जाता है।

0: जिस गीत में दिल लगे वही गीत आपका हो जाता है। 60 और 70 के दशक का संगीत भारतीय सिनेमा का स्वर्णिम दौर माना जाता है। उस समय के गीत केवल मनोरंजन नहीं थे बल्कि भावनाओं की अभिव्यक्ति भी थे।
1: ऐसा लगता है कि वो किसी और सदी की बात थी।
2: शायद उन दिनों की बात होगी जब ये इमारत अभी उजड़ी नहीं थी।

0: परसों बाद लगी। ऐसा लगता है कि वो किसी और सदी की बात थी।
1: शायद उन दिनों की बात होगी जब ये इमारत अभी उजड़ी नहीं थी।
0: हाँ, पिछले किसी जन्म की बात ही तो लगती है।
1: एक काम करें, जब तक तुम यहाँ हो रोज घर पे खाने के लिए तो आया ही करोगी, खाने के बाद घूमने निकल आया करेंगे। कम से कम ये इमारत कुछ दिनों के लिए तो बस जाएगी। तुम्हारी शॉल कहाँ?
0: भूल गई। ना ना,
1: तुम नहीं बदलोगी।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये गुब्बारे
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

इस अंतराल के बाद स्वागत आप सभी का फिर से सदाबहार फिल्मी गीत कार्यक्रम में। दोस्तों, शुरू की ये सौगात आपके दिल तक पहुंचाने का जरिया है आकाशवाणी। तो सुनते रहिए और जुड़े रहिए, क्योंकि संगीत वो जादू है जो हर उम्र के लोगों को एक डोर में बांध देता है। पुराने गीतों की यही खासियत है कि उन्हें सुनते ही यादों का कारवां चल पड़ता है, अल्फाज से परे दिलों को ये जोड़ देता है।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में नीला आकाश फिल्म का गीत। दोस्तों, सुर, शब्द और भावनाओं का ऐसा संगम जो पीढ़ियाँ बदलने के बाद भी दिलों में जिंदा रहता है। जब भी सदाबहार नगमे कानों में गूंजते हैं, दिल फिर से बीते दौर की गलियों में पहुंच जाता है। कुछ गीत वक्त के साथ पुराने नहीं होते। हिंदी सिनेमा का संगीत हमारे एहसासों का आईना है, जहाँ हर धुन किसी याद से जुड़ी होती है।

दोस्तों, उम्मीद करते हैं गीतों की ये छोटी सी यात्रा आपके दिल को सुकून दे गई होगी। कुछ और अनमोल गीतों के साथ फिर से मुलाकात होगी कल इसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे सदाबहार फिल्मी गीत FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। अपराह्न के 3:30 हुए हैं। अब हमारी आज की सभा के प्रसारण यहीं पर संपन्न होते हैं। आपकी और हमारी सायंकालीन सभा में आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती के ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। संध्या के 5 बजने वाले हैं। अब हमारी आज की सायंकालीन सभा आरंभ हो रही है। सभा के आरंभ में समाचार हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आज नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में शुरू हुआ। सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्री शामिल हैं। बैठक का उद्देश्य भारत और नॉर्डिक देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाना है। इस सम्मेलन में ऊर्जा, समुद्री अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी और नवाचार, स्थिरता, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण पर चर्चा होगी। भारत और नॉर्डिक क्षेत्र के बीच फिलहाल व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता लागू है। सम्मेलन में भारत और इस क्षेत्र के देशों के बीच व्यापार और निवेश का विस्तार करने के उपायों पर चर्चा होने की संभावना है। नॉर्डिक ब्लॉक के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार 19 अरब डॉलर के करीब पहुंच गया है। सम्मेलन से भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बहुआयामी सहयोग को और विस्तार मिलने तथा पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने आइसलैंड की प्रधानमंत्री सुश्री क्रिस्टरन फ्रॉस्टडॉटी, फिनलैंड के प्रधानमंत्री श्री पेटरी ओर्पो और डेनमार्क के प्रधानमंत्री सुश्री मेटे फ्रेडरिक्सन के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: इस यात्रा से भारत इटली रणनीतिक संबंधों को कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश और औद्योगिक साझेदारियों से जुड़ी सहयोग योजनाओं की घोषणा होने की संभावना है, क्योंकि दोनों देश आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सहयोग के नए क्षेत्रों की तलाश में हैं। व्यापारिक संबंध पहले से ही मजबूत हैं और इस यात्रा के दौरान होने वाली उच्च स्तरीय वार्ताओं के बाद इनके और आगे बढ़ने की उम्मीद है। भारतीय प्रवासी समुदाय प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर विशेष रूप से उत्साहित है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने, भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और विकसित भारत की दिशा में देश की प्रगति के लिए उद्योग और सरकार के बीच सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में श्री गोयल ने कहा कि वर्तमान वैश्विक स्थिति और भू राजनीतिक अनिश्चितताओं को भारत के लिए व्यापारिक प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने, तेजी से सुधार करने, अधिक लचीलापन विकसित करने और आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए।

0: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज 6 लेन वाले एक्सिस नियंत्रित DND सोहना राजमार्ग संख्या 148 NA का निरीक्षण किया। श्री गडकरी ने कहा कि दिल्ली NCR क्षेत्र में 87,000 करोड़ रुपए की लागत वाली लगभग 1,850 किलोमीटर की सड़क परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि 225 किलोमीटर लंबी 13,000 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजनाएं अभी निर्माणाधीन है। श्री गडकरी ने कहा कि एक्सप्रेसवे, रिंग रोड, सुरंगों और एलिवेटेड कॉरिडोर के माध्यम से सरकार दिल्ली NCR के पूरे परिवहन नेटवर्क का आधुनिकीकरण कर रही है और इसे भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार कर रही है। रेलवे ने 54 किलोमीटर लंबे क्यूल झाझा तीसरी लाइन योजना के लिए 962 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। ये परियोजना हावड़ा दिल्ली कॉरिडोर की क्षमता को बढ़ाएगा। रेलवे ने अरक्कोनम चेंगलपट्टू दोहरीकरण परियोजना के लिए भी 993 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। चेन्नई उपनगरीय रेल नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए ये फैसला लिया गया है। साथ ही जम्मू श्री माता वैष्णो देवी कटरा खंड पर 238 करोड़ रुपए की लागत से महत्वपूर्ण ढलान स्थिरीकरण, सुरंग पुनर्निर्माण और पुल संरक्षण कार्यों को मंजूरी दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को देखते हुए रेबीज से संक्रमित बुरी तरह बीमार या अत्यधिक खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच और 3 एकदिवसीय मैच की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा की गई है। शुभमन गिल टेस्ट टीम के कप्तान और ऋषभ पंत की जगह KL राहुल को उप कप्तान बनाया गया है। शुभमन गिल एक दिवसीय टीम की कप्तानी करेंगे और श्रेयस अय्यर उप कप्तान होंगे। विराट कोहली, KL राहुल और ईशान किशन भी टीम में शामिल है। जयपुर में IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। शैल स्वर कार्यक्रम में लीजिए आज सुनिए गोपाल बाबू गोस्वामी का गाया ये कुमावनी लोकगीत।

गोपाल बाबू गोस्वामी के गाए इसी कुमाऊनी लोकगीत के साथ हमारा आज का शैलसर कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से इस सभा के शेष और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

पहले इस सभा के शेष कार्यक्रम आज रात्रि 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। रात्रि 10 बजे खेल तर्पण कार्यक्रम हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। संध्या 6:50 पर गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार और शाम 7:30 पर कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से रिले होंगे। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी शाम 5:15 पर युवाणी कार्यक्रम में आज की बात का विषय होगा अपार क्षमता का भंडार युवा। इसी कार्यक्रम में आर्यन कुमार की वार्ता भी हम आपको सुनवाएंगे। विषय होगा खेल से ऊपर खेल भावना। शाम 5:45 पर उत्तरायण कार्यक्रम में आज की चर्चा का विषय होगा वर्ल्ड फेयर प्ले डे। साथ ही इसी कार्यक्रम में आप सुनेंगे मिशन लाइफ सेव एनर्जी के अंतर्गत सौर ऊर्जा भविष्य के लिए सर्वोत्तम विकल्प विषय पर सोलर प्लांट के क्षेत्र में कार्य कर रहे यूकेसी ग्रुप के क्षेत्रीय प्रबंधक नदीम से श्याम भट्ट की भेंटवार्ता। अनूप जलोटा और मुस्कान अग्रवाल की भक्ति गाई भक्ति रचनाओं का आनंद आप ले सकते हैं भक्ति संगीत कार्यक्रम में संध्या 6:41 पर। किसान वाणी कार्यक्रम में शाम 7 बजे आज की बातें का विषय होगा सूक्ष्म जीवों का संतुलित प्रयोग। साथ ही इसी कार्यक्रम में होगी चर्चा विषय होगा औषधीय पौधों से लाभ। इसी कार्यक्रम में डॉक्टर R.P. मीणा से की गई भेंटवार्ता भी हम आपको सुनवाएंगे उर्वरकों का संतुलित प्रयोग कब और कैसे विषय पर। शाम 7:40 पर हम आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम। मिले जुले गीतों और गज़लों का कार्यक्रम सबरस होगा रात 8 बजे। फरमाइशी गज़लों का साप्ताहिक कार्यक्रम महफिल हम आपके लिए लेकर आएंगे आज रात्रि 9:30 पर। फिल्म संगीत कार्यक्रम इंद्रधनुष प्रसारित होगा रात्रि 9:15 पर और रात्रि 10:30 पर सुनेगा शास्त्रीय संगीत। ये थे इस सभा के शेष कार्यक्रम। अब एक नज़र कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होगी प्रातः 5:55 पर। प्रातः 6:05 पर होगा विचार बिंदु जिसके पश्चात भक्ति संगीत का कार्यक्रम होगा आराधना। 6:40 पर आज की बात देशगान का समय होगा 6:45। विविधा कार्यक्रम आप सुनते हैं प्रातः 6:50 पर। श्री रामचरित मानस गान पाठ से अगला प्रसंग हम लेकर आएंगे प्रातः 7:10 पर। प्रातः 7:30 पर आप सुनेंगे कुमाऊनी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकमंजरी। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम का प्रसारण समय होगा सुबह 8:30। फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम गीत निर्झर आप सुनते हैं सुबह 9:05 पर। सबरस कार्यक्रम होगा सुबह 10:05 पर। शीर्षक गीतों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरबहार सुनेगा सुबह 10:35 पर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए सुबह 11 बजे। लोकसुर कार्यक्रम होगा 11:30 पर और फिल्म संगीत का कार्यक्रम मेरी पसंद आप सुनते हैं दिन में 12 बजे। 12:30 पर घर संसार कार्यक्रम में कल की चर्चा का विषय होगा फिजूल खर्ची से कैसे बचें। दिन में 1:15 पर सुगम संगीत। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग की कड़ी संख्या 1288 हम आपको

30 मिनट पर और फिल्म संगीत का कार्यक्रम मेरी पसंद आप सुनते हैं दिन में 12 बजे। 12:30 पर घर संसार कार्यक्रम में कल की चर्चा का विषय होगा फिजूल खर्ची से कैसे बचें। दिन में 1:15 पर सुगम संगीत। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग की कड़ी संख्या 1288 हम आपको सुनवाएंगे कल दिन में 1:30 पर। दिन में 2 बजे का समय होगा उत्तराखंड के लोकगीत कार्यक्रम का। अपराह्न 2:30 पर खेती की बातें कार्यक्रम में डॉक्टर पंकज कुमार मिश्रा से जानकारी हम आपको सुनवाएंगे कृषि में सूक्ष्म जीवों की उपयोगिता विषय पर। अपराह्न 2:45 पर होगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही फनकार। 3 बजे सदाबहार फिल्मी गीत कार्यक्रम हम आपको सुनाते हैं। हमारी सायंकालीन सभा आरंभ होगी शाम 5 बजे। कल रात्रि 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन और रात्रि 9:30 पर चर्चा का विषय है। ये दोनों ही कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले होंगे। संध्या 6:50 पर गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार और शाम 7:30 पर कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से रिले होंगे। शाम 5:05 पर शैलसर कार्यक्रम में कल के गायक कलाकार होंगे भोला दत्त तिवारी। शाम 5:15 पर युवाणी कार्यक्रम में आज की बात का विषय होगा खान पान की आदत और आपका स्वास्थ्य। शाम 5:45 पर उत्तरायण कार्यक्रम में कल की चर्चा के विषय होंगे विश्व मधुमक्खी दिवस, मिशन लाइफ और जल की बचत। भक्ति संगीत कार्यक्रम हमेशा की ही तरह संध्या 6:41 पर आप सुनेंगे। कल शाम 7 बजे ग्राम जगत कार्यक्रम में आज की बातें का विषय होगा शोभित बीजों का प्रयोग। इसी कार्यक्रम में होगी चर्चा मोटे अनाज के फायदे विषय पर। 7:40 पर आप सुनते हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम। रात 8 बजे कल आप सुनेंगे लोक गाथा नल दमवंती का नवा भाग। कल रात्रि 9:15 पर होगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम इंद्रधनुष। रात्रि 10 बजे सुनेगा सुगम संगीत और रात्रि 10:30 पर होगा फिल्म संगीत। ये थी रूपरेखा हमारे केंद्र से इस सभा के शेष और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। अब युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का हमारे कार्यक्रम युववाणी में, और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो मित्र हिमाली बोरा। दोस्तों, कहते हैं कि किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा शक्ति होती है। युवा केवल उम्र का नाम नहीं, बल्कि ऊर्जा, साहस, सपनों और बदलाव की सोच का प्रतीक है। दोस्तों, आज का युवा नई उम्मीदों का सूरज है, जो अपने हौसलों से हर अंधेरे को मिटा सकता है। आज युवा विज्ञान में नए आविष्कार कर रहा है, खेल के मैदान में देश का नाम रोशन कर रहा है, तो कहीं कला, संगीत, साहित्य और तकनीकी के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना रहा है। यदि युवा ठान ले तो वो असंभव को भी संभव बना सकता है। दोस्तों, हम युवाओं के भीतर अपार क्षमता छिपी होती है, बस जरूरत है उसे पहचानने की और सही दिशा देने की। एक जागरूक और शिक्षित युवा न केवल अपना भविष्य संवारता है, बल्कि समाज और देश के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। आज युवाओं के सामने कई सारी चुनौतियां हैं, बेरोजगारी, नशा, मानसिक तनाव, सोशल मीडिया का प्रेशर और कई सारी निजी तकलीफें, लेकिन फिर भी युवाओं को चाहिए कि वो अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाएं और अपने कौशल को बढ़ाएं, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। दोस्तों, यदि युवा अपने समय का सही सदुपयोग करें तो सफलता निश्चित रूप से उनके कदम चूमे।

बनेगी। याद रखिए, हर बड़ी क्रांति की शुरुआत युवाओं ने ही की है। हर देश की सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा आबादी है। ये वो शक्ति है जो आने वाले कल का निर्माण करेगी। इसलिए प्यारे दोस्तों, अपनी क्षमताओं को पहचानो और जोश के साथ आगे बढ़ते रहो। युवा केवल भविष्य नहीं बल्कि वर्तमान की भी सबसे बड़ी उम्मीद है।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत लखपति दीदी एवं हाउस ऑफ हिमालय जैसी पहलों ने स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। वही देवभूमि उद्यमिता योजना और स्टार्टअप इको सिस्टम ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया।
0: कृषि उद्योग एवं पर्यटन को बढ़ावा देने से आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी और निवेश को मिला प्रोत्साहन। साथ ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से सीमांत क्षेत्रों का विकास किया गया सुनिश्चित।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: चलिए दोस्तों, कार्यक्रम में सुनाते हैं आपको एक वार्ता जिसका विषय है खेल से ऊपर खेल भावना और जिसके वार्ताकार हैं आर्यन कुमार।
3: मानव सभ्यता के विकास में खेलों का योगदान अद्वितीय रहा है। खेल केवल शारीरिक शक्ति का प्रदर्शन या मनोरंजन का साधन मात्र नहीं है, बल्कि ये अनुशासन, सामूहिक एकता और चरित्र निर्माण की एक जीवंत पाठशाला है। खेल के मैदान में जब दो खिलाड़ी या दो टीमें उतरती हैं तो उनका प्राथमिक लक्ष्य विजय होता है। जीत का आकर्षण, समर्थकों का उत्साह और सफलता का गौरव किसी को भी रोमांचित कर सकता है, परंतु खेल जगत की इस चकाचौंध के पीछे एक बहुत गहरा और शाश्वत सत्य छिपा है जिसे हम खेल भावना कहते हैं। यह भावना हमें सिखाती है कि खेल का परिणाम चाहे जो भी हो, उसे खेलने का तरीका, उसमें प्रदर्शित की गई नैतिकता उस जीत से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। जब हम कहते हैं कि जीत से ऊपर खेल भावना है तो हम वास्तव में यह स्वीकार करते हैं कि एक मेडल की चमक कुछ समय बाद फीकी पड़ सकती है, लेकिन एक खिलाड़ी द्वारा दिखाया गया चरित्र इतिहास के पन्नों में अमर हो जाता है। खेल भावना केवल एक शब्द नहीं बल्कि ये एक जीवन दर्शन है। इसका अर्थ है खेल के नियमों का पूर्ण निष्ठा से पालन करना, प्रतिद्वंदी खिलाड़ी की प्रतिभा का सम्मान करना, निर्णायक के फैसलों को शालीनता से स्वीकार करना और जीत या हार दोनों स्थितियों में अपनी गरिमा बनाए रखना। एक सच्चा खिलाड़ी वह होता है जो जीत और हार दोनों को समान भाव से स्वीकार करता है। खेल हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। मैदान पर हम जो कुछ भी सीखते हैं वो हमारे असल जीवन में भी काम आता है। खेल भावना हमें धैर्य रखना सिखाती है। जब परिस्थितियाँ हमारे खिलाफ हों और हम हार की कगार पर हों, तब भी खुद को शांत रखना और अपनी मर्यादा ना भूलना एक महान खिलाड़ी की पहचान है। यह हमें टीम वर्क सिखाता है, यानी कैसे सबके साथ मिलकर काम किया जाए। समाज में भी हमें ऐसे ही लोगों की ज़रूरत होती है जो दूसरों की सफलता से जलने के बजाय उनके साथ मिलकर आगे बढ़े। खेल भावना की महानता को समझने के लिए हमें इतिहास के कुछ ऐसे पन्नों को देखना चाहिए जहाँ खिलाड़ियों ने जीत की परवाह ना करते हुए इंसानियत को चुना। ये उदाहरण आज भी हमें प्रेरणा देते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को उनकी शांत प्रकृति के लिए पूरी दुनिया जानती है। साल 2011 में इंग्लैंड के खिलाफ एक टेस्ट मैच के दौरान इंग्लैंड के बल्लेबाज इयान बेल एक गलतफहमी की वजह से क्रीज छोड़कर चले गए और उन्हें रन आउट कर दिया गया। नियमों के हिसाब से वे आउट थे, लेकिन कैप्टन कूल ने बड़ा दिल दिखाते हुए बेल को वापस बल्लेबाजी के लिए बुला लिया। धोनी ने उस वक्त खेल की इज्जत को जीत से ऊपर रखा। इसी तरह फुटबॉल के एक रोमांचक मैच में इटली के खिलाड़ी पाओलो डिकेनियो के पास गोल करने का बहुत आसान मौका था। गोलकीपर चोटिल होकर मैदान पर गिरा हुआ था और गोल पोस्ट बिल्कुल खाली था। टिकेनियो चाहते तो आसानी से गोल करके अपनी टीम को जिता सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने गेंद को अपने हाथों से पकड़ लिया ताकि खेल रुक सके और घायल को डॉक्टर की मदद मिल सके।

0: एक गोल की कीमत से ज्यादा एक इंसान की जान और उसकी सुरक्षा को महत्व दिया। इसी तरह भारतीय क्रिकेट के उभरते सितारे मोहम्मद सिराज का उदाहरण भी प्रेरणादायक है। एक अभ्यास मैच के दौरान जब विपक्षी टीम के बल्लेबाज कैमरन ग्रीन के सिर पर कैद लगी और वे मैदान पर गिर पड़े, तो सिराज रन लेने के बजाय अपना बल्ला छोड़कर तुरंत उनके पास उनकी मदद के लिए दौड़े। उन्होंने अपनी टीम के फायदे के बजाय एक साथी खिलाड़ी की सुरक्षा को प्राथमिकता दी। आजकल खेलों का स्वरूप बहुत बदल गया है। अब खेलों में बहुत पैसा और नाम शामिल है। इस वजह से कई बार खिलाड़ी किसी भी कीमत पर जीतना चाहते हैं। वे ताकत बढ़ाने वाली दवाइयां लेते हैं या मैच फिक्सिंग जैसी बुराइयों में फंस जाते हैं। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि छल कपट से मिली जीत कुछ समय के लिए खुशी दे सकती है, पर वह कभी सम्मान नहीं दिला सकती। असली विजेता वह होता है जिसका चरित्र साफ हो। समाज में बच्चों और युवाओं को यह सीखना बहुत जरूरी है कि हारना बुरा नहीं है, बल्कि हार मान लेना या गलत तरीके से जीतना बुरा है। खेल हमें गिरकर फिर से उठना सिखाता है और यही जीवन का सबसे बड़ा सच है। जब हम मैदान पर खेल भावना का पालन करते हैं तो उसका असर हमारे समाज पर भी पड़ता है। खेल हमें अलग अलग जाति, धर्म और देश के लोगों के साथ जुड़ना सिखाता है। जब दो देशों के खिलाड़ी हार जीत के बाद एक दूसरे से गले मिलते हैं तो वह शांति और भाईचारे का संदेश देते हैं। खेल भावना हमें सहनशीलता सिखाती है। यह हमें सिखाती है कि हम दूसरों के विचारों का सम्मान करें, भले ही वे हमसे अलग हों। एक खिलाड़ी जो अपनी गलती को सबके सामने स्वीकार कर लेता है, वह समाज में अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाता है। जीत से ऊपर खेल भावना केवल एक नारा नहीं, बल्कि यह खेल की जान है। बिना खेल भावना के खेल केवल एक शारीरिक लड़ाई बनकर रह जाएगा। जीत का जश्न कुछ दिनों या हफ्तों में खत्म हो जाएगा, लेकिन मैदान पर दिखाई गई आपकी अच्छाई और ईमानदारी लोगों को सालों साल याद रहेगी। मेडल और ट्रॉफी पर समय के साथ धूल जम सकती है, लेकिन एक सच्चे खिलाड़ी का सम्मान कभी कम नहीं होता। हमें खेल को एक खिलाड़ी की तरह खेलना चाहिए, न कि केवल एक विजेता की तरह। सच्ची जीत वही है जिसमें आपकी आत्मा संतुष्ट हो और सामने वाला भी आपकी मेहनत की कद्र करे। खेल की सुंदरता उसकी अनिश्चितता में नहीं, बल्कि उस हाथ मिलाने की संस्कृति में है जो हार और जीत के फासले को खत्म कर देती है। अंत में यह मायने नहीं रखता कि आपने कितना जीता, बल्कि यह मायने रखता है कि आपने खेल को कितनी सच्चाई और निष्ठा के साथ खेला। देखिए, सच तो यह है कि खेल मैदान पर हार और जीत से भी कहीं ज्यादा जरूरी खिलाड़ी की ईमानदारी और उसका व्यवहार होता है। हार जीत का क्या है, वो तो वक्त के साथ बदलती रहती है, लेकिन जो खिलाड़ी मैदान पर भाईचारा और अपने विरोधी के लिए मान सम्मान दिखाता है, वहीं उसकी असली पहचान बनती है। किसी ने सच ही कहा है, मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। इसीलिए हर खिलाड़ी को अपनी जीत के लिए पूरी कोशिश जरूर करनी चाहिए, पर यह कोशिश हमेशा खेल के नियमों के दायरे में हो। जब कोई खिलाड़ी जीत के लालच को छोड़कर खेल की मर्यादा को चुनता है, तो वो सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि करोड़ों लोगों का दिल जीत लेता है। हमें हमेशा यह याद रखना होगा कि खेल का असली मकसद सिर्फ ट्रॉफियां बटोरना नहीं, बल्कि समाज में एकता का संदेश देना है। और यकीन मानिए, महान खिलाड़ी वही है जिसकी खेल भावना उसकी जीत से भी ऊँची हो।
1: चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं कार्यक्रम में आज के अंक व्यक्ति विशेष की ओर, जिसमें आज हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा के एक ऐसे अभिनेता की जिन्होंने अपनी मेहनत, संघर्ष और अद्भुत अभिनय क्षमता से ये साबित कर दिया कि सफलता केवल चेहरे से नहीं बल्कि प्रतिभा और आत्मविश्वास से मिलती है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं प्रसिद्ध अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी की। उनका जन्म आज के दिन यानी 19 मई वर्ष 1974 को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर नगर जिले में एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका परिवार एक साधारण सा किसान का परिवार था। बचपन से ही उन्हें अभिनय में रुचि थी, लेकिन छोटे शहर से निकलकर बॉलीवुड तक पहुंचना आसान नहीं था। दोस्तों, अपने सपनों को पूरा करने के लिए वे दिल्ली पहुँचे और वहाँ थिएटर से जुड़े। बाद में उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में दाखिला लिया। वर्ष 1999 में सरफरोश फिल्म में एक छोटी भूमिका के साथ उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा। इसके बाद वर्ष 2012 में वे प्रशांत भार्गव की पतंग द काइट में दिखाई दिए, जिसका प्रीमियर बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव और ट्रिबेका फिल्म महोत्सव में हुआ था। दोस्तों, इसके बाद अनुराग कश्यप की गैंगस्टर फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर ने उनकी प्रसिद्धि को और बढ़ाया। मिस लवली में सोनू दुग्गल के रूप में अपनी मुख्य भूमिका की उन्होंने पहली फिल्म की। दोस्तों, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कई फिल्मों हीरोपंती 2, बजरंगी भाईजान, थामा, रात अकेली है, द बंसल मर्डर्स, कहानी, द लंच बॉक्स आदि कई फिल्मों में अभिनय किया। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को वर्ष 2012 के 60वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में फिल्म कहानी, गैंग्स ऑफ वासेपुर, देख इंडियन सर्कस और तलाश में उनके काम करने के लिए विशेष जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों, आज लाखों युवाओं के लिए नवाजुद्दीन प्रेरणा के स्रोत हैं। उन्होंने ये साबित किया कि यदि इंसान मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखे तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रहता। उन्होंने अपने संघर्ष को अपनी ताकत बनाया और अपनी प्रतिभा से पूरी दुनिया में पहचान हासिल की। चलिए दोस्तों, व्यक्ति विशेष में बस इतना ही। करते हैं आपका मनोरंजन और कार्यक्रम में सुनाते हैं आपको एक प्यार भरा गीत।

चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आज के इतिहास की ओर और डालते हैं नज़र आज यानी 19 मई को घटी सभी महत्वपूर्ण घटनाओं पर। दोस्तों, आज के दिन वर्ष 1936 में ब्रिटेन के आविष्कारक रॉबर्ट डेटसन वॉट ने रडार बनाया था और ये प्रणाली सबसे पहले ब्रिटेन के हवाई अड्डे पर स्थापित की गई थी। दोस्तों, आज ही के दिन वर्ष 1950 में मिस्र ने स्वेज नहर को इजरायली जहाज़ों के लिए बंद करने की घोषणा की थी। आज ही के दिन वर्ष 1971 में भारतीय नौसेना का पहला पनडुब्बी अड्डा वीर बाहु विशाखापट्टनम में शुरू हुआ था। दोस्तों, आज ही के दिन वर्ष 1980 में अमेरिका में हेलेना ज्वालामुखी फटने से 9 लोगों की मौत हो गई थी। देश के उत्तर पश्चिम भाग में सुबह सवेरे हुई इस घटना के बाद अंधेरा छा गया था और इस घटना में बहुत सारे लोग लापता हुए थे। दोस्तों, आज के दिन वर्ष 2008 में भारत और चीन के बीच नाथू लासे व्यापार दोबारा शुरू हुआ था। आज के दिन वर्ष 2009 में श्रीलंका ने आतंकवादी संगठन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम के खिलाफ अपने 25 साल के युद्ध में जीत की घोषणा की थी। दोस्तों, आज के दिन वर्ष 2021 में मार्था करम्बू कूम केनिया की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी। वो सरकार की तीनों शाखाओं में से किसी एक का नेतृत्व करने वाली पहली महिला है। दोस्तों, आज के दिन वर्ष 1892 में बहुचर्चित नाटककार और कवि ऑस्कर वाइल्ड को 2 साल की सजा के बाद जेल से रिहा किया गया था। उन्हें समलैंगिकता के अपराध में ये सजा सुनाई गई थी। उस समय ब्रिटेन में समलैंगिकता गैर कानूनी थी। दोस्तों, इसके अतिरिक्त आज यानी 19 मई को विश्व परिवार चिकित्सक दिवस भी मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, एक नज़र आज हुए मुख्य व्यक्तियों की जन्म तथा निधन पर। आज के दिन वर्ष 1934 में अंग्रेजी भाषा के प्रसिद्ध भारतीय लेखक रस्किन बॉन्ड का जन्म हुआ था। उनके पहले उपन्यास द रूम ऑन द रूफ को 1957 में जॉन लेवलिन राइस पुरस्कार मिला था। दोस्तों, आज के दिन वर्ष 1913 में देश के छठे राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी का जन्म हुआ था। आज के दिन वर्ष 1824 में भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम के शिल्पकार नाना साहेब का जन्म हुआ था। दोस्तों, आज के दिन वर्ष 1969 में हिंदी के शीर्ष साहित्यकार हजारी प्रसाद द्विवेदी का निधन हुआ था। आज के दिन वर्ष 1904 में भारत के पहले उद्योगपतियों में से एक टाटा समूह के संस्थापक जमशेद जी टाटा का निधन हुआ था। चलिए दोस्तों, आज के इतिहास में बस इतना ही।

चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम के अंतिम चरण की ओर, जिसमें हम रोज पूछते हैं आपसे एक प्रश्न और देते हैं उत्तर बीते दिन पूछे गए प्रश्न का। दोस्तों, हमारा कल का प्रश्न था, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? जिसका सही उत्तर है, प्रतिवर्ष 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। इसका सही उत्तर हमें लिख भेजा है ग्रामपुत की कला कवर्दा छत्तीसगढ़ से, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे, शुमांशु पांडे, गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और जगदीश जौहरी, डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, ग्राम नागर कोहरा से बबलू साहू, जामुन देवी साहू और बेबी आराध्या, ऊपरकोट बुलंदशहर से

निगहत परवीन शाहनवाज अब्बासी और SM जावेद गुमला झारखंड से। चलिए दोस्तों, कार्यक्रम में नोट कीजिए हमारा आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, विश्व परिवार चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? अगर जानते हैं आप इस प्रश्न का सही उत्तर तो लिख भेजिए हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9411001122 पर। हमें रहता है इंतज़ार आपके सही उत्तर का। चलिए दोस्तों, कार्यक्रम युववाणी में अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का। कल मिलते हैं पुनः एक नए अंक के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति अपनी रेडियो मित्र हिमानी को। नमस्कार।

अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युवाणी। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम उत्तरायण।

उत्तरायण कार्यक्रम सुनने से श्रोताओं के श्याम भट्टो नमस्कार। श्रोताओं स्वागत छापू सब लोग ने आजक उत्तरायण कार्यक्रम में। श्रोताओं जैसे कि हम सब जन्नू मनखिन के वीक शरीर का स्वस्थ रखने के लिए जी कोयले खेल करन या फिर शारीरिक गतिविधि में लिप्त रहन बहुत जरूरी हूँ और वील मन के जो शरीर से वो स्वस्थ रहूँ। लेकिन इन खेलों में या फिर कोई प्रकार हम अपन जो काम करनो उनमें एक भावना हमको रखनी चाहें जैमे कि निष्पक्ष रवे रही जो और यही का देखते हुए आजक दिन पूरी दुनिया में निष्पक्ष खेल भावना दिवस मनाई जा। एक उद्देश्य खेलों में ईमानदारी अनुशासन सम्मान और नैतिकता का बढ़ावा दिन छे। नियमों का पालन करते हुए निष्पक्ष और सम्मानजनक तरीके खेलन में हम अपन खेलों के आनंद ले सकन। यू केवल लेकिन खेलक मैदान तक सीमित नहन बल्कि जीवनक हर क्षेत्र में सच और सद्भावक संदेश दिच। महत्व जो निष्पक्ष खेल भावना छे ए में अचालक बखत में हम देखनू जन खेल छन बहुत प्रतिस्पर्धा भरियक छन और जीतक चाह में कोयले कति बारी खिलाड़ी अनुचित साधनों के लिए प्रयोग करने लगना जैल खेल भावना प्रभावित हो छे। और यू हमको सीखों कि जीत है ज्यादा हमको महत्वपूर्ण ईमानदारी और सम्मान के रखन चाहें जय में हम नियमों का पालन करन विरोधी खिलाड़ी के लिए सम्मान करन वी में खेल भावना बनाए रखन और हिंसा जस या फिर धोखे है दूर रहन वी के दगड़ हमको हार और जीत दियों के समान रूपल स्वीकार करने ले सीखन चाहें। आज निष्पक्ष खेल भावना दिवस मनोन का मुख्य उद्देश्य युवाओं और खिलाड़ियों में खेलक जो नैतिकता छे वी लिए जागरूकता फैलाऊन छे और जो दिन हम याद दिलाऊँ कि सच में खिलाड़ी वही हूँ जो ईमानदारी और सम्मानक दगड़ खेल छू। हर स्कूलों में खेल संस्थानों या फिर अलग अलग संगठन द्वारा यह अवसर पर खेल प्रतियोगिता भाषण रैली और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करी जनान जनों के माध्यम नंतिनों और युवाओं के भली खेल भावनाओं का महत्व समझाई जा। और अगर हम देखूँ तो खेल भावना या फिर जो निष्पक्ष रूप में रोनने वाली भावना छे यू केवल खेलों ही में ना हो हमको जीवनक हर पक्ष में एक शामिल रख भी रोन चाहे वो पढ़ाई हो हम कोई व्यवसाय करनो वीमा हो राजनीति हो या फिर सामाजिक जीवन में यू बहुत महत्व रखे। और अगर प्रत्येक व्यक्ति ईमानदारी और निष्पक्षता अपनाल तो समाज में शांति और विश्वास बढ़ लो। निष्पक्ष खेल भावना दिवस हमको सच खेल भावना और नैतिक मूल्यों का संदेश दीजिए हमको।

हमेशा ईमानदारी, अनुशासन और सम्मानक दगड कार्य करते रहन जाए और हमको ये लिए ध्यान रखना चाहिए कि जीत और हार जीवनक भाग हुनान, लेकिन भल चरित्र जो मन खींचे भी एक सबू ठूल पहचान हो। एक कारण हमको निष्पक्ष खेल भावना के अपन जीवन में अपना बेर हमको हर क्षेत्र में भी लागू कर बेर एक भल समाजक निर्माण करन जाए। तो यो तो कुछ बातचीत आप कार्यक्रम अगिल बढ़नु अपन लोगनक मनोरंजनक तरफ और सुननु यो कुमाऊनी लोकगीत रमेश जोशी स्वर में।

0: उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: यह संदेश एक बात कार्यक्रम में अगिल बढ़नु और अपने लोगों का सुनो। महिपाल सिंह मेहता और पान सिंह बिस्तक गाइयो कुमाऊनी लोकगीत।

0: महिपाल सिंह मेहता और पान सिंह बिस्तक मिली जुदी स्वर में ले आप लोगों ने सुनियो कुमाऊनी लोकगीत कार्यक्रम में अब अगिल बढ़नू और आप लोगों का सुनो मिशन लाइफ सेव एनर्जी अंतर्गत सौर ऊर्जा भविष्य के लिए सर्वोत्तम विकल्प विषय पर सोलर प्लांटक क्षेत्र में काम करने यूकेसी ग्रुप अलमाड़क क्षेत्रीय प्रबंधक नदीम दगड़ करीहिवी श्याम भट्ट की ओर क्षेत्र संकलित भेंटवार्ता। तो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ और हमारी भारत सरकार द्वारा प्रोत्साहित मिशन लाइफ सेव एनर्जी का उद्देश्य जो कि लोगों में पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा बचत के प्रति जागरूकता को बढ़ा रहा है। बढ़ती ऊर्जा खपत प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन को देखते हुए ऊर्जा की बचत वर्तमान समय में सबसे बड़ी आवश्यकता बन गई है। इसी विषय पर जानकारी प्राप्त करने के लिए हम आज बात कर रहे हैं अल्मोड़ा में स्थित यूकेसी ग्रुप जो कि सोलर एनर्जी को प्रोत्साहित कर रहे हैं इनके प्रबंधक नदीम जी से जो कि सरकार द्वारा चलाए जा रहे मिशन लाइफ सेव एनर्जी के अंतर्गत सोलर एनर्जी यानी कि सौर ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के लिए अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। सबसे पहले स्वागत करते हैं नदीम जी का अपने कार्यक्रम में।
1: आप सभी तो पहले मैं नमस्कार करना चाहूँगा। हमारा जो मेन मोटो रहता है ये जो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है इसके तहत उत्तराखंड में जितने भी लोग हैं रहते हैं गुजर बसर करते हैं उनको सोलर एनर्जी प्रोवाइड करवाना, क्योंकि आज के टाइम में जो सौर ऊर्जा है वो हर किसी जो परिवार है उसको मिलनी चाहिए और सरकारी सब्सिडी का लाभ उनको मिलना चाहिए
0: जी।
1: क्योंकि हमारा मेन मोटो इस चीज़ को प्रोत्साहित करना है ताकि हर कोई आदमी अपने घर की ऊर्जा खुद बनाए और उसको खुद इस्तेमाल करे, वो किसी के ऊपर निर्भर ना रहे
0: जी।
1: हमारा मेन मोटो यही चीज़ रहता है। और बाकी वैसे हम 9 जगह पे हमारे करीब ऑफिसेज हैं जो वहाँ पे हम सर्विसेज प्रोवाइड करवा पाते हैं। अल्मोड़ा है आपका, सितारगंज रहा, बाजपुर, देहरादून, खटीमा, अफजलगढ़, टनकपुर, देहरादून। वैसे तो हमारी मैक्सिमम जो है हमारा टाइप जो है वो ऑल ओवर उत्तराखंड है और यूपी भी है, बट मेनली हमारा जो फोकस है वो पहाड़ों में ज़्यादा है क्योंकि हम रेजिडेंट्स यहाँ के ही रहने वाले हैं
0: जी। तो नदीम जी, हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि जो ये मिशन लाइफ है या फिर ऊर्जा बचत के लिए जो यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है इसके बारे में आपके क्या विचार हैं?
1: वैसे तो

0: ये सरकार की तरफ से स्कीम है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से
1: जी
0: स्कीम बहुत ही अच्छी वैसे तो मैं मानूंगा, क्योंकि जितने टाइम से मैं इसमें अपनी सर्विसिंग दे रहा हूँ,
1: जी
0: ये हर एक आदमी को अपने घर में ये चीज़ करनी चाहिए।
1: जी
0: क्योंकि एक तो सरकार आपको इसमें फ़ायदे दे रही है, आपको सब्सिडी प्रोवाइड करवा रही है, और आपको मेन चीज़ जो इसमें रहता है बिजली का बिल, उससे आपको छुटकारा मिल जाता है। क्योंकि
1: जी
0: उत्तराखंड में कई गाँव ऐसे हैं जहाँ पर बिजली पहुँच ही नहीं पाती,
1: बिल्कुल
0: तो यही चीज़ आपका सरकार का जो मेन मोटिव है कि हर घर, या जो हमारे धामी जी हैं उनका मेन मोटिव यही था कि वो हर घर पे जो पहाड़ में पलायन है उसको रोक के, क्योंकि वहाँ पे कई लोग गाँव में तो बिजली है ही नहीं, तो
1: जी
0: उस चीज़ को दूर करने के लिए मोदी जी ने स्कीम निकाली। तो यही
1: जी
0: चीज़ें तो हम हर एक परिवार को उत्तराखंड में जो हम उनको ये सर्विस प्रोवाइड करवाना चाहते हैं। लोगों को इसके बारे में नॉलेज है नहीं, इसलिए हम हर गांव में जाके लोगों को प्रोत्साहित करते हैं इस बारे में कि आप इस चीज़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए।
1: नदीम जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि जहाँ तक बिजली की पहुँच नहीं हो पाती है तो वहाँ भी आप ये सोलर एनर्जी के प्लांट आप लगवाते हैं,
0: जी
1: और
0: बेशक,
1: वहाँ के लोगों को रोशनी के लिए जो उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है वहाँ आप उनको ये आसानी से उपलब्ध कराते हैं।
0: जी
1: तो इस बारे में आप हमें बताइए कि जैसे जो दैनिक जीवन में जो मानव है वह किस तरह से ऊर्जा का संरक्षण कर सकता है, किस प्रकार से वह क्या क्या उपाय अपना सकता है।
0: देखिए, इसमें तो एक अभी मेन चीज़ जो है, एक तो आपका सौर ऊर्जा है, उसमें क्या कहते हैं लोग अपने घर पे सोलर की जो प्लेट्स रहती हैं
1: जी
0: वो अपने घर पे ला के अपने घर की बिजली खुद बनाता है।
1: जी
0: और दूसरी चीज़ रहती है पवन चक्कियाँ,
1: जी
0: क्योंकि पवन चक्कियों में बहुत ज़्यादा अभी इन चीज़ों में उन्नति नहीं हुई है, बट अभी जो है सौर ऊर्जा की जो प्लेट्स हैं उसमें उन्नति हुई है। इसमें क्या रहता है, सूरज जो आपको जितने भी धूप देता है, ये सोलर प्लेट्स का काम कर रहा था, उस धूप को बिजली में कन्वर्ट करना होता है, और उस इस बिजली को आप घर में अपने इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: जी जी जैसे आपने बताया कि हम जो बिजली जो खपत कम कर सकते हैं या फिर बिजली के अतिरिक्त जो हम संसाधन यूज़ कर सकते हैं तो उसमें सोलर एनर्जी और पवन ऊर्जा का इस्तेमाल इसमें किया जा सकता है। तो इसमें जो एनर्जी का संरक्षण है खासकर किस प्रकार से होता है, क्योंकि जो सोलर एनर्जी है या सौर ऊर्जा हम जिसको कहते हैं वह एक नवीकरणीय ऊर्जा है, तो यह किस प्रकार से लाभदायक है।
0: तो इसमें देखिए चीज़ें क्या रहती हैं, मान लीजिए कोई इंसान ने अपने घर पे सौर ऊर्जा लगवाई, ठीक है,
1: जी
0: वो पहले तो अपने घर की बिजली खुद ही अपनी पूर्ति करेगा, ठीक है।
1: जी
0: दूसरी चीज़ इसमें सबसे अच्छी ये रहती है कि आप जो मतलब आपकी आवश्यकता जैसे ज़्यादा बिजली बनाते हैं, वो उस ऊर्जा को आप उसको बेच सकते हैं डायरेक्ट, जो आपका यूपीसीएल रहता है, आपको जो विद्युत विभाग रहता है, उस बिजली को आपसे वो खरीद लेता है,
1: जी
0: और रिटर्न में आपको उसके बदले जो जो भी वहाँ से आपकी धनराशि बनती है वो आपको मिल जाती है।
1: जी
0: और एक संरक्षण जो आपकी सेविंग्स होती है उसको आप बैटरी में सेव कर सकते हैं,
1: जी
0: ठीक है। जो एक्स्ट्रा बिजली होती है वो आपसे यूपीसीएल खरीद लेता है, तो एक तरह से यहाँ पर कमाई का भी थोड़ा जरिया बन जाता है।
1: जी
0: ज़्यादातर लोग इस चीज़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है, एक तो उनका बिजली का बिल जो आए दिन लोग इससे परेशान रहते हैं कि
1: बिल्कुल
0: बिजली का बिल हर किसी के लिए आजकल एक मेन मुद्दा बन चुका है, तो
1: जी
0: उस चीज़ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है आपकी। एक तो आपका बिजली का बिल इसमें माफ़ हो जाता है पूरा, प्लस ऊपर जो आपकी ज़्यादा बिजली होती है वो यूपीएसएल आपसे खरीद लेता है और उसके बदले आपको पैसा दे देता है इसका।
1: जी तो जैसे ये जो आपने उपाय बताया या फिर जो सौर ऊर्जा का जो आपने उपयोग करने के लिए जो लाभ बताया, यह वास्तव में एक तरह से जो व्यक्ति इसको यूज करते हैं एक तरह से तो बिजली की ऊर्जा को बचाते हैं, साथ ही अपने लिए अगर वो अधिक सौर ऊर्जा को उत्पादन करते हैं तो वो बेचकर उसका लाभ भी कमा सकते हैं।
0: जी
1: तो इसमें जैसे आप जो ये सोलर प्लांट वगैरह लगवाते हैं तो इसमें सरकार द्वारा क्या सब्सिडी वगैरह दी जाती है, तो इसमें क्या क्या धनराशि वगैरह मिलती है और क्या क्या अन्य लाभ जो उपयोगकर्ता हैं उनको मिल सकते हैं।
0: सरकार की तरफ से जो इसमें आपको अगर मान लीजिए मिनिमम इसमें क्या रहता है, 3 किलोवाट के सेट पर रहते हैं, ठीक है,
1: जी
0: 3 किलोवाट से 10 किलोवाट तक आपको इसमें सब्सिडी मिलती है 85,800 रुपये की,
1: जी
0: 85,800 रुपीज़, ठीक
1: जी
0: है। इसमें सब्सिडी में क्या रहता है, ये आपको जो सेटअप की कॉस्टिंग जो भी रहती है, आप अगर उस चीज़ को अपने घर पर लगवाते हैं तो वो आपको या तो कैश में या फिर लोन में, ठीक
1: जी
0: है, क्योंकि आज के टाइम में एक सोलर लगाना भी एक तरह से लोगों के लिए ये चीज़ है कि हम एक तरह से मतलब डायरेक्ट पैसा नहीं इन्वेस्ट कर सकता, तो इसमें सरकार ने क्या आपको प्रोवाइड करवाया है, इसमें आपको सरकारी लोन की व्यवस्था दी है। इसमें जो आपको जो ब्याज रहता है वो मिनिमम टू मिनिमम रहता है फ्लैट के मुकाबले, ये डिक्रीजिंग अमाउंट पे आपका इसमें ब्याज रहता है, ताकि इस पे इसको गरीब से गरीब आदमी भी अपने घर पे इंस्टॉल करवा सकता है, इसको लगवा सकता है, प्लस सब्सिडी का भी हकदार रहता है 85,800 की जो मैंने आपको अभी बताई।
1: जी
0: तो ये एक अच्छी चीज़ है जो सरकार अपनी तरफ से दे रही है, क्योंकि सरकार इसमें आपको सहायता दे रही है, क्योंकि आपका इसमें जब आप दूसरी जगह पे जाओगे आपका 12 से 14% 15% आपका फ्लैट पे ब्याज रहता है, जबकि आप सौर ऊर्जा अगर अपने घर पे लगवाते हैं तो उसका जो ब्याज रहता है वो आपका 5.5 से 6% के आसपास रहता है आपका। तो ये कहीं ना कहीं से सरकार आपको सहायता ही दे रही है, डायरेक्ट 14% से आपका 6% पे आ जाना, तो सरकार आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा सहायता दे रही है, प्लस आपको सब्सिडी भी दे रही है।
1: हम समझ सकते हैं कि जो ये सरकार द्वारा सब्सिडी या फिर जिस योजना के अंतर्गत ये लगवाया जा

0: तो उसमें कहीं ना कहीं जो उपभोक्ता है उसको फायदा मिल रहा है, और उसमें कम जो लागत है उसमें उसको अच्छी सौर ऊर्जा की जो दैनिक उपयोग के लिए ऊर्जा चाहिए वह मिल सकती है उसमें
1: जी।
0: तो इसके अतिरिक्त हम अगर बात करें, ये तो जैसे हमने बात की कि जो नवीकरणीय ऊर्जा है सोलर एनर्जी, इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें जो मानव जीवन सामान्य रूप में जो ऊर्जा का उपयोग करते हैं वह किस प्रकार से बचत कर सकते हैं, जैसे बिजली की खपत को कम करने के लिए, या फिर किस तरह से जो एनर्जी को बचाने के लिए हम जो उपाय कर सकते हैं, क्योंकि हम समझ सकते हैं कि यह एक भविष्य के लिए भी चिंता का विषय है जिस तरह से वर्तमान में एनर्जी खपत हो रही है। तो आपके संज्ञान में यह क्या क्या उपाय हो सकते हैं कि कैसे सामान्य आदमी इनका लागू करके इसको बचा सकता है?
1: इसमें देखिए, सौर ऊर्जा अगर आप अपने घर पर लगवाते हैं तो इसमें चीजें क्या रहती हैं, एक तो सबसे बड़ी चीज ये आपको जो कार्बन जनरेशन है उसको खत्म कर देता है
0: जी,
1: क्योंकि आपको बड़े बड़े जहां एनर्जी उत्पन्न होती है वहां पे आपको काफी ज्यादा एनर्जी वेस्ट होती है, वहां से आपको पॉल्यूशन भी होता है
0: जी।
1: सौर ऊर्जा लगाने से क्या होता है, एक तो आपके पेड़ों की जो कटाई होती है उस पर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, पेड़ों की कटाई कम हो जाती है आपकी, ठीक है, क्योंकि एनर्जी जनरेट करने के लिए कहीं ना कहीं पेड़ों को भी काटा जाता है, जलाया जाता है, ईंधन प्रोवाइड करवाया जाता है। सौर ऊर्जा का क्या रहता है, इसमें आपको कुछ जलाने की जरूरत नहीं पड़ती, इसको आप अपने घर की छत पर लगा सकते हैं, सूरज की एनर्जी को आप विद्युत में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है
0: जी।
1: और इसमें जो आपकी जो धूप वगैरह रहती है और क्लाइमेट चेंज जो है उसमें आप काफ़ी बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले सकते हैं, क्योंकि सोलर से जो आप एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं दूसरों देशों से एनर्जी ले रहे हैं, तो दूसरी चीज़ आप स्वदेशी हो जाएंगे, अपने घर की बिजली खुद बनाएंगे, आप दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं रह के खुद अपनी चीज़ें कर सकते हैं, और ओजोन लेयर है ये इफेक्ट हो पड़ रहा है इस पर ज़्यादा ऊर्जा की खपत से, तो उसमें भी कहीं ना कहीं इसमें जो है फ़ायदा हो रहा है आपको, क्योंकि कार्बन जो फुटप्रिंट्स छोड़े जाते हैं एनर्जी करने के बाद सौर ऊर्जा लगवाने से बहुत कम हो जाते हैं
0: जी।
1: तो इसमें कहीं ना कहीं आप काफ़ी बड़ा योगदान है पृथ्वी को बचाने के लिए, पेड़ों को कटाने, क्योंकि कहीं ना कहीं गाँव में मान लीजिए जहाँ पर बिजली नहीं है, ठीक है, वहाँ पे बिजली नहीं पहुँच पा रही, अगर आप बिजली ज़्यादा उत्पन्न कर रहे हैं तो वो बिजली आपके थ्रू किसी गरीब बच्चे के पास जाएगी जिसके यहाँ पे लाइट नहीं है
0: जी,
1: उसके यहाँ पे एक बल्ब जल जाएगा वो आपकी वजह से, क्योंकि आपने अपने घर पे सोलर लगाया। आजकल क्या रहता है, लोग अपने घरों में जो उपकरण अपने चलाते हैं जैसे पंखा है, बल्ब वगैरह है, उसमें लोग क्या करते हैं स्विच ऑन करने के बाद उसको ऑफ करना भूल जाते हैं, या जो अनावश्यक चीज़ें हैं जैसे गीजर रहा आपका, पंखे बल्ब रहे, हीटर रहा, उनको जला के छोड़ जाते हैं, ठीक है। उसमें क्या रहता है, लोगों को तो चीज़ें पता नहीं चल रही, बट कहीं ना कहीं जहाँ ऊर्जा की आवश्यकता है वहाँ ना पहुँच के वो आप उसको अनावश्यक इस्तेमाल कर रहे हैं
0: जी, बिल्कुल।
1: इसलिए अगर आप आवश्यकता के टाइम पर ही चीज़ों को यूज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं वो किसी और के फायदे के लिए चीज़ इस्तेमाल में आएगी, इसलिए आप कुछ उपकरण चलाने की जब आवश्यकता है आप उनको तभी चलाएं, अनावश्यक तरीके से ना चलाएं। अगर आप दिन के टाइम में घर से अगर बाहर जा रहे हैं तो सारे स्विच ऑफ बंद कर दें, कोई भी लाइट ना चलाएं, घर के अंदर हैं तभी आप आपके जो उपकरण हैं उनको इस्तेमाल करें, अनावश्यक उनको इस्तेमाल ना करें
0: जी।
1: और ज्यादा से ज्यादा जो आपके स्ट्रीट लाइट्स रहती हैं सौर ऊर्जा से चलने वाली, आप उनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें
0: जी, बिल्कुल। अगर हम अतिरिक्त ऊर्जा का उपयोग करते हैं तो उसमें सोलर ऊर्जा सबसे उत्तम साधन हो सकता है इसमें
1: जी, बेशक हो सकता है, क्योंकि उसमें आप दूसरों के ऊपर निर्भर ना रह के आप अपने घर की ऊर्जा खुद बना रहे हैं
0: जी। तो अंत में आपसे यही जानना चाहूँगा कि आप श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वर्तमान में जो ऊर्जा के साधन हम उपयोग कर रहे हैं और उसके स्थान पर सोलर एनर्जी या सौर ऊर्जा कैसे उपयुक्त साबित हो सकता है, और जो हमारे सुनने वाले सभी लोग हैं वह कैसे इसको अपने जीवन में उपयोग कर सकते हैं?
1: इसमें कई सारे फायदे हैं, मैं आपको कुछ ही फायदे बताता हूँ इसके
0: जी।
1: सरकार एक तो आपको इसमें सहायता दे रही है सब्सिडी के तौर पे
0: जी,
1: ठीक है, बस आपको जो ब्याज है ब्याज आपसे बहुत कम ले रही है सरकार
0: जी,
1: ठीक है। तीसरी चीज, आपके घर पे जो बिजली का बिल है उसको समाप्त कर दे रही है
0: जी,
1: जो एक्स्ट्रा बिजली है वो यूपीएसएल आपसे खरीद के उसका आपको पैसा दे दे रही है, ठीक है। और आपको इसमें एनर्जी में कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही, आप अपने घर पे सौर ऊर्जा लगा दी तो वो बिजली जनरेट खुद ही करती रहेगी और खुद ही अपना जो है उसको आदान प्रदान करती रहेगी, बेचती रहेगी और उसको कन्वर्ट करती रहेगी
0: जी। नदीम जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई, और साथ में हम यह भी सभी श्रोताओं से गुजारिश करेंगे कि जो सरकार द्वारा मिशन चलाया जा रहा है मिशन लाइफ सेव एनर्जी, इसमें जो जिम्मेदारी है सबको समझनी चाहिए और कैसे भविष्य के लिए हम ऊर्जा को बचा सकते हैं इस तरह से कार्य करने चाहिए, और इसमें जो सोलर ऊर्जा है उसको अपने जीवन में लागू करके हम भविष्य के लिए ऊर्जा को बचा सकते हैं। नदीम जी, आपने हमारे साथ इतनी बातें की और आपका बहुमूल्य समय हमें दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, भेंटवार्ता में आप लोग सुनने लग रहा मिशन लाइफ सेव एनर्जी के अंतर्गत सौर ऊर्जा भविष्य के लिए सर्वोत्तम विकल्प विषय पर सोलर प्लांट क्षेत्र में काम करने यूकेसी ग्रुप अल्मड़ा क्षेत्रीय प्रबंधक नदीम दगड़, करी हुई श्याम भट्ट की क्षेत्र संकलित

0: खुशहाल।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
2: महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत लखपति दीदी एवं हाउस ऑफ हिमालय जैसी पहलों ने स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। वही देवभूमि उद्यमिता योजना और स्टार्टअप इकोसिस्टम ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया।
1: कृषि उद्योग एवं पर्यटन को बढ़ावा देने से आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी और निवेश को मिला प्रोत्साहन। साथ ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से सीमांत क्षेत्रों का विकास किया गया सुनिश्चित।
2: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोताओं, कार्यक्रम में अगिल बढ़नु और कर लेनु कुछ और बातचीत। हम जैसे कि जन्नू जो हमारे शरीर छे वीक स्वस्थ रून में हमार मानसिक रूप ले स्वस्थ रहूँ और कई ले जाकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क ले निवास कर छू। और एक लीजिए हम कह सबू है जरूरी जो बात हूँ वीक ध्यान रखना जरूरी हूँ जैमें कि हम कह अपन आस पास अपन घर की या फिर अपन शरीर की स्वच्छता जरूर रखूँ। स्वच्छता केवल हमारे शरीर या घर तक सीमित नहीं बल्कि हमारे आसपास का वातावरण आसपास के सड़कों विद्यालय कार्यालय या फिर जतिले हमारे सार्वजनिक स्थान छन उन्हों के लिए स्वच्छ रहन बहुत जरूरी हो। यही का कारण सरकार द्वारा ले स्वच्छता ही सेवा एक महत्वपूर्ण जन जागरूकता अभियान ले चलाई जा। साफ सफाई रखने में अनेक बीमारियों के लिए हम बचाव कर सकूँ। अगर हम देखूँ तो गंदगी के कारण मच्छर मख या फिर कई प्रकार के रोग फैलना। और अगर हम अपने आसपास सफाई रख लेते कूड़ कचरे के सही स्थान पर डालें और अपन आदतों के भल करें तो हम स्वस्थ रह सकूँ और अपन शरीर और मस्तिष्क के स्वच्छ रख बेर हम अपन जो देशक विकास से विमले हम भले योगदान दे सकूँ। हमू के अपन स्वच्छता के प्रति जागरूक रहूँ चाहें वी के अलावा अपन आसपास या फिर जो समाज में और बनखी छन उन्हों के लिए एक लीजिए जागरूक करें चाहें सार्वजनिक स्थानों की सफाई करें प्लास्टिक या फिर गंदगी का कम करें और लोगों में स्वच्छता के लिए जन आदत छन उन्हों का विकास करन बहुत जरूरी हूँ। ये मैं विद्यार्थी ले सामाजिक जन भविष्य छन उन बहुत अपन भल भूमिका निभा सकना। उन अपन घर बैठे लिए अपन स्कूल या फिर अपन आसपास के क्षेत्रों के साफ रखे दूसरों के लिए प्रेरित कर सकना। हम के लिए यो ध्यान रखना चाहिए कि हम कूड़ादान का उपयोग करूँ पानी का साफ रखूँ और वी में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौध लगूँ एक बहुत ठूल कदम है सकूँ। और हम यो ले समझ सकूँ कि केवल जो स्वच्छता से सरकार की जिम्मेदारी ना हो बल्कि जो देशक नागरिक छन वी हर नागरिक को कर्तव्य छे। और अगर हम सब मिल बेर स्वच्छता का अपनों तो हमर देश सुंदर स्वस्थ और विकसित बन लो। ये कहली जी हम का यो संदेश जरूर ध्यान रखना चाहिए कि स्वच्छता एक सेवा मन बेर करीजो और अपन दैनिक जीवन में यो भलिया लागू करीजो।

जैसी छजरो छिसवाना बुरा सकी भूल जैसी हाय मेरी बाना काफलों की डाई जैसी छजरो छिसवाना बुरा सकी भूल।

श्रोताओं, सुरेश प्रसादक गई एक कुमावनी लोकगीत दगड़ हमर आजक उत्तरायण कार्यक्रम संपन्न हो। एन अपन दगड़ी श्याम भट्ट के कार्यक्रम संपन्न करने आज्ञा दियो। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे उत्तरायण कार्यक्रम FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 6:28 होने वाले हैं। अब अगला कार्यक्रम हमारे देहरादून केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: यूं तो अवसर प्रत्येक इंसान की जिंदगी में आता है, लेकिन इंसान उसका स्वागत न कर पाए तो वो लौटने में देरी नहीं करता। कार्डिनल आनंद हर आदमी के अंदर है और वो पूर्णतः सत्य की खोज से मिलता है। महात्मा गांधी। सफलता पाने के लिए दृढ़ संकल्पवान बनो, परिश्रमी बनो और साहसी बनो। स्वामी विवेकानंद। जिसने गर्व किया उसका पतन हुआ। स्वामी विवेकानंद। हिंदी का प्रयोग करें, इससे कार्यक्षमता, गुणवत्ता, उत्पादकता और योग्यता में वृद्धि होती है। हिंदी राष्ट्रीय एकता और भारतीयता की भाषा है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी का निधन। कल पुलिस सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। प्रदेश में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के निर्देशों के बाद देहरादून के आपदा प्रभावित कालेगाड़ क्षेत्र में मलबे के चैनलाइजेशन का कार्य शुरू। पौड़ी की जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने जल संस्थान कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। कई स्तरों पर लापरवाही सामने आने पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को कड़ी चेतावनी दी। और राजकीय पौधालय बागेश्वर में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की स्थापना और रखरखाव पर कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आशुतोष उनियाल और अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी का आज देहरादून में निधन हो गया। वे लंबे समय से अस्वस्थ थे। स्वर्गीय खंडूड़ी 2 बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री रहते हुए उन्होंने देश में सड़क विकास की नई दिशा तय की। उनका राजनीतिक जीवन सादगी, पारदर्शिता और सुशासन के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित कई नेताओं ने उनके निधन पर दुख व्यक्त किया है। वहीं प्रदेश में आज से 21 मई तक 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। इस दौरान समस्त सरकारी कार्यालयों में राष्ट्रीय ध्वज आधे झुके रहेंगे। साथ ही कोई शासकीय मनोरंजन के कार्यक्रम भी आयोजित नहीं किए जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी की अंत्येष्टि कल पुलिस सम्मान के साथ की जाएगी। राज्य सरकार ने कल सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के निर्देशों के बाद देहरादून के आपदा प्रभावित कालेगाड़ क्षेत्र में मलबे के चैनलाइजेशन का कार्य शुरू हो गया है। जिला खान विभाग द्वारा मशीनों के माध्यम से यह कार्य किया जा रहा है। गौरतलब है कि पिछले दिनों श्री जोशी ने इस क्षेत्र का निरीक्षण कर संबंधित विभागीय अधिकारियों को आपदा के मलबे को शीघ्र हटाने और प्रभावित क्षेत्र में राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए थे। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा इस संबंध में निविदाएं जारी कर दी गई हैं। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास कार्यों को लेकर पूरी गंभीरता से कार्य कर रही है। टिहरी जिले के फकोट में आज नरेंद्र नगर की ब्लॉक प्रमुख दीक्षा राणा की अध्यक्षता में क्षेत्र पंचायत की बैठक हुई। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल, टिहरी की जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल और विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में सदस्यों ने क्षेत्र में सड़क, पेयजल आदि से जुड़े मुद्दों को उठाया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे जनप्रतिनिधियों और आम लोगों के फोन अनिवार्य रूप से उठाएं तथा उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुने। ब्लॉक प्रमुख दीक्षा राणा ने कहा कि बैठक में सदस्यों द्वारा उठाई गई समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाएगा।
2: आज की इस बैठक में हम सभी की सुनवाई कर रहे हैं, जिसका भी जल से संबंधित हो, पेयजल निगम हो गया या पीडब्ल्यूडी हो गया, पीएमजीएसवाई हो गया या युवा कल्याण हो गया, इस तरह के तमाम जितने भी हमारे सभी बहुत जरूरी महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट्स हैं, उन सभी के बारे में यहाँ पे आज मीटिंग की गई है और माननीय मंत्री हमारे सुबुद्ध

0: नियाल जी भी हमारे बीच हमेशा उपस्थित रहते हैं और आज भी वो हमारे बीच उपस्थित हैं और डीएम साहिबा भी हमारे बीच आई हैं।
1: वहीं बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ईंधन बचत को लेकर की गई अपील का असर भी देखने को मिला। अधिकांश अधिकारी पैदल, बसों और अन्य वैकल्पिक साधनों से बैठक में पहुंचे। जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल ने कहा कि इससे जहां पर्यावरण प्रदूषण कम होगा, वहीं ईंधन की खपत में भी कमी आएगी।
2: जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि ग्लोबल क्राइसिस चल रहा है और प्रधानमंत्री जी ने अपील करी है, तो जो स्टेप्स हैं वो भले ही एक क्राइसिस में ही ओरिजिनेट होते हैं, बट अगर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में इनका एक प्रभावी असर भी रहता है हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर भी और सब चीजों के ऊपर भी। तो मुझे लगता है कि इसको हम आगे भी चलाएंगे। और जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोगों ने जनपद में भी एक नो व्हीकल्स डे कर दिया था और नॉट फ्रॉम टुडे, हमने ये अगस्त 2025 से हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। बिकॉज ये सारे प्रयास जो होते हैं आज ना केवल हमारे फूड क्राइसिस के लिए बेटर होते हैं कि उसको हम लोग फेस कर लें, साथ ही साथ एनवायरनमेंट के लिए भी काफी फ्रेंडली होते हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे
1: हरिद्वार के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने आज ऋषिकुल मैदान में बनाए गए चार धाम यात्रा के ऑफलाइन पंजीकरण केंद्र का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का लिया जायजा। इस दौरान उन्होंने पंजीकरण कराने पहुंचे श्रद्धालुओं से बातचीत कर उन्हें उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं और व्यवस्थाओं की जानकारी ली। जिलाधिकारी ने कहा कि पंजीकरण केंद्र में तीर्थ यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए गए हैं। वहीं जिला पर्यटन अधिकारी सुशील नौटियाल ने बताया कि ऑफलाइन पंजीकरण केंद्र में अब तक 1,94,000 से अधिक श्रद्धालु पंजीकरण करा चुके हैं।
3: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध है।
1: पौड़ी जिले में बढ़ती गर्मी के बीच पेयजल समस्याओं को लेकर आमजन से लगातार मिल रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने आज जल संस्थान कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने कार्यालय व्यवस्थाओं, शिकायत निस्तारण प्रणाली, अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति तथा फील्ड में चल रहे कार्यों की वास्तविक स्थिति का गहन जायजा लिया। इस दौरान कई स्तरों पर लापरवाही सामने आने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को कड़ी चेतावनी दी। एक रिपोर्ट।
4: निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने क्षेत्रीय स्तर पर कार्यरत एक कनिष्ठ अभियंता से वीडियो कॉल से संपर्क किया तो वे ड्यूटी के समय में अपने घर पर मौजूद मिले। इस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताते हुए संबंधित के खिलाफ तत्काल प्रतिकूल प्रविष्टि जारी करने के निर्देश दिए। वहीं अधीक्षण अभियंता कार्यालय से अनुपस्थित पाए गए, जिसके संबंध में उनका एक दिन का वेतन बाधित करते हुए स्पष्टीकरण मांगा गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि पेयजल जैसी अत्यंत संवेदनशील और जनहित से जुड़ी व्यवस्था में लापरवाही किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने कंट्रोल रूम व्यवस्था की भी समीक्षा की और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि आमजन को त्वरित और प्रभावी पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से संतोष थपलियाल।
1: कृषि और बागवानी को आधुनिक तकनीकों से जोड़ने के उद्देश्य से राजकीय पौधालय बागेश्वर में आज सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की स्थापना और रखरखाव पर कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिले के लगभग 100 किसानों ने भाग लिया। वहीं राजकीय विद्यालयों के छात्र छात्राओं को भी भ्रमण कार्यक्रम के माध्यम से बागवानी तकनीकों की जानकारी दी गई। वक्ताओं ने किसानों को सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के महत्व, उपयोगिता और रखरखाव के बारे में विस्तार से जानकारी दी। जिला उद्यान अधिकारी हरीश चंद्र आर्य ने कहा कि विभाग लगातार किसानों को आधुनिक तकनीकों से जोड़ने और योजनाओं का लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रहा है।
5: काश्तकारों को यहाँ पर जो है निश्चित रूप से बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री की सिंचाई की योजना है। इसमें अगर इसका उपयोग अगर काश्तकार करते हैं तो इसमें पानी की बचत होती है, साथ साथ श्रम की भी बचत होती है, क्योंकि हमें जो है प्रत्येक पौधे में या प्रत्येक खेत में हमें जाने की जरूरत नहीं है। एक बार हमने यहाँ पर अपनी सिंचाई की स्थापित कर दी तो एक बार वहाँ से वो करने पर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, सिंचाई अपने आप हो जाती है और काश्तकार के समय की काफी बचत होगी।
1: भ्रमण कार्यक्रम में शामिल छात्र ऋतिक लुमियाल ने कहा कि खेती और बागवानी के आधुनिक तरीकों को समझना काफी रोचक अनुभव रहा।
6: सबसे पहले तो हमें पोली हाउस के बारे में बताया गया जो कि झाड़ियों की फसलों के लिए हमारे लिए लाभदायक होती है। फिर हम ऊपर गए, वहाँ पे हमने लीची घूटी का पेड़ देखा जिसमें दिखाया जा रहा था कि उसमें कांच बांध के और उसमें से पॉलीथीन से उसमें से नए बीज कैसे उगाए जाते हैं। फिर हम गए आम के पेड़ों के वहाँ पे जहाँ पे हमने कलमी आम और अन्य प्रकार के आम देखे जिनमें आमों के टहनियों को काट कर उसको नीचे लगाया जा रहा था।
1: उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की इस साल हुई हाईस्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले चंपावत जिले के होनहार छात्र छात्राओं को आज सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी मनीष कुमार ने छात्रों से उनके भविष्य के लक्ष्यों पर संवाद किया और उन्हें विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की जानकारी दी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी का निधन, कल पुलिस सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। प्रदेश में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के निर्देशों के बाद देहरादून के आपदा प्रभावित कालीगढ़ क्षेत्र में मलबे के चैनलाइजेशन का कार्य शुरू। पौड़ी की जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने जल संस्थान कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। कई स्तरों पर लापरवाही सामने आने पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को कड़ी चेतावनी दी और राजकीय पौधालय बागेश्वर में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की स्थापना और रखरखाव पर कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत।

अनूप जलोटा की गाई इसी भक्ति रचना के साथ हमारा आज का भक्ति संगीत कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 6:50 होने वाले हैं। अब गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से रिले होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बुलेटिन गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों का दगड़ी मी प्रियंका। पहली मुख्य समाचार। उत्तराखंड का पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी को आज देहरादून में निधन। राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री समेत कई नेताओं ने शोक व्यक्त करी। चार धाम यात्रा से लेके श्रद्धालुओं में खास उत्साह। एक महीना की तीर्थ यात्रा में अब तक लगभग 16 लाख श्रद्धालुओं दर्शन करीनी। बागेश्वर में उद्यान विभागन कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम को आयोजन करी। किसानों ते सूक्ष्म सिंचाई और आधुनिक बागवानी तकनीकों की जानकारी दिए गए। और राज्य में रूढ़ी को असर बड़ी। मौसम विभागन हरिद्वार, देहरादून और उत्तरकाशी का आसपास का क्षेत्रों में 21 मई तक लू चरण की संभावना जते। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री और उत्तराखंड का पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी को आज देहरादून में निधन हुए गए। वो 92 वर्ष का छा और पिछला कुछ समय बटीन अस्वस्थ चलना छा। उनको उपचार देहरादून का एक निजी अस्पताल में चलनु छो। मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी भारतीय सेना में लंबा समय तक सेवाएं दौड़ का बाद राजनीति में एनी और अपनी साफ सुथरी छवि, ईमानदार प्रशासन और सुशासन कुणी पछड़ी गैनी। उन उत्तराखंड का मुख्यमंत्री का रूप में द्वि कार्यकाल संभलिनी और केंद्र सरकार में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री का रूप में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित विभिन्न लोगों का निधन पर दुख व्यक्त करी। प्रधानमंत्री ने बोली कि सशस्त्र बलों से लेकर राजनीतिक जीवन तक मेजर जनरल खंडूड़ी को योगदान सदनी ही स्मरणीय रौलू। देश भर में बेहतर कनेक्टिविटी कुणी उनका प्रयास प्रेरणादायी छा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बोली कि मेजर जनरल खंडूड़ी को जीवन राष्ट्र सेवा, अनुशासन और जनहित का प्रति समर्पण को उदाहरण छो। उन बोली कि उत्तराखंड का विकास, सुशासन और पारदर्शी कार्यशैली कुणी उनको योगदान सदनी ही याद किए जालू। पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी को अंतिम संस्कार भोज राजकीय सम्मान का दगड़ा संपन्न होलू। ये अवसर पर राज्य सरकार बुधवार ते सार्वजनिक अवकाश घोषित करी। शासन द्वारा जारी आदेश का अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री खंडूड़ी का निधन पर प्रदेश में आज बटीन 21 मई तक 3 दिवसीय राजकीय शोक घोषित किए गए। ये दौरान सभी सरकारी कार्यालयों में राष्ट्रीय ध्वज अदु झुक्यू रौलू और कई भी प्रकार का शासकीय मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाला। राज्य में चारधाम यात्रा सुचारू रूप से जारी च। आस्था की ई पवित्र यात्रा ते शुरू हुआ आज एक महीना हुई गए और तीर्थ यात्रा का प्रति श्रद्धालुओं में खास उत्साह देखने ते मिलनु छु। पिछला महीना उत्तरकाशी जिला में यमुनोत्री और गंगोत्री धाम का कपाट खुलन का दगड़ा में ही चार धाम यात्रा को शुभारंभ हुई गए छो। खराब मौसम का चलती शुरुआती दौर में यात्रा की रफ्तार थोड़ी धीमी रहे पर अब यात्रा रफ्तार पर च। अब तक लगभग 16 लाख श्रद्धालुओं चार धाम में दर्शन और पूजा अर्चना करी। सभी सबसे ज्यादा तीर्थयात्री केदारनाथ धाम पहुंचना छीन जख दर्शन कन वाला शिव भक्तों की संख्या 6,50,000 से ज्यादा वेगे। ये बीच पर्यटन मंत्री सतपाल महाराजन श्रद्धालुओं से तीर्थ यात्रा का दौरान यात्रा मार्ग और धाम परिसर ते स्वच्छ बने रखने की अपील करी।
1: श्रद्धालु भक्तगण चार धाम यात्रा में देवभूमि में पधारे हुए हैं और यह हमारा कर्तव्य है और सबसे बड़ी पूजा यह है कि हम देवभूमि को स्वच्छ रखें। इसलिए जो भी कूड़ा है वो कूड़ा दान में डालें और सारी धरती को पवित्र रखें। मेरा आपसे बहुत अनुरोध है कि कूड़ा कूड़े की जगह पड़े तो हमारी देवभूमि साफ रहेगी, सुरक्षित रहेगी और आने वाली पीढ़ी के लिए एक आदर्श चार धाम के रूप में स्थापित होगी।
0: उन्हें चार धाम यात्रा का दगड़ा अब सिख श्रद्धालुओं की आस्था को प्रमुख केंद्र हेमकुंड साहिब यात्रा भी 23 मई बटी शुरू होने वाल छ। समुद्र तल बटी करीब 15,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित हेमकुंड साहिब का कपाट श्रद्धालुओं को खुले जाने वाल छिन। यात्रा ते लेके जिला प्रशासन, सेना और हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा ट्रस्ट तैयारियों ते अंतिम रूप देने में जुटिया छिन। घांगरिया बटीन हेमकुंड साहिब तक करीब 4 किलोमीटर का पैदल मार्ग पर सेना का जवानों प्रतिकूल मौसम और भारी हिमपात का चलती ह्यूते हटे की बाटू तैयार करी। वकी प्रशासन पेयजल, विद्युत, दूरसंचार और अन्य मूलभूत सुविधाओं ते दुरुस्त कनमा जुटियो छ। जिलाधिकारी गौरव कुमारन बते की यात्रा मार्ग पर सभी जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित किए जानी छिन और कपाट खुन से पहली सभी तैयारी बहाल कर दिए जाली।
2: यदि 23 तारीख को हेमकुंड साहिब के कपाट खुल रहे हैं, इसके लिए प्रशासन की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं। आर्मी के द्वारा पहले इसमें बर्फ काट के रास्ता बनाया गया है। जो वहाँ पर अप्रोच रोड है जो PMGSY की है, उनके द्वारा उसका सुधारीकरण कार्य लगातार किया जा रहा है। ट्रैक मार्ग पे PWD के द्वारा कार्य किया जा रहा है। साथ ही घोड़ा खच्चर की व्यवस्था को सुचारू करने के लिए इस वर्ष वहाँ पर ऑनलाइन टोकन की व्यवस्था भी प्रारंभ की गई है।
3: गढ़वलीमा प्रादेशिक समाचारों को यू बुलेटिन आकाशवाणी का देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करे जाणो जे। ताजा समाचारों खुड़ी आप हमारा सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड थे फॉलो कर सकते हैं। दगड़ा दगड़ी यू समाचार हमारा यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध छिन।
0: बागेश्वर में उद्यान विभाग द्वारा राजकीय पौधालय में एक दिवसीय कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। ये में करीब 100 किसानों ने भाग लेनी, जबकि छात्र छात्राओं ते भ्रमण का माध्यम से आधुनिक बागवानी तकनीकों की जानकारी दिए गए। कृषि विज्ञान केंद्र काफली गैर का प्रभारी वैज्ञानिक डॉक्टर राजकुमारन किसानों ते सूक्ष्म सिंचाई ड्रिप और स्प्रिंकलर तकनीक को लाभ और रख रखाव की जानकारी दे। विशेषज्ञों मौसमी सब्जियों में रोग नियंत्रण जैविक उपाय और संतुलित पोषण पर भी जानकारी दे। विद्यार्थियों ते पॉलीहाउस कटिंग ग्राफ्टिंग बंडिंग और पौध संवर्धन की विधियों से अवगत करेंगे। जिला उद्यान अधिकारी हरीश चंद्र आर्यन बते कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का तहत किसानों ते सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली लगाउण पर अनुदान दिए जाणु छ। उन बोली कि विभाग किसानों ते आधुनिक तकनीकों से जुड़नु कुणी लगातार प्रयास कनु छ।
4: काश्तकारों को यहाँ पर जो है निश्चित रूप से बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, न कि जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, इसका उपयोग अगर काश्तकार करते हैं तो इसमें पानी की बचत होती है, साथ साथ श्रम की भी बचत होती है, क्योंकि हमें जो है प्रत्येक पौधे में या प्रत्येक खेत में हमें जाने की जरूरत नहीं है, नीच सिंचाई अपना आप हो जाती है और काश्तकार के समय की काफी बचत।
0: प्रदेश में रूढ़ी को असर लगातार बढ़ती जाणु छ। मौसम विभागन हरिद्वार देहरादून और उत्तरकाशी के आसपास का क्षेत्रों में 21 मई तक कखी कखी लू चलन की संभावना जते। ये बीच सोमवार को दिन रूड़की प्रदेश को सबसे ज्यादा गर्म स्थान रहे, जक अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किए गए। राजधानी देहरादून में भी आज अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस का आसपास दर्ज किए गए। मौसम विभाग के अनुसार अगला 2 से 3 दिनों में अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती। मैदानी जिलों में मौसम मुख्य रूप से रूखू बण्यु रालू। वकी उत्तरकाशी रुद्रप्रयाग चमोली बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कखी कखी हल्की बर्खा का दगड़ा में गरज चमक की संभावना छ। क्षेत्रों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज बथों चलन और आगासी बिजली चमकण का भी अनुमान लगे जाना छिन। मौसम विभागन लुखोते दोपहर का बगत तड़तड़ा घाम से बचण और पर्वतीय क्षेत्रों में खराब मौसम का दौरान सतर्क रहने की सलाह दीनी। देहरादून का सरकारी अस्पतालों में एंटी रेबीज वैक्सीन की कमी से परेशान मरीजों को राहत भरी खबर च। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि पिछला कुछ बगत बटीन बनी वैक्सीन की समस्या अब दूर होने बैठी गई। श्री शर्मा का अनुसार विभाग स्थानीय खरीद का माध्यम से CHC और PSC में लगातार वैक्सीन की उपलब्धता बने के रखनु छो, जबकि राजकीय और जिला अस्पतालों में महानिदेशालय स्तर बटीन सप्लाई प्रभावित होने का कारण दिक्कत आनी छे और निजी विक्रेताओं में भी स्टॉक की कमी छे, जैसे समस्या और बढ़ी गई। उन बते कि पिछला सप्ताह महानिदेशालय बटीन करीब 1000 एंटी रेबीज वैक्सीन प्राप्त हुई नी। दगड़ा ही पुराना वेंडरन भी अब नियमित सप्लाई शुरू करने कुनी हामी भरे ली।
5: जहाँ तक हम अपनी CHC PSC की बात करें तो हमारे स्तर से लगातार सप्लाई वहाँ पे की जाती रही और ऐसी कहीं कोई क्राइसिस ऐसी नहीं आ पाई कि किसी को इंजेक्शन ना मिलाओ। जहाँ तक SGH और DH की बात है तो वहाँ से सीधे जो है वो क्योंकि DG स्तर से वहाँ पे सप्लाई होती है तो वहाँ पे थोड़ा समस्या थी। कुछ लोगों ने अपने स्तर से खरीदने की कोशिश भी, ये समस्या जो थी इसमें प्राइवेट अगर हम किसी से खरीदना चाह रहे थे तो वहाँ भी सप्लाई नियमित रूप से नहीं मिल पा रही थी और जो हमारे DG स्तर से वो सप्लाई भी जो है हमें वहाँ से नियमित रूप से नहीं मिल पा रही थी। लेकिन अभी लास्ट वीक की DG स्तर से सप्लाई शुरू हो गई है और अभी लगभग हमें 1000 के आसपास जो है वहाँ DG स्तर से भी हमें जो ARV मिल गए हैं और जो हमारे जो वेंडर जो पहले सप्लाई नहीं कर पा रहे थे वो भी अब रेगुलर हमें सप्लाई वो कर रहे हैं।
0: पिथौरागढ़ में नंदा देवी ईस्ट ट्रैकिंग मिलम ग्लेशियर अभियान कुणी चयनित 26 सदस्यीय छात्र छात्राओं का दल ते जिलाधिकारी आशीष कुमार भट्ट गायन हरी झंडी दिखे के रवाना कैरी। ये अवसर पर जिलाधिकारी ने बोली कि पिथौरागढ़ जिला साहसिक पर्यटन की अपार संभावनाओं से भरियों च। उन बोली कि ये प्रकार का ट्रैकिंग अभियान युवाओं में साहस, अनुशासन, आत्मविश्वास और टीम भावना को विकास कर दिन। जिलाधिकारी ने प्रतिभागियों से ट्रैकिंग का दौरान सुरक्षा मानकों को पालन कन और पर्यावरण संरक्षण को संदेश देने की अपील कह रही। उन बोली कि राज्य सरकार साहसिक पर्यटन ते बढ़ावा देने का वास्ता लगातार कार्य करनी च। पर्यटन विभाग का अधिकारियों बते कि अभियान से पहली सभी प्रतिभागियों ते जरूरी प्रशिक्षण दिए गए और ट्रैकिंग का दौरान भी अनुभवी गाइड और प्रशिक्षकों की टीम भी दगड़ा डाली। अंत में मुख्य समाचार एक दो फिर से। उत्तराखंड का पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी को देहरादून में निधन। राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री समेत कई नेताओं ने शोक व्यक्त करी। चार धाम यात्रा ते लेके श्रद्धालुओं में खास उत्साह। एक महीना की तीर्थ यात्रा में अब तक लगभग 16 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन करीनी। बागेश्वर में उद्यान विभाग ने कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम को आयोजन करी। किसानों ते सूक्ष्म सिंचाई और आधुनिक बागवानी तकनीकों की दिए गए जानकारी। और राज्य में रूढ़ी को असर बढ़ी। मौसम विभाग ने हरिद्वार, देहरादून और उत्तरकाशी के आसपास का क्षेत्रों में 21 मई तक लू चलन की संभावना जते। ये कई दगड़ी गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों को यू अंक समाप्त हुए। नमस्कार।
6: हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। अब समय है कार्यक्रम किसान वाणी का।

किसान वाणी कार्यक्रम सुनेर सब श्रोता दगड़ियों कमी आपू दगड़ी प्रेमक नमस्कार। श्रोता हमारे यह कार्यक्रम प्रायोजक छन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। श्रोताओं सूक्ष्म जीव हमारे पारिस्थितिक तंत्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभोनी, कई कीड़ों चिकित्सा और उपचार और स्वास्थ्य सेवा में लंब और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक योगदान छु और यो परंपरा आधुनिक चिकित्सा में ले जारी छू। कृषि और पर्यावरण में सूक्ष्म जीव संतुलित प्रयोग माटक उर्वरता बढ़ोन, फसलों पैदावार सुधारण और पर्यावरण का सुरक्षित धरण एक बेहतरीन और वैज्ञानिक तरीक छू। जब हम माट में सही मात्रा और सही तरीके लाभदायक सूक्ष्म जीव जस बैक्टीरिया फंगसक उपयोग करनु तो रासायनिक खादों पर हमर निर्भरता कम होते जा, सूक्ष्म जीव संतुलित और

प्रभावी प्रयोग के हम मुख्य उपयोगी सूक्ष्म जीवों और उनर कार्य माटक उपजाऊ शक्ति बढ़ोने के लिए अलग अलग कामों के लिए विशिष्ट सूक्ष्म जीव चयन करी जा। नाइट्रोजन स्थिरीकरण राइजोबियम एजोटो वेक्टर और एजोस्पिंग और बैक्टीरिया हाउ में मौजूद नाइट्रोजन के शोकभेर पौधों के उपलब्ध करोनी जस दलहनी फसलों के लिए राइजोबियम बहुत फायदेमंद छू। श्रोताओं, फास्फोरस घोलक माट में सबसे पहली बटी मौजूद होनी, लेकिन अघुषण फास्फोरस के घोलभेर पौधों जड़ों तक पहुँचाने के लिए वो प्रयोग करी जा। पोटास मोबिलाइजिंग माटपटी छिपी पोटास के पौधों के लिए ग्रहण करणक योग्य बनोनी। श्रोताओं, माट में जनित फंगस जनित बीमारियां जस जड़ सड़नक पौधों की रक्षा करनी प्रयोग करणक या का सही तरीक जो सूक्ष्म जीव पूरा लाभ उठौने के लिए इनका सही तरीका इस्तेमाल करण बहुत ज़्यादा जरूरी छू। बीज उपचार के लिए बुआई हुए पहले बीजों के गुड़ और पानी में सूक्ष्म जीव कल्चर जस मिश्रण में उपजनित कर फिर यह शो में सुखाई जा। जड़ उपचार के लिए पौधों की रोपाई जस खुशियाँ टमाटर अन्य सब्जियों करण हुए पहले इन जड़ों में कुछ वक्त तक सूक्ष्म जीव के लिए घोल में डूबे फिर धर दें चें। और माट उपचार के लिए जैविक खाद जस फल हमके उपचार यह लीजिए करण चें। श्रोताओं, भले ही कीड़े मकोड़े हमके बहुत परेशान करनी, लेकिन यो अद्भुत जीव होनी जो कई तरह हमार मदद करनी। आधुनिक चिकित्सा में जीव और उत्पादन हमको स्वस्थ धरण के लिए प्रेरित करनी और हमार खेत पैत पर्यावरण में यो बहुत अपन भूमिका निभाने लग रही। विज्ञान और चिकित्सा एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही यो सूक्ष्म जीव प्रति आभार व्यक्त करण सबसे फल तरीक यही छो कि हम आजक वक्त में अपन खेत पैत में पर्यावरण में जो सूक्ष्म जीव छ उनर को तरीकल इस्तेमाल कर सकनू यो बात कला हमका विशेष ध्यान धरने आवश्यकता छू।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: श्रोताओ, कार्यक्रम मागील आपको सुनाने लग रही है लोकगीत समूह स्वर में गाई हुई।

0: श्रोता आपको सुनने लग रहा चाहिए यो समूह स्वर में गाई हुई लोकगीत। कार्यक्रम अगिल आपको सुनने लग रहा भेंटवार्ता, उर्वरकों संतुलित उपयोग कब और कशिक करी जाओ, यो विषय पर डॉक्टर आरपी मीणा दगर भेंटवार्ता करण लग रही प्रमोद कुमार पांडे।
1: श्रोता मित्रों नमस्कार। श्रोता मित्रों आज हमारे आकाशवाणी अल्मोड़ा के स्टूडियो में आए हुए हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा से वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर आर पी मीणा जी। डॉक्टर साहब से आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे उर्वरकों का संतुलित प्रयोग कब और कैसे विषय पर। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे आकाशवाणी अल्मोड़ा के स्टूडियो में। डॉक्टर साहब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वर्तमान समय में संतुलित उर्वरक उपयोग की आवश्यकता क्यों है।
2: जी, इसका जो मूल उद्देश्य यही है कि हम जो जमीन में जो पोषक तत्वों का जो प्रबंधन करते हैं
1: जी,
2: उसमें कहीं कहीं कमी रहने से हमारे मिट्टी के स्वास्थ्य के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, साथ में हमारी खेती में लागत ज्यादा लगती है, पोषक तत्वों से जो दक्षता हमें मिलनी चाहिए वो मिल नहीं पाती है, और कुल मिला के अंत में जो हमें जो पैदावार है जितनी मिलनी चाहिए पैदावार नहीं मिल पाती और मिट्टी के स्वास्थ्य के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मिट्टी के स्वास्थ्य के साथ साथ जो पर्यावरण पर भी नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो संतुलित उर्वरक मतलब हमें पोषक तत्वों का प्रबंधन इस तरह से करना है कि हमें ज्यादा पैदावार मिले, जमीन का स्वास्थ्य है वो बना रहे, खेती में लागत कम हो, पर्यावरण पर किसी तरह का प्रभाव नहीं हो और हमें ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो, ये मूल उद्देश्य है।
1: जी डॉक्टर साहब, उर्वरक की कम उपयोग दक्षता एक गंभीर समस्या है।

0: आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। आज के समय में जो इंटेंसिव फार्मिंग यानी जिसमें ज्यादा हम खेती ज्यादा ज्यादा फसल उगाते हैं, ज्यादा पैदावार हम लेना चाहें तो हमें उर्वरक डालना जरूरी हो जाता है, पोषक तत्व। इसमें सबसे बड़ी एक समस्या आती है, अगर किसान भाई सही से प्रबंधन नहीं करते उसकी जो दक्षता है, जैसे हम नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन की बात करें तो उसकी जो दक्षता 30-40% है। फॉस्फोरस की है जो सबसे महंगा फर्टिलाइजर है प्रेजेंट में, सबसे महंगा वही हो रहा है, गवर्नमेंट भी इसके ऊपर काफी फोकस कर रही है, लगभग 15-20% उसकी दक्षता है। वही बात करें पोटेशियम की, लगभग 50% है। तो इनकी जो दक्षता, जैसे मैंने कहा फॉस्फोरस की जो दक्षता है लगभग 15-20%, आप जब 100 किलो फॉस्फोरस जमीन में डाल रहे हो तो 15-20% ही पौधे को मिल पा रही है, तो बाकी कहां जा रही है। तो कुछ प्रबंधन इस तरह से किया जाए कि ज्यादा से ज्यादा हमें उसकी जो दक्षता है जो बढ़ाई जाए। तो इसके दक्षता बढ़ाने के लिए बहुत सारे उपाय हैं जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे।
1: जी डॉक्टर, संतुलित उर्वरक उपयोग का वैज्ञानिक महत्व भी आप हमारे किसान भाइयों को बताएं।
0: जी, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि जब भी आप उर्वरक प्रबंधन की बातें करते हो तो आपको इस बात का पता होना चाहिए कि हमारे जो पौधे हैं उनको कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। लगभग 17 ऐसे आवश्यक पोषक तत्व हैं जिनके बिना पौधे अपना जीवन है जो कंप्लीट नहीं कर सकते। जैसे हमारे शरीर में ऊर्जा के लिए हमें कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, वसा चाहिए और

0: जी, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि जब भी आप उर्वरक प्रबंधन की बातें करते हो तो आपको इस बात का पता होना चाहिए कि हमारे जो पौधे हैं उनको कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। लगभग 17 ऐसे आवश्यक पोषक तत्व हैं जिनके बिना पौधे अपना जीवन है जो कंप्लीट नहीं कर सकते। जैसे हमारे शरीर में ऊर्जा के लिए हमें कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, वसा चाहिए
1: जी,
0: और लवण चाहिए। इसी तरह पौधे को नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे कि जिंक, कॉपर, आयरन, एमएन, ऐसे कुल मिला के 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है
1: जी।
0: हमें किसी न किसी रूप में इन पोषक तत्वों का सही से प्रबंधन करना, यही एक वैज्ञानिक तरीका है कि आप सभी पोषक तत्वों का इस तरह से प्रयोग करो कि किसी एक मुख्य पोषक तत्व का ज्यादा कमी न हो और पौधे की जो उपज है जो कम हो।
1: जी डॉक्टर, भारतीय कृषि में असंतुलित एनपीके अनुपात क्या है?
0: हाँ, जैसे कि हम बात करें कि एनपीके अनुपात की बात करें, जो एनपीके जो अनुपात है, हम बात करें जो धान्य फसलें जिसको जो हम दाने के रूप में खाते हैं उनमें जो औसत जो अनुपात है वो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास का वो 4:2:1 होना चाहिए, पर प्रेजेंट में वो 8:3:1 है। तो इससे क्या ज्यादा, इसका मतलब है जो नाइट्रोजन वाले जो फर्टिलाइजर उनका उपयोग बहुत ज्यादा हो रहा है। तो हमें क्या है कि मैं कहूं कि किसी को अगर कोई कहे कि आप हाँ घी खाने से आपका शरीर हेल्दी रहेगा, पर घी ज्यादा खाने से भी आपको नुकसान कर सकता है। ठीक उसी तरह आप जितने भी पोषक तत्व आप किसी एक को, जैसे नाइट्रोजन का उपयोग अगर आप ज्यादा करोगे तो आपकी जमीन के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और साथ में आपकी जो फसल में उसकी उपज कम होगी, साथ में कीट पतंगों और बीमारियों का ज्यादा प्रकोप होगा।
1: जी डॉक्टर साहब, मृदा परीक्षण आधारित उर्वरक प्रबंधन ये क्या है?
0: जैसे कि हमने शुरू में बात की जो वैज्ञानिक तरीका क्या है पोषक तत्वों का सही से प्रबंधन करने का, तो उसमें मृदा के मिट्टी के प्रेक्षण के आधार पर जो उर्वरक प्रबंधन करते हैं पोषक तत्वों का प्रबंधन करते हैं वो मुख्य है। तो इसमें क्या, सबसे पहले हमें क्या करना है कि मिट्टी का सैंपल लेना। सैंपल लेने का तरीका भी आपको सही से जाना है कि आपको अंग्रेजी में वी आकार का गड्ढा बनाना, 0 से 15 सेंटीमीटर ऊपर से लेकर नीचे तक समान मात्रा में आपको मिट्टी लेनी है
1: जी।
0: और एक खेत के अंदर 8 से 10 जगह से आप मिट्टी लेके सबको मिक्स करके और आप प्रयोगशाला में भेजे ताकि उसके परिणाम अच्छा है। और जब मिट्टी के जांच में पता चल जाएगी पोषक तत्वों का मान कितना है, अगर किसी जैसे कि उत्तराखंड के अंदर हमारा अल्मोड़ा की बात करें तो यहाँ पे फॉस्फोरस की मात्रा काफी ज्यादा है
1: जी।
0: ऐसी अवस्था में है किसान भाई ये जो फॉस्फोरस की या तो डाले नहीं डाले तो कम डाले, अगर पोषक तत्व की मात्रा ज्यादा है तो आप 25% उसकी जो रिकमेंडेड डोज है जो संशोधित मात्रा है उससे आप 25% मात्रा कम डाले ताकि आपको उसकी दक्षता ज्यादा मिले, लागत में कमी है कम आए और जो आपकी जो फसल का उत्पादन अच्छा हो।
1: डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक प्रश्न मेरे मन में आ रहा है वो ये है कि हमारे बहुत सारे किसान जो है कि वो मृदा परीक्षण तो कराना चाहते हैं
0: जी,
1: लेकिन वो ये समझ नहीं पाते कि हम मृदा परीक्षण कराएगा
0: जी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत सरकार ने एक स्कीम लॉन्च की है मृदा स्वास्थ्य कार्ड, उस कार्ड उसमें आप ना मिट्टी का जो नमूना है वो आप जो राज्य सरकार की जो लेबोरेटरी, हर एक डिस्ट्रिक्ट पे एक लेबोरेटरी, जैसे कि अल्मोड़ा की हम बात करें तो कोसी में एक प्रयोगशाला है मिट्टी की जांच के लिए
1: जी,
0: आप वहां पे सैंपल भेज सकते हैं। वरना आप हर जो आपकी जो पंचायत लेवल पे कृषि अधिकारी या जो कृषि का कोई ना कोई जो है वहाँ का वहाँ पे होगा तो आप उनसे संपर्क करें, उसको मिट्टी का अपना नमूना दे, वो आपको जांच करा के आपको उसके बारे में आपको बताएंगे। साथ में आप जरूर ये जरूर प्रयास करें कि आपका जो मिट्टी का स्वास्थ्य कार्ड हो जरूर बने
1: जी।
0: जी
1: जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत बढ़िया जानकारी बताई मृदा परीक्षण क्या
0: जी
1: के बारे में। डॉक्टर साहब, उर्वरकों का सही उपयोग, समय एवं सही विधि
0: जी,
1: ये क्या है?
0: जब भी हम बात करें कि जो उर्वरक की सही दक्षता हमें कैसे प्राप्त हो, हमें ये जानना पड़ेगा हर उर्वरक, हर जो पोषक तत्व का जो प्रकृति वो अलग टाइप की होती है। जैसे कि हम यूरिया की बात करें, यूरिया बहुत जल्दी घुल जाता है, नाइट्रोजन बहुत जल्दी घुल जाता है। तो ऐसी अवस्था में आप नाइट्रोजन वाले जितने भी जो खाद का प्रयोग करते हैं तो उसको आप स्प्लिट डोजेज में, अलग अलग डोजेज में डालो ताकि आपकी दक्षता ज्यादा मिले। फॉस्फोरस ऐसा पोषक तत्व है कि वो जमीन में घुलनशील नहीं है, जड़ को उस तक पहुंचना पड़ता है, तो आप उसको दाने को इस तरह से डालो कि जड़ के या तो उसके नीचे डालो या पौधे के पास में डालो। तो यानी कि आप कभी भी जो छिटकाव विधि द्वारा जो आप जो खाद डालते हैं वो सही तरीका नहीं है, आपको लाइन में डालना है या फिर बीज के नीचे डालना है। जो प्लेन्स में आप देखोगे सीड कम फर्टी डिल डाली है जिसके अंदर बीज अलग डलेगा और उसके नीचे जो है खाद जाता है, तो इस तरह से आप इनका प्रबंध कर सकते हैं। इसी तरह से पोटास है, पोटास यानी पोटास और फॉस्फोरस दोनों को आपको बेसल डालना, जब फसल आप जब बुआई कर रहे हो तो उससे पहले आपको डालना है, और नाइट्रोजन आपको स्प्लिट में डालना, कम से कम 3 डोजेज में डालना है ताकि इस तरह का जो ह्रास होता है वो ह्रास ना हो और दक्षता आपको ज्यादा मिले।
1: जी डॉक्टर साहब, जैविक खाद एवं समेकित पोषक तत्व प्रबंधन जी, क्या है?
0: जब भी हम उर्वरक प्रबंधन की बात करते हैं तो हमें पूर्ण रूप से रसायन के ऊपर भी डिपेंड नहीं होना है और हमें पूर्ण रूप से जो कार्बनिक खाद है उनके ऊपर भी डिपेंड नहीं हो रहा है, क्योंकि कार्बनिक खादों में इतने पोषक तत्व नहीं होते कि हम ज्यादा फसल ले रहे हो तो उतने पोषक तत्व सप्लाई कर सके। ठीक उसी तरह अगर हम केवल रासायनिक खादें डालेंगे तो जो जीवांश पदार्थ की मात्रा जमीन में कम हो जाएगी और जो सूक्ष्म जीव है उनकी एक्टिविटी कम होगी। तो हमें क्या करना है कि उर्वरकों का प्रयोग भी करना है संतुलित मात्रा में, साथ में हमें जो कार्बनिक खादें हैं जैसे कि फार्मयार्ड मैन्यूर हो गई, FIM हो गई, कंपोस्ट हो गई, वर्मी कंपोस्ट हो गई, लीप पत्ती जो कंपोस्ट बनती है वो हो गई, हरी खाद हो गई जिसके लिए आप ढेंचा सने का उपयोग करते हो, तो इस तरह से आप खादों को प्रयोग करें। साथ में जैविक उर्वरक है, बायोफर्टिलाइजर्स है, उनको आप बीज उपचार में, उनकी पौध को उपचार में इनको आप आशा करके और आप जो आपको जो पोषक तत्व की दक्षता बढ़ा सकते हो और उत्पादन ज्यादा ले सकते हो।
1: जी डॉक्टर साहब, नई तक

0: तकनीकें एवं भविष्य की दिशा में
1: जी
0: जो प्रयास किए जा रहे हैं
1: जी
0: वो कौन कौन से?
1: जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि नैनो डीएपी जैसे इफको ने लॉन्च किया, ऐसे बहुत सारे लिक्विड फर्टिलाइजर यानी कि ऐसे फर्टिलाइजर जिनको आप पानी में घोल के आप दे सकते हो। जो किसान भाई सब्जियों की खेती करते हैं ड्रिप इरिगेशन करते हैं, फव्वारा विधि से करते हैं, मुख्य रूप से ड्रिप इरिगेशन जो फर्टिगेशन है उसके अंदर सबसे ज्यादा पोषक तत्व की दक्षता देखने को मिलती है, तो आप लिक्विड फर्टिलाइजर का उपयोग करें। साथ में जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है ये भी एक जो प्लेन्स में जो अच्छे जो किसान जो इसको जो सूक्ष्म पोषक तत्व है स्पेशली जिनकी, तो सूक्ष्म पोषक तत्व को हम जमीन नहीं डाल सकते, ज्यादा दक्षता लेने के लिए हमें क्या उसको फुल स्प्रे करना पड़ता है, तो आप इनका लिक्विड फर्टिलाइजर का उपयोग करें, सूक्ष्म पोषक तत्वों का फुल स्प्रे करें, ज्यादा दक्षता प्राप्त करें।
0: जी डॉक्टर साहब, थोड़ा साहब आपने इतनी अच्छी जानकारी हमें और हमारे किसान भाइयों को दी, अब चलते चलते आप हमारे और किसान भाइयों से और क्या कहना चाहते हैं?
1: मैं किसान भाई बहनों से सभी से कहना चाहूंगा कि आज आवश्यकता इस बात की है कि हमें अधिक उर्वरक उपयोग की बजाय सही संतुलित उर्वरक उपयोग को अपनाएं, मृदा परीक्षण आधारित पोषक तत्व प्रबंधन करें, जैविक व रासायनिक स्रोतों का संतुलित उपयोग करें, सही मात्रा सही समय सही विदेशी उर्वरक का प्रयोग करके हम लागत में हम कमी ला सकते हैं और साथ में मिट्टी का स्वास्थ्य लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं। संतुलित उर्वरक उपयोग न केवल अधिक उत्पादन देता है बल्कि टिकाऊ कृषि पर्यावरण संरक्षण आने वाले पीढ़ियों की खाद्य सुरक्षा के लिए भी अत्यंत आवश्यक है।
0: जी डॉक्टर साहब, थोड़ा साहब आपने उर्वरकों का संतुलित उपयोग कब और कैसे विषय पर इतनी अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे किसान भाई आपके द्वारा बताई गई जानकारी से अवश्य लाभ उठाएंगे। आप हमारे आकाशवाणी अल्मोड़ा के स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: श्रोता अब सुनने लग रहा है भेंटवार्ता, उर्वरकों का संतुलित उपयोग कब और कैसे करी जाओ, यो विषय पर डॉक्टर आर पी मीणा दगड़ बात करने लग रहा है प्रमोद कुमार पांडे।
3: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना
4: मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोताओं, अगर औषधि फसलों की बात करी जाओ तो औषधि फसल वो फसल होनी जिनमें रसायन पाई जानी जैव उपयोग रोगों उपचार रोकथाम और समग्र स्वास्थ्य का बढ़ावा देने के लिए करी जाओ। हम औषधीय और सुगंधित फसल उनर लाभ उत्पादन किस्म और भारत में उन्हें खेती का बढ़ावा देने के लिए पहलुओं पर जान सकनु। जड़ी बूटियां झाड़ियों और वृक्ष सहित औषधीय पौध सदियों बटी रोगों उपचार और रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए लागरी, लेकिन वर्तमान वक्त में एलोपैथिक चिकित्सा प्रणाली इनका एक हाशिए पर थकिल हलो। हालांकि मौजूदा परिदृश्य में पारंपरिक चिकित्सा तरफ लौटते एक वैश्विक जागरूकता देखी जाने लग रहे, यह सबसे किफायती तरीका औषधीय पौधों का उपयोग कर फिर पारंपरिक औषधियाँ बनोजू। पारंपरिक औषधियों उत्पादनों के लिए शुद्ध कच्चे मालक निरंतर आपूर्ति आवश्यक छू, जो औषधीय पौधों ठुल पैमाने पर खेतकरण एक संभावना बनने लग रहे। जंगलों में औषधीय फसलों का भंडार प्रचुर मात्रा में छू, लेकिन मानवीय दबाव के कारण वन क्षेत्रों में तेजी बटी गिरावट उणक वजह भंडार तेजी कम होने लग रही। यगलीजी ज्यादा कच्चा माल प्राप्त करने का एकमात्र तरीक छू कृषि भूमि में औषधीय फसलों खेतकरण। भारत में किसानों के लिए औषधीय फसलों व्यवसायिक खेत सबसे लाभदायक कृषि व्यवसायों में एक छू। श्रोताओ, हल्दी इलायची धनी जीर लौंग काई मिर्च चंदन दालचीनी एलोवेरा तो तमाम तरीका जो आयुर्वेदिक आजक वक़्त में हमारे पास जो जड़ी बूटियों तौर पर हम इनका इस्तेमाल करनु, तो कुछ जड़ी बूटियों जिनका आमतौर पर रक्त शोधक रूप में जानी जा इनकल हम आजक वक़्त में अपन खेत पैत में शामिल करना चाहें और एक भल आर्थिक लाभ कमाने के लिए हमको निश्चित तौर पर यो जो जदुगला हमारे पास होने वाल इस्तेमाल होने वाल चाहे वो मसालों में हो या चाहे अन्य और चीज़ों में

तो हमके अपन कोण मतलब यही छु कि हमके अपन खेत पैत में औषधीय फसलों का अगर निरंतर हम प्रयोग करी जाओ या एक व्यवसायिक खेत करी जाओ तो निश्चित तौर पर यह फायदा हमके उन्हीं वाल बखत में हासिल होगा।

श्रोताओं, आप सुनन लागराचा दीवान कनवाल और उनार दगुड़ुंग स्वर में यो लोकगीत और यही लोकगीतक दगड़ आजक किसानवाणी कार्यक्रम हमर इलाकाय संपन्न हूँ। आपो दगा भो एक नई अंक में फिर भेंट होइल। हमार यो कार्यक्रम प्रायोजक छी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। एल आज्ञा दियो, नमस्कार।

अभी किसान भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम किसान वाणी। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:30 होने वाले हैं। अब कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार हमारे

0: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बठे कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचार नौकदगढ़ में ममता पांडे। पहली मुख्य समाचार। उत्तराखंड मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी देहरादून में निधन। राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दगड़ कई नेताओं शोक व्यक्त करो। चार धाम यात्रा के लिए भी श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह। एक महणक तीर्थ यात्रा में एल जाने लगभग 16 लाख श्रद्धालुओं करे दर्शन। बागेश्वर में उद्यान विभागल कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करो। किसानों के सूक्ष्म सिंचाई और आधुनिक बागवानी तकनीकों की दी गई जानकारी। और राज्य में गर्मी का असर बढ़ो। मौसम विभाग हरिद्वार व देहरादून नगदगढ़ उत्तरकाशी आसपास तक जगन में 21 मई जाने लू चलनक संभावना जताई। और अब समाचार विस्तारल। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री और उत्तराखंड पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी आज देहरादून में निधन है गयो। वो 92 साल छी और पछिल कुछ वक्त बठे बीमार ले रुची। उनर इलाज देहरादून एक निजी अस्पताल में चलनो छी। मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी भारतीय सेना में लंब वक्त जाने सेवा देने के बाद राजनीति में आईन और अपन साफ सुथरी छवि, ईमानदार प्रशासन और सुशासनक लिजी पछाणी गईन। उनल उत्तराखंड खंडक मुख्यमंत्री के रूप में द्वि कार्यकाल संभालीन और केंद्र सरकार में सड़क परिवहन व राज्य मंत्री रूप में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिक दगड़ अनेक जानेनल उनर निधन पर शोक जताए। प्रधानमंत्री को कि सशस्त्र बलों बठे लीबे राजनीतिक जीवन जाने मेजर जनरल खंडूरी की योगदान हमेशा याद रोल और देश में जुड़ावक लीजिए उनर प्रयास प्रेरणादायी ले छी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल को मेजर जनरल खंडूरी जीवन राष्ट्र सेवा, अनुशासन और जनहितक प्रति समर्पणक उदाहरण छी। उनल को की उत्तराखंड विकास, सुशासन और पारदर्शी कार्यशैली के लिए उनर योगदान सदा याद करी जाल। पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी अंतिम संस्कार भोल राजकीय सम्मानक दगड़ संपन्न हुल। यो मौक पर राज्य सरकार बुधवार के सार्वजनिक अवकाश घोषित करो। शासन द्वारा जारी आदेशक अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री खंडूरी के निधन पर प्रदेश में आज बैठे 21 मई जाने 3 दिवसक राजकीय शोक घोषित करी गयो। यो बीच सपे सरकारी कार्यालयों में राष्ट्रीय झंडा आडू झुकी रोल और क्वेले प्रकारक राजकीय मनोरंजन कार्य नी करी जाल। राज्य में चार धाम यात्रा सुचारू रूप जारी छू। आस्थाक यो पावन यात्रा के शुरू भई आज एक महण है गयो और तीर्थ यात्रा के प्रति श्रद्धालु में जबरदस्त उत्साह देखने निजी मिलनो। पछिल साल उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री और गंगोत्री धामक कपाट खुलनक दगाड़ ही चार धाम यात्रा का शुभारंभ भ्यूज। खराब मौसम होने के शुरुआती दौर में यात्रा की रफ्तार थोड़ी धीमी रहे, लेकिन अब यात्रा रफ्तार पकड़ हाली। एल जाने लगभग 16 लाख श्रद्धालुओं चारों धामों के दर्शन और पूजपाठ करी। सपन है ज्यादा तीर्थयात्री केदारनाथ पूजीन और जहाँ दर्शन करने वाले शिव भक्तों की संख्या 6,50,000 है ज्यादा हैगी। यो बीच पर्यटन मंत्री सतपाल महाराजल श्रद्धालुओं थे तीर्थ यात्रा के दौरान बाटके और धाम के साफ सफाई बनाए रखने अपील करी।
1: श्रद्धालु भक्तगण चार धाम यात्रा में देवभूमि में पधारे हुए हैं और यह हमारा कर्तव्य है और सबसे बड़ी पूजा यह है कि हम देवभूमि को स्वच्छ रखें। इसलिए जो भी कूड़ा है वो कूड़ा दान में डालें और सारी धरती को पवित्र रखें। मेरा आपसे बहुत अनुरोध है कि कूड़ा कूड़े की जगह पड़े तो हमारी देवभूमि साफ रहेगी, सुरक्षित रहेगी और आने वाली पीढ़ी के लिए एक आदर्श चार धाम के रूप में स्थापित होगी।
0: वहीं चारधाम यात्रा दगाड़ अब सिख श्रद्धालुओं की आस्था प्रमुख केंद्र हेमकुंड साहिब यात्रा ले 23 मई बठे शुरू होने वाले। समुद्र तल बठे करीब 15,500 फीटक ऊंचाई पर स्थित हेमकुंड साहिब कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोली जाल। यात्रा के लिए जिला प्रशासन, सेना और हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा ट्रस्ट तैयारियों के अंतिम रूप दिन में जुटी छू। घांगरिया बठे हेमकुंड साहिब जाने करीब 4 किलोमीटर पैदल बाट में सेना जवानों

0: खराब हालातक बावजूद मस्त ह्यू पड़नक बाद ले ह्यू हटाबेर बाट के तैयार कर हालो। वहीं प्रशासन पानी बिजली दूर संचार और दूसर मूलभूत सुविधाएं के दुरुस्त करण में जुटी छू। जिलाधिकारी गौरव कुमार बताए कि यात्रा बाट में सफे जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करी जाने और कपाट खुलना है पहली सफे सुविधाएं शुरू कर दी जाली।
1: 23 तारीख को हेमकुंड साहिब के कपाट खुल रहे हैं, इसके लिए प्रशासन की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं। आर्मी के द्वारा पहले इसमें बर्फ काट के रास्ता बनाया गया है। जो वहाँ पर अप्रोच रोड है जो PMGSY की है, उनके द्वारा उसका सुधारीकरण कार्य लगातार किया जा रहा है। ट्रैक मार्ग पे PDD के द्वारा कार्य किया जा रहा है। साथ ही घोड़ा खच्चर की व्यवस्था को सुचारू करने के लिए इस वर्ष वहाँ पर ऑनलाइन टोकन की व्यवस्था भी प्रारंभ की गई है।
2: कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों की यो बुलेटिन आकाशवाणी देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करी जा रो। ताज़ा समाचारों लीजिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड के फॉलो कर सकता। यह कदगर न्यूज समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर ले उपलब्ध छी।
0: बागशर में उद्यान विभाग द्वारा राजकीय पौधालय में एक दिवसीय कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करी गयो। यह में करीब 100 किसानों भाग ले, जबकि छात्र छात्राओं के घुमड़क माध्यम आधुनिक बागवानी तकनीकों की जानकारी दी गई। कृषि विज्ञान केंद्र काफली गैरक प्रभारी वैज्ञानिक डॉक्टर राजकुमारल किसानों के सूक्ष्म सिंचाई, ड्रिप और स्प्रिंकलर जस तकनीकों का फैद रख रखाव की जानकारी ले दी। विशेषज्ञों मौसमी सागों में रोग नियंत्रक, जैविक उपाय और संतुलित पोषण पर ले जानकारी दी। विद्यार्थियों के पॉली हाउस, कटिंग, ड्राफ्टिंग, बर्डिंग और पौध संवर्धनों की विधियों अवगत कराई गयो। और जिला उद्यान अधिकारी हरीश आर्याल बताए कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के भीतर किसानों के सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली लगून पर अनुदान ले दी जानो और उनको की विभाग किसानों के आधुनिक तकनीकियों थे जोड़ने के लिए लगातार प्रयास करना।
3: काश्तकारों को यहाँ पर जो है निश्चित रूप से बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, क्योंकि जैसे प्रधानमंत्री की सिंचाई योजना है, इसका उपयोग अगर काश्तकार करते हैं तो इसमें पानी की बचत होती है, साथ साथ श्रम की भी बचत होती है, क्योंकि हमें जो है प्रत्येक पौधे में या प्रत्येक खेत में हमें जाने की जरूरत नहीं है। नई सिंचाई अपनाप हो जाती है और काश्तकार के समय की काफी बचत।
0: प्रदेश में गर्म असर लगातार बढ़ते जानो। मौसम विभाग हरिद्वार, देहरादून और उत्तरकाशी के आसपास तक जगहों में 21 मई जाने कह लू चढ़क अंदाज जताई। यो बीच सोमवार के रुड़की प्रदेशक सपन है गर्म जागरियो, जहां अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज करी गयो। राजधानी देहरादून में ले आजक अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस आसपास दर्ज करी गयो। मौसम विभाग अनुसार अघिन द्वी है तीन दिन में अधिकतम तापमान में 1-3 डिग्री सेल्सियस जाने बढ़ोतरी है सकम। मैदानी जिलों में मौसम शुष्क रोल और मौसम में कुछ गर्म दिखने के लिए मिलोल। वहीं उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागशर, पिथौरागढ़ जिलों में कह द्योपरण घोड़ाट मोड़ा तक डगर बर्फ पड़ने संभावना ले जताई छू और कह गर्म हौ चलन और चाल चमकने की संभावना ले छू। देहरादूनक सरकारी अस्पतालों में एंटी रेबीज वैक्सीन की कमी हुणक परेशानी हुणे तैक लीजी राहत खबर छू कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा बताए कि पछिल कुछ लंब वक्त बैठे वैक्सीनक समस्या अब दूर हुण लग रहे। श्री शर्मा के अनुसार विभाग स्थानीय खरीदक माध्यमल CHC और PHC में लगातार वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ाई छू, जबकि राजकीय और जिला अस्पतालों में महानिदेशालय स्तर पर सप्लाई प्रभावित हुणक कारण परेशानी होने छी। निजी विक्रेताओं के पास ले स्टॉक कम हुणक कारण समस्या बढ़ गई छी। उनल बताए कि पछिल हफ्ते महानिदेशालय बैठे करीब 1000 एंटी रेबीज वैक्सीन मिली, दगड़े पुराण बेचण वाले ने नियमित वितरण शुरू कर हालो।
4: जहां तक हम अपनी CHC PHC की बात करें तो हमारे स्तर से लगातार सप्लाई वहां पे की जाती रही और ऐसी कहीं कोई क्राइसिस ऐसी नहीं आ पाई कि किसी को इंजेक्शन ना मिला हो। जहां तक SGH और DH की बात है तो वहां से सीधे जो है वो क्योंकि DD स्तर से वहां पे सप्लाई होती है तो वहां पे थोड़ा समस्या थी। कुछ लोगों ने अपने स्तर से खरीदने की कोशिश भी, ये समस्या जो थी इसमें प्राइवेट अगर हम किसी से खरीदना चाह रहे थे तो वहाँ भी सप्लाई नियमित रूप से नहीं मिल पा रही थी और जो हमारे DG स्तर से वो सप्लाई भी जो है हमें वहाँ से नियमित रूप से नहीं मिल पा रही थी। लेकिन अभी लास्ट वीक की DG स्तर से सप्लाई शुरू हो गई है और अभी लगभग हमें 1000 के आसपास जो है वहाँ DG स्तर से भी हमें जो ARV मिल गए हैं और जो हमारे जो वेंडर जो पहले सप्लाई नहीं कर पा रहे थे वो भी अब रेगुलर हमें सप्लाई वो कर रहे हैं।
0: पिथौरगढ़ में नंदा देवी ईस्ट ट्रैकिंग और मिलम ग्लेशियर अभियानक लीजिए चयनित 26 सदस्यीय छात्र छात्राओं को दल जिलाधिकारी आशीष कुमार भटगाईल हरी झंडी

0: संख्या भी रवाना करो। यो मौक पर जिलाधिकारी को की पिथौरगढ़ जिले साहसिक पर्यटन की अपार संभावना भरी छू। उनल को की यस प्रकारक ट्रैकिंग अभियान युवाओं में साहस, अनुशासन, आत्मविश्वास और सामूहिक भावनाओं को विकास करनन। और आखिर में मुख्य समाचार एक बार आज। उत्तराखंड पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी को देहरादून में निधन। राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दगड़ अनेक नेताओं शोक व्यक्त करो। चारधाम यात्रा के लिए भी श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह। एक महीनक यात्रा में एल जाने लगभग 16 लाख श्रद्धालुओं करीन दर्शन। बागेश्वर में उद्यान विभागल कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करो। किसानों के सूक्ष्म सिंचाई और आधुनिक बागवानी की तकनीकों की दी गई जानकारी। और राज्य में गर्मी का असर बढ़ो। मौसम विभागल हरिद्वार और देहरादून दगाड़ उत्तरकाशी आसपास तक जगन में 21 मई जाने लू चलने की संभावना जते। यह कदगढ़ ही कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों को यो अंक समाप्त हूँ। नमस्कार।
1: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए पेश है फिल्म संगीत।

कार्यक्रम का पहला गीत अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में कश्मीर की गली फिल्म से, एसएच बिहारी के बोल थे और ओपी नैयर का संगीत।

0: पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: लीजिए अब पेश है किशोर कुमार की आवाज में कलाकार फिल्म का गीत। बप्पी लहरी के संगीत निर्देशन में इस गीत की रचना की है इंदिवर ने।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गीत था काला बाजार फिल्म से। शैलेंद्र के बोल थे सचिन देव बर्मन का संगीत। आइए फिल्म संगीत कार्यक्रम के समापन में सुनते हैं SH बिहारी का लिखा गीत OP नैयर के संगीत निर्देशन में ये रात फिर ना आएगी फिल्म से। गायक कलाकार हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोंसले।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए, प्रस्तुत है मिले जुले गीतों और गजलों का कार्यक्रम सबरस। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं बशीर बद्र के कलाम के साथ, फनकार हैं जगजीत सिंह।
1: मुझे

मुन्नी बेगम की गाई इसी गजल के साथ हमारा आज का सबरस कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:30 होने वाले हैं। अब अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

खबर सब कुछ अधिक डिटेल के साथ। तो शुरू करते हैं खेल की हर बात स्पोर्ट्स कैन के साथ। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच और 3 एकदिवसीय मुकाबलों की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम का ऐलान। शुभमन गिल के हाथों में टीम की कमान। आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मैच जारी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बाद सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस प्ले ऑफ में। मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन सुपर 500 टूर्नामेंट आज से शुरू हुआ। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंदा सुपर शतरंज क्लासिक के 5वें दौर में ड्रॉ खेलकर आगे बढ़े। और भारत की अंडर 18 पुरुष हॉकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 6-3 से हराकर श्रृंखला में 1-1 से बराबरी की।

नमस्कार, मैं हूं शक्ति सिंह और स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। हम एक बार फिर मौजूद हैं नए क्लेवर, नए रंग और नए अंदाज के साथ, जहां हमारे साथ होगा हर मैच का ताजा अपडेट, हर मैदान का हाल और हर खिलाड़ी की

0: तो आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं और हमारे पास सबसे पहले आज जो खबर है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच और 3 एकदिवसीय मुकाबलों की श्रृंखला के लिए आज भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। दोनों ही फॉर्मेट में टीम इंडिया की कमान शुभमन गिल के हाथों में होगी, जबकि टेस्ट में केएल राहुल और एकदिवसीय फॉर्मेट में श्रेयस अय्यर भारतीय टीम के उपकप्तान होंगे। अधिक ब्यौरे के साथ हमारी सहयोगी।
1: दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा को एक दिवसीय टीम में शामिल किया गया है, हालांकि जसप्रीत बुमराह इस टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं होंगे। अगर टेस्ट टीम की बात की जाए तो युवा यशस्वी जायसवाल को टीम में शामिल किया गया है। विकेट कीपिंग का जिम्मा ऋषभ पंत के कंधों पर होगा। साई सुदर्शन, देवदत्त पड्डिकल, वॉशिंगटन सुंदर, नीतीश राणा और मोहम्मद सिराज जैसे खिलाड़ियों के साथ एम सुथार, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बरार और हर्ष दुबे को इस टीम में स्थान मिला है। एक दिवसीय टीम की बात करें तो रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या को श्रृंखला में मौका दिया गया है, लेकिन उनका खेलना फिटनेस के आधार पर तय होगा। अनुभवी खिलाड़ी विराट कोहली भी एक बार फिर नीली जर्सी में नजर आएंगे। ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, अर्शदीप सिंह, वॉशिंगटन सुंदर भी इस सीरीज का हिस्सा है। मानव सुथार, गुरनूर बरार और हर्ष दुबे वो खिलाड़ी हैं जिन्हें पहली बार भारतीय टीम में शामिल किया गया है। श्रृंखला की शुरुआत 6 जून को न्यू चंडीगढ़ में भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच से होगी। इसके बाद 14, 17 और 20 जून को 3 एक दिवसीय मैच खेले जाएंगे। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स कैन।
0: तो आईपीएल के इस रोमांच के बाद भारतीय टीम फिर क्रिकेट के मैदान में उतरेगी सफेद जर्सी और नीली जर्सी में, और सबकी नजरें स्वाभाविक हैं कि रोहित शर्मा और विराट कोहली की जोड़ी को देखने के लिए होंगी, और फैंस की भी यही दुआ होगी कि रोहित शर्मा जल्दी फिट हों और नीली जर्सी में मैदान पे चौके छक्कों की बारिश करते हुए नजर आएं। और अब रुख करते हैं आईपीएल क्रिकेट का, जहां जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच इस समय मैच खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक लखनऊ सुपर जायंट्स ने 11 ओवर में एक विकेट खोकर 137 रन बना लिए थे। इससे पहले राजस्थान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। अगर अंक तालिका की बात की जाए तो राजस्थान 5वें स्थान पर है और वो चाहेगी कि इस मैच को जल्द से जल्द जीता जाए और किसी तरह प्लेऑफ की जो दौड़ है जिसमें एक ही स्थान बचा हुआ है उसमें अपनी दावेदारी कुछ और मजबूत की जाए। दूसरी तरफ लखनऊ है जो इस प्रतियोगिता के प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है, तो स्वाभाविक है कि चाहेगी कि जाते जाते कुछ अच्छी विदाइयां और कुछ अच्छी मेमोरीज लेके आगे बढ़े अच्छे आने वाले सीजन के लिए। इससे पहले कल खेले गए मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर प्लेऑफ में प्रवेश कर लिया। सुनते हैं चेन्नई में खेले गए इस मुकाबले का पूरा हाल।
2: आईपीएल 2026 को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बाद अपनी दो और प्लेऑफ की टीमें मिल गई हैं। कल चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद ने एक रोमांचक मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर खुद तो प्लेऑफ में अपना स्थान पक्का किया, साथ ही गुजरात टाइटंस का भी प्लेऑफ में स्थान फिक्स कर दिया। और इस हार के साथ ही चेन्नई की प्लेऑफ में पहुंचने की संभावनाएं और भी सीमित हो गई हैं। मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 180 रन बनाए, जिसमें संजू सैमसन के 27, शिवम दुबे के 26, कार्तिक शर्मा के 32 और डेवाल्ड ब्रेविस के 44 रन का योगदान शामिल रहा। हैदराबाद की ओर से कप्तान पैट कमिंस ने 3 और साकिब हुसैन ने 2 विकेट लिए। 181 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी सनराइजर्स हैदराबाद के लिए कल ईशान किशन मैच के हीरो बनकर उभरे, जिन्होंने 47 गेंद में 70 रन की पारी खेली। किशन का बखूबी साथ हेनरिक क्लासन ने दिया, जिन्होंने 26 गेंद में 47 रन की पारी खेली, जिसकी बदौलत हैदराबाद ने 19वें ओवर में 5 विकेट खोकर ये लक्ष्य हासिल कर लिया। ईशान किशन को शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रशांत कुमार, स्पोर्ट्स कैन।

0: कल जब हमने इस कार्यक्रम में चर्चा की थी तो हमारे सामने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु एकमात्र टीम थी जो प्लेऑफ में पहुंची, और जब कल का मैच खत्म हुआ चेपॉक स्टेडियम में तो एसआरएच खुद तो गई और अपने साथ ही गुजरात को भी प्लेऑफ में लेके चली गई है। अब स्थिति यह है कि प्लेऑफ के लिए इस गाड़ी में 4 में से 3 सीटें भर चुकी हैं, एक स्थान अभी भी खाली है जिसके लिए दावेदारों की संख्या बहुत ज़्यादा है, जहाँ पंजाब है जो अंक तालिका में 4थे स्थान पर है, राजस्थान रॉयल्स 5वें नंबर पर है, चेन्नई और दबे पांव से दिल्ली और कलकत्ता भी अभी उम्मीद और समीकरण बैठा रहे हैं कि किस तरह इस गाड़ी की 4थी सीट पे जगह बना करके अहमदाबाद तक का सफर तय किया जाए। और अब क्रिकेट के बाद रुख करते हैं बैडमिंटन कोर्ट का, जहां मलेशिया मास्टर्स सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट का आगाज आज से हो गया है, जहां कुआलालंपुर में भारतीय खिलाड़ियों ने मिले जुले परिणामों के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। तो सुनते हैं आज खेले गए मुकाबलों का हाल।
1: महिला सिंगल्स के क्वालिफायर मुकाबले में अश्मिता चालिहा ने चीनी ताइपे की पा युपो को 21-23, 21-16, 21-16 से हराकर मुख्य ड्रॉ में प्रवेश किया। वहीं आकर्षी कश्यप को दक्षिण कोरिया की पार्का उन से हार का सामना करना पड़ा, जबकि मिक्स डबल्स के क्वालिफायर मुकाबले में एन सिक्की रेड्डी और राधिका शर्मा की जोड़ी ने मलेशिया के दातू अनिफ इसाक दातू असरहा और क्लारिसा सेन को 21-15, 21-17 से रोमांचक मुकाबले में शिकस्त दी। पुरुष डबल्स में हरिहरन अमसा करुणन और एम आर अर्जुन की जोड़ी ने राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में फ्रांस के क्रिस्टो पोपोव और टूमा जूनियर पोपोव को 21-19, 21-15 से मात देकर टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। वहीं महिला डबल्स में कनाडा की क्रिस्टल लाई और जैकी डेंट ने अश्विनी भट्ट और शिखा गौतम की जोड़ी को परास्त करते हुए प्रतियोगिता में उनका सफर समाप्त कर दिया। वैष्णवी स्पोर्ट्स कैन।
0: तो प्रतियोगिता का औपचारिक आगाज आज से हो गया है और कई क्वालिफायर्स खेले गए, और जो भारत के लिए सबसे अच्छा नतीजा रहा वो ये रहा कि भारतीय पुरुष डबल्स जोड़ी अब प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत को कल भी कई अहम मुकाबले खेलने हैं, कई भारतीय स्टार खिलाड़ी कल कोर्ट पे उतरेंगे और इन खिलाड़ियों की जानकारी और अपडेट के साथ हमारे साथ मौजूद हैं सहयोगी विशेष। विशेष ये बताइए कि कल भारत के लिए नज़रें जो हैं किन खिलाड़ियों पर होने वाली हैं, खासकर सिंगल्स में।
2: जी शक्ति, कल कई भारतीय स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी अपने अभियान की शुरुआत करते नजर आएंगे। इनमें पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, एचएस प्रणॉय, थरुण मनेपल्ली और किरण जॉर्ज पर नजरें होंगी। महिलाओं के सिंगल्स में कई युवा खिलाड़ी भारत के लिए चुनौती रखेंगे। तन्वी शर्मा, अनमोल खरब, देविका सिहाग तथा ईशा रानी बरुआ, अस्मिता चालिहा, मानविका बंसोड़ और अन्य भारतीय खिलाड़ी से काफी उम्मीद होंगी।
0: जी बिल्कुल, अस्मिता ने आज क्वालिफायर्स के जरिए पहले राउंड में प्रवेश किया है। सिंगल्स का हाल रहा, डबल्स में कल भारत को अपने किन खिलाड़ियों से सबसे अधिक उम्मीदें होंगी?
2: देखिए, डबल्स में महिलाओं में पांडा बहनें अपना दमखम दिखाएंगी, वहीं मिक्स डबल्स में ऋत्विका, शिवानी गड्डे रोहन कपूर के साथ खेलती नजर आएंगी, जबकि एक नई जोड़ी भारत के लिए है जिसमें अशित सूर्या और अमृता प्रथमेश अपनी चुनौती पेश करेंगे।
0: जी बिल्कुल, तो कहा जा सकता है कि कई युवा खिलाड़ी जो हैं यहाँ पे भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, खासकर पांडा बहनें काफ़ी संतुलन के साथ जो है उतरती हैं और एक बहुत अच्छा तालमेल दिखाई देता है, जहाँ पे श्वेतपर्णा और रूपपर्णा पांडा जब भी कभी अपने मुकाबले खेलती हैं। और अब बैडमिंटन के बाद बात करते हैं शतरंज के कुछ दावपेचों की, जहाँ भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंदा ने सुपर शतरंज क्लासिक के 5वें दौर में अमरीकी वेस्ली सॉ के साथ ड्रॉ खेला। इसके साथ ही जर्मनी के विंसेंट कीमर ने अपने आधे अंक की बढ़त बरकरार रखी है, वह 3.5 अंकों के साथ पहले स्थान पर हैं। कीमर के बाद प्रज्ञानानंदा और नीदरलैंड के अनीश गिरी दूसरे स्थान पर हैं, जिन्होंने संयुक्त बढ़त बना रखी है। और अब चेस के बाद रुख करते हैं हॉकी के मैदान का, जहां भारत की अंडर-18 पुरुष हॉकी टीम ने कल ऑस्ट्रेलिया के साथ मुकाबले में 6-3 से एक शानदार जीत दर्ज करते हुए सीरीज को 1-1 की बराबरी पर ला दिया है, जबकि भारत की अंडर-18 महिला टीम को मेहमान टीम के खिलाफ 1-2 से हार का सामना करना पड़ा। ये महिला टीम की लगातार तीसरी हार रही। पुरुष और महिला टीमें दोनों ही कल अपने अपने सीरीज के जो हैं 4थे मुकाबले खेलने के लिए उतरेंगी। और अब रुख करते हैं फीफा का, जहां फीफा धीरे धीरे वापस, फीफा का बुखार जो है वो लोगों के ऊपर चढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और जैसे जैसे प्रतियोगिता करीब आ रही है फीफा विश्व कप की, कई टीमों ने अपने ऐलान करना शुरू कर दिए हैं खिलाड़ियों के। इसी कड़ी में फीफा विश्व कप 2026 में नेमार को ब्राज़ील की टीम में शामिल किया गया है। नेमार 2.5 साल बाद अपनी नेशनल टीम में वापसी कर रहे हैं। 34 वर्षीय खिलाड़ी की लोकप्रियता का कोई मतलब बैरियर नहीं है, शानदार खिलाड़ी जब भी उतरते हैं उनसे उम्मीदें होती हैं, दर्शकों को, उनके फैंस को, और अब तक

0: 28 मैच खेल चुके हैं जिसमें 79 गोल उन्होंने किए हैं, तो कोई दो राय नहीं कि एक बहुत शानदार खिलाड़ी वापसी करता हुआ फीफा जैसी बड़ी प्रतियोगिता में नजर आएगा। उधर प्रीमियर लीग फुटबॉल में आर्सेनल एफसी कल बर्नेल एफसी पर 1-0 की रोमांचक जीत दर्ज करते हुए अंक तालिका में ऊपर आ गया है। आर्सेनल के लिए मैच में एकमात्र गोल काई हैवर्ड्स ने किया। इंडियन ओपन सफरिंग टूर्नामेंट का आयोजन 29 से 31 मई तक मंगलुरु में होगा। ये प्रतियोगिता जापान में इस साल के आखिरी में होने वाले एशियाई खेलों की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि वहां पे पहुंचने से पहले आपको एक बड़ा मंच मिलेगा जहां पे आप अपनी प्रैक्टिस और अपनी पूरी तैयारियों को अंतिम जामा पहना सकते हैं, अंतिम रूप दे सकते हैं। इस प्रतियोगिता का आयोजन जो है भारतीय सफरिंग महासंघ SFI के तत्वाधान में किया जाएगा। और ISL की बात कर लेते हैं, जहां ISL फुटबॉल में आज नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने मोहम्मदन FC को 2-0 से हरा दिया। वहीं कल खेले गए मुकाबले में केरला ब्लास्टर्स FC ने गोवा FC को 2-1 से शिकस्त दी। भारत के पूर्व बल्लेबाज और दिग्गज क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर ने कहा है कि युवा खिलाड़ियों को भारत की जर्सी में खेलने के लिए त्याग करने होंगे, क्योंकि शॉर्टकट से कभी सफलता नहीं मिलती है। सचिन तेंदुलकर अहमदाबाद में SRT10 अल्टीवेल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के उद्घाटन समारोह में शामिल थे। इस दौरान उन्होंने बताया कि ये सेंटर देश में खेल संस्कृति बढ़ाने की दिशा में बड़ी भूमिका निभा रहा है।
1: SRT10 और अल्टावॉल एक पार्टनरशिप कर रहे हैं। स्पोर्ट्स सेंटर हमने इनॉग्रेट किया है आज, जहां पे बहुत अलग अलग स्पोर्ट्स है और फैसिलिटीज आर मैग्निफिसेंट। और द आइडिया इज टू ट्रांसफॉर्म इंडिया फ्रॉम अ स्पोर्ट्स लविंग नेशन टू स्पोर्ट्स प्लेइंग नेशन।
0: तो एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर सचिन ने कही कि भारत अब एक स्पोर्ट्स लविंग देश से एक स्पोर्ट्स प्लेइंग नेशन की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जहाँ पे सिर्फ खेल को देखना ही नहीं उसमें कैसे बढ़ सकते हैं उसके नतीजे भी हमें दिखने लगे हैं। कई खेल जहाँ भारत अब तक प्रतिभागिता नहीं करता था वहाँ बढ़ रहा है और लगातार अच्छे प्रदर्शन नजर आ रहे हैं। सचिन ने युवा पीढ़ी को सीख देते हुए ये भी कहा कि जरूरी नहीं है कि आप हर बार जब भी खेलने जाओ तो सफल हो जाओ, लेकिन हर बार आपको नई तैयारी के साथ जाना बहुत जरूरी है।
2: We want our children to be successful, पर उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी एंड अबव ऑल बच्चों को फ्रीडम देना पड़ेगा। हर बार आप खेलने जाओगे तो सक्सेसफुल नहीं रहोगे, मगर हर बार तैयारी करके जा सकते हो। ओके, सक्सेस इज नेवर गारंटीड, बट योर प्रेपरेशन एंड योर डिसिप्लिन, फोकस, ये सारी चीजें, जैसे कि हम कहते हैं कि टू टिक ऑल दोस बॉक्सेस, वो तुम्हारे हाथ में है।
0: जी बिल्कुल, और इस कार्यक्रम में ICC के अध्यक्ष जय शाह और गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी भी मौजूद रहे, और ये शानदार सेंटर अब युवाओं को अपनी सेवा देने के लिए तैयार है। और सचिन की बात की तो बात करते हैं उनके एक फैन की भी, कि साहिल लुधियानवी का शेर है कि हजार बर्क गिरे आंधियां उठें वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। जम्मू कश्मीर पैरा क्रिकेट टीम के कप्तान आमिर हुसैन लोन की कहानी पर जो अब सिनेमा के बड़े पर्दे पर उतरने जा रही है। बिना हाथों के अपना भविष्य लिखने वाले इस खिलाड़ी की फिल्म अन आर्म्ड शोल्डर की घोषणा कांस फिल्म फेस्टिवल में कर दी गई है। अपने सामने खड़ी हर चुनौती को अपने मजबूत इरादों से बौना साबित कर देने वाला एक खिलाड़ी आज लाखों युवाओं की प्रेरणा है। आइए सुनते हैं अपनी फिल्म की घोषणा के बाद इस खिलाड़ी ने क्या कहा और क्या अपने अनुभव साझा किए।
3: मैं बहुत मुश्किलात उठाने पड़े जब 8 साल की उम्र में एक्सीडेंट हुआ, लेकिन उसके बाद भी मैं डटा रहा, अपने आप को मजबूत किया, और कभी मैं ये नहीं सोचा था मैं यहाँ तक इन मुकाम पर पहुँचूँ, लेकिन ये कभी मैंने जहन में नहीं सोचा था कि आज इस मुकाम पर हूँ। लेकिन इसके पीछे बहुत स्ट्रगल है और वो मेहनत है, वो सपना है जो मैंने अपने जहन में लेकर ये किया कि मैं एक दिन, ऐसा भी एक दिन आएगा जब मैं अपने देश को रिप्रेजेंट करूँ, मैं क्रिकेटर बनूँ। जब मैंने सचिन सर ने मेरी जर्सी पहनी और सचिन सर ने मुझे मतलब इतने तारीफ की, तो मैं वो बयान कैसे करूं। और इस फिल्म
0: जी बिल्कुल एक बहुत बड़ा लम्हा था उनके लिए। और श्रोताओं, समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय और अपने सुझाव हमें हमारी ईमेल sportscan.air@gmail.com sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमको अनुमति दीजिए, नमस्कार।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। भारत और नॉर्डिक देशों ने आपसी संबंधों को हरित प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ नॉर्वे के ओस्लो में

0: तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अगले महीने होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने रेबीज से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में भीषण गर्मी की चेतावनी दी। दक्षिण क्षेत्र में तेज वर्षा की आशंका। और शुभमन गिल अफगानिस्तान के साथ टेस्ट और एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन के बाद श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: श्री मोदी ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है।
1: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्नत भागीदारी के जरिए प्रत्येक नॉर्डिक देश की विशेषज्ञताओं का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बीच अनुसंधान, कौशल विकास और प्रतिभा के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं, स्टार्टअप तंत्र के स्तर पर सहयोग मजबूत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं।
1: वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर सहमत है कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक भी है और अर्जेंट भी है, और टेररिज्म पर भी हमारा क्लियर और यूनाइटेड स्टैंड है। No compromise, no double standard.
0: प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण के लिए इटली रवाना हो गए हैं। वे देर रात रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। इटली में भारत के राजदूत वाणी सरराजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा आदान प्रदान, नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: सुश्री राव ने बताया कि यह यात्रा समुद्री सुरक्षा, मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं, व्यापार साझेदारियों और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ठोस परिणाम देने का लक्ष्य रखती है और इस दौरान कुछ महत्वपूर्ण समझौतों की घोषणा होने की उम्मीद है। इटली में भारतीय समुदाय के बारे में बात करते हुए भारत की राजदूत वाणी सरराजू राव ने कहा कि भारतीय प्रवासी समुदाय ने डेयरी और कृषि सहित कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय की गतिशीलता और कल्याण से जुड़े मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान चर्चा हो सकती है। सुपर्णा भाटिया, रोम से।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। रक्षा मंत्री दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू बेक के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता रक्षा और सहयोग की समीक्षा करेंगे तथा द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नई पहलों की तलाश करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। श्री प्रधान ने कहा कि दोबारा परीक्षा सख्त सुरक्षा नियमों के अंतर्गत सुरक्षित, बिना किसी रुकावट के और पूरी तरह से पुख्ता तरीके से आयोजित की जानी चाहिए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्थित रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस कोचिंग सेंटर में एक और तलाश अभियान चलाकर कथित नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि एक और दिन बढ़ा दी है। उम्मीदवार अब 23 मई तक आवेदन जमा करा सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग देश का सबसे विकसित जनजातीय संभाग बन जाएगा। बस्तर में श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य वर्ष 2031 तक बस्तर के लोगों के औसत आमदनी में 6 गुना वृद्धि करना है। उन्होंने कहा कि बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर अगले 5 सालों के लिए इसके विकास से संबंधित एक वैज्ञानिक प्रारूप तैयार किया है।
2: 19 मई 2026 की ये तिथि है कि जहां से नक्सल प्रभावित क्षेत्र में संपूर्ण विकास की परिकल्पना को लॉन्च किया जा रहा है। बस्तर के 7 जिले को नक्सलवाद से मुक्त कराने के लिए भारत सरकार के द्वारा यहां पर करीब करीब 200 सुरक्षा कैंप बनाए।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने, भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और विकसित भारत की दिशा में देश की प्रगति के लिए उद्योग और सरकार के बीच सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में श्री गोयल ने ये बात कही।
3: हम दुनिया की भू राजनीतिक परिस्थितियों और उनसे जुड़े जोखिमों को तेज सुधारों के अवसर में बदलेंगे। खुद को अधिक मजबूत और लचीला बनाने की तैयारी करेंगे, अपनी सप्लाई चेन को और सशक्त करेंगे और दुनिया जो भी अवसर दे रही है तथा भारत जो अवसर दुनिया को प्रदान कर रहा है उसके पूरे लाभ उठाएंगे। उदाहरण के तौर पर वे 38 देश जो एक के बाद एक मुक्त व्यापार समझौते के ढांचे में शामिल हो रहे हैं।
1: वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत का लक्ष्य 2030-31 तक $350 अरब का कपड़ा बाजार बनाना है। इसमें $100 अरब का निर्यात शामिल होगा। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि टिकाऊ और प्राकृतिक फाइबर ही कपड़ा क्षेत्र के भविष्य को आगे बढ़ाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से उर्वरक प्राप्त करना दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है। ओडिशा के भुवनेश्वर में श्री चौहान ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद केंद्र सरकार किसानों के लिए पर्याप्त उर्वरक आपूर्ति सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को देखते हुए रेबी से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दे दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजी का दुष्कर्म मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में एक से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। इससे पहले इस मामले में सियालदह सत्र अदालत ने संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने आज फालता विधानसभा क्षेत्र में

होने वाले आगामी पुनर्मतदान से अपना नाम वापस लेने की घोषणा की है। भाजपा के नेतृत्व वाली नई सरकार के विशेष पैकेज की उन्होंने सराहना की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष नई दिल्ली में भारत की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। रूस ने बताया है कि श्री पुतिन 12 और 13 सितंबर को सम्मेलन में शामिल होंगे। एक साल के अंदर श्री पुतिन की ये दूसरी भारत यात्रा होगी। इससे पहले वो दिसंबर 2025 में भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली आए थे। देश के पूर्वोत्तर राज्यों में कारीगरों और बुनकरों के एक समूह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से आज राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अपनी प्रतिभा दर्शाने के लिए मंच प्रदान करने पर राष्ट्रपति का आभार व्यक्त किया। राष्ट्रपति ने कारीगरों और बुनकरों को सहायता देने की जरूरत पर बल दिया ताकि उनका हुनर अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके और वे आत्मनिर्भर बन सकें। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 114 अंक गिरकर 75,201 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 32 अंक लुढ़ककर 23,618 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 18 पैसे कमजोर होकर 96.53 रुपए के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ।
1: मौसम विभाग ने गुरुवार तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। कल पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली एनसीआर में भीषण लू की आशंका है। अगले 2 से 3 दिन के लिए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दक्षिण पश्चिम बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश या मराठवाड़ा और उड़ीसा में लू चलने की संभावना है। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि 21 मई तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल, माहे और लक्षद्वीप में तेज बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश, बिहार, गंगा के मैदानी, पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा में गरज के साथ तेज हवाओं का अनुमान है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच और 3 एकदिवसीय मैच की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। शुभमन गिल टेस्ट टीम के कप्तान और केएल राहुल को उपकप्तान बनाया गया है। शुभमन गिल एकदिवसीय टीम की कप्तानी करेंगे और श्रेयस अय्यर उपकप्तान होंगे। आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मैच जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक लखनऊ सुपर जायंट्स ने 16 ओवर में 2 विकेट पर 182 रन बना लिए हैं। राजस्थान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और नॉर्डिक देशों ने आपसी संबंधों को हरित प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ नॉर्वे के ओस्लो में 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अगले महीने होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने रेबी से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में भीषण गर्मी की चेतावनी दी, दक्षिण क्षेत्र में तेज वर्षा की आशंका। और शुभमन गिल अफगानिस्तान के साथ टेस्ट और एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी and I am Subhadra Ramachandran with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says investments from Nordic countries in India rose by 200% in the past decade, attends third India-Nordic summit in Oslo with counterparts

0: Norway, Sweden, Iceland, Finland and Denmark. Education Minister Dharmendra Pradhan reviews preparation for NEET UG re-examination to be held next month. Supreme Court allows euthanasia for rabid and dangerous stray dogs to protect human life. Russian President Vladimir Putin to attend New Delhi BRICS Summit in September this year. IMD warns of severe heatwave conditions in northern India, forecast heavy rainfall in southern region. In cricket, Shubman Gill to lead Indian squads in Test and ODI series against Afghanistan. India and the Nordic nations, comprising Norway, Sweden, Denmark, Finland and Iceland, have elevated their bilateral ties to a green technology and innovation strategic partnership. Mr. Modi made the announcement while addressing a joint press meet with leaders of Nordic nations after attending the third India-Nordic summit in Norwegian capital Oslo today.
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज को भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: Prime Minister Narendra Modi said investments from Nordic countries in India rose by 200% in the past decade.
1: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
0: Prime Minister Modi affirmed that the relations between India and the Nordic countries are set to usher in a new golden era with the recently concluded trade agreements, including trade and economic partnership and India-EU free trade deal. On terrorism, Mr. Modi said the two sides have a clear and united stand, no compromise, no double standards.
1: आज हम सब ने मिलकर ग्लोबल इश्यूज पर भी विचार साझा किए। वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर सहमत है कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक भी है और अर्जेंट भी है, और टेररिज्म पर भी हमारा क्लियर और यूनाइटेड स्टैंड है, नो कॉम्प्रोमाइज, नो डबल स्टैंडर्ड।
0: Speaking on the occasion, the prime ministers of Norway, Sweden, Iceland, Finland and Denmark reiterated their commitment to shared values of democracy, a rules-based global order and urgent reforms in multilateral institutions in today's changing world. Acknowledging India's global stature, they stressed the need for enhanced cooperation with New Delhi as countries sharing similar values, particularly to address the challenges of conflict and global disruptions. Prime Minister Modi has since left for Italy on the fifth and final leg of his five-nation tour after concluding his visits to Norway, Sweden, the Netherlands and UAE. Mr. Modi is set to arrive in Italy's capital, Rome, later tonight. We have more from our correspondent covering the Prime Minister's visit.
2: Talent and innovation exchange between India and Italy is expected to grow in the coming years. Speaking ahead of Prime Minister Narendra Modi's visit, which forms the final leg of his five-nation tour, Indian Ambassador Vani Sarraju Rao said the trip would provide an important opportunity to address issues related to the mobility and welfare of the Indian community. Ms. Rao noted that the Migration and Mobility Agreement signed in 2023 is already operational between the two countries. She expressed optimism that the movement of Indian students, currently around 5,000 in Italy, as well as academicians and researchers, is likely to increase in the near future. She further highlighted trade, defense, mobility, maritime security, and port

उदित नारायण के गाए और प्यार हो गया फिल्म के इस गीत के बाद लीजिए अब पेश है उदित नारायण और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में समीर का लिखा गीत। इस गीत को संगीत दिया है नदीम श्रवण ने और फिल्म का नाम है तुमसा नहीं देखा।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम इंद्रधनुष। आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। लीजिए पेश है फरमाइशी गजलों का साप्ताहिक कार्यक्रम महफिल।

आज के महफिल कार्यक्रम में हमारे सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपकी खिदमत में मैं हूँ पूजा। कीजिए स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार।

दिल के जज्बातों को बयां करती हैं गज़लें, दिल के जज्बातों को बयां करती हैं गज़लें, टूटे हुए दिलों को सुकून देती हैं गज़लें। कभी मोहब्बत की मिठास, कभी जुदाई का दर्द, कभी मोहब्बत की मिठास, कभी जुदाई का दर्द, हर एहसास को खूबसूरती से कहती हैं गज़लें। तो आइए आज के महफिल कार्यक्रम का आगाज़ करते हैं दिल के जज्बातों को बयां करती हरिहरन की गाई इब्राहिम अश्क की ये गज़ल। इस गज़ल को सुनने की ख्वाहिश की है छत्तीसगढ़ भाटापारा से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और जावेंद्र कुमार वर्मा ने।

मौसम तो बड़ा ही जालिम है, तूफान उठाता रहता है। कुछ लोग मगर इस हलचल को बदमस्त जवानी कह देंगे। समझे न जिसे तुम आँखों से, वो बात जुबानी कह देंगे। अभी आपने इब्राहिम अश्क की लिखी ये गज़ल सुनी हरिहरन की आवाज़ में। कार्यक्रम की अगली गज़ल को आवाज़ दी है जगजीत सिंह ने। सुनने के ख्वाहिशमंद हैं रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन।

जलती बुझती यादें लेकर जब मुझसे मिलती है शाम, अक्सर दिल की दीवारों पर लिख देता हूँ तेरा नाम। रात घटाएं जादू खुशबू जिसकी जुल्फों के पैगाम, दिल के वरख पर ढूंढ रहा हूँ उस सादा चेहरे का नाम। अभी आपने जगजीत सिंह की गाई ये गज़ल सुनी। कार्यक्रम की अगली पेशकश है इसरार अंसारी की गज़ल, फनकार हैं चंदन दास। इस गज़ल को सुनने की ख्वाहिश की है आप सभी ने। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा, नर्मदा पार्क मंगलवेड़ा महाराष्ट्र से मास्टर अलीम पटेल, मुजाहिद पटेल और नदीम पटेल, ऊपरकोट मोहल्ला चौखुनटी बुलंदशहर से हैं मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी और अबान अब्बासी। सबको दुश्मन बना लिया है मैंने, आपसे दिल लगा लिया है मैंने।

अरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता, कुंभार गली कोल गांव से पांडु चंदन, उषा चंदन, रानी चंदन, प्रतीक्षा चंदन, अभिषेक चंदन, सार्थक चंदन, प्रथमेश चंदन, संतोष चंदन और इनके परिवार के सभी सदस्य अब रूठे हुए हैं। जो हमसे वो हमको मनाने आएंगे, हालात बदलते रहते हैं, अपने भी जमाने आएंगे। मिताली सिंह।

लीजिए पेश है अश्क अम्बालवी का कलाम, गुलुकारा हैं मिताली सिंह। इस गज़ल को सुनने की ख्वाहिश की है आप सभी ने। गांव नथाना पंजाब से।

मिताली सिंह के बाद आइए आज की महफिल कार्यक्रम के समापन में आपको सुनवाते हैं गुलाम अली की गाई ये गज़ल। फरमाइश की है आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा और निवान शर्मा। ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल, शीला और गायत्री धनजे। इतनी मुद्दत बाद मिले हो, किन सोचों में गुम रहते हो? कौन सी बात है तुम में ऐसी, इतने अच्छे क्यों लगते हो?

अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी गजलों का साप्ताहिक कार्यक्रम महफिल। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बजने वाले हैं। अब अगला कार्यक्रम लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा।

श्रोताओं नमस्कार। कार्यक्रम खेल दर्पण के एक और अंक के साथ मैं चंदन सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे भेंट वार्ता, जिसका विषय होगा ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभाएं। इस विषय पर नन्हे सिंह से बातचीत करेंगे अशोक पांडे। साथ ही हम आपको सुनवाएंगे एथलेटिक्स कोच जगदीश द्विवेदी और संजीव श्रीवास्तव से आकांक्षा सिंह की बातचीत। सबसे पहले लीजिए सुनिए भेंट वार्ता, जिसका विषय है ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभाएं। इस विषय पर नन्हे सिंह से भेंट वार्ता कर रहे हैं अशोक पांडे।

0: श्रोताओं नमस्कार। आज के कार्यक्रम में हम बातचीत करेंगे खेलों में ग्रामीण क्षेत्र की जो प्रतिभाएं हैं उनके बारे में कि किस तरह से ग्रामीण पृष्ठभूमि के युवा आगे बढ़कर के खेलों में अपना दमखम दिखा रहे हैं, उसका परिचय दे रहे हैं और तमाम सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फलकों पर अपना और अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं। इस बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है एथलेटिक्स प्रशिक्षक नन्हे सिंह जी को। नन्हे सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी के स्टूडियो और इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद सर।
0: नन्हे सिंह जी, जैसे कि बातचीत का जो विषय है वो ग्रामीण क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं के ऊपर है
1: जी,
0: तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि जो भी खेल के बड़े आयोजन हैं या छोटे आयोजन हैं उनमें ग्रामीण क्षेत्र से जो युवा आ रहे हैं, जो लड़के आ रहे हैं,
1: जी,
0: जो लड़कियां आ रही हैं, उनका प्रतिनिधित्व करने का जो प्रतिशत है वो क्या है, उनके प्रतिनिधित्व का दर क्या है, किस अनुपात में वो आ रहे हैं
1: प्रतियोगिताओं में। ग्रामीण क्षेत्रों से जो हमारे खिलाड़ी विभिन्न खेलों में आते हैं वो ट्रेंड तो नहीं रहते हैं, रॉ मटेरियल रहते हैं, लेकिन उनके अंदर जो प्रतिभाएं रहती हैं वो अपने जौहर का जहूर आकर के दिखाते हैं। बिना किसी टेक्निक के वो इतने बढ़िया प्रदर्शन करते हैं अपने दमखम से, जो देख करके लोगों को ये लगता है कि ये लड़का या खिलाड़ी किसी कोच द्वारा, प्रशिक्षक द्वारा, किसी गुरु द्वारा ट्रेंड नहीं है, इसके अंदर ईश्वरीय देन है, ईश्वरीय शक्ति ऐसी है, इसके अंदर ऐसी प्रतिभा छिपी हुई है जिस प्रतिभा के बल पर खिलाड़ी अपने प्रदर्शन को, ग्रामीण अंचल का खिलाड़ी अपने प्रदर्शन को, जैसे हम लोग गाँव में ग्रामीण अंचल की प्रतियोगिताएं कराते हैं, जैसे ब्लॉक लेवल पर DOPRD इस तरह की प्रतियोगिताएं गाँव में जब होती हैं, जैसे सुदूर अंचलों में नवगढ़ प्रांतर की तरफ से अगर उधर जाते हैं उस एरिए में, जैसे मूसाखाण बंधा है, वहाँ भी लड़के अपना जो है ट्रैक नहीं है लेकिन उस ट्रैक में देखते हैं हम बाल्टी का पानी फेंक करके दौड़ते रहते हैं, कूदते रहते हैं, अखाड़ा खोद कर उसमें कूदते हैं, जैसे पोल वाल्ट है, बड़ा ही यह रिस्की गेम है, लेकिन पोल वाल्ट को क्या करते हैं, अखाड़ा खोद के एक बांस का पोल लेकर उसी पर गड्ढा बना के कूद के चढ़ते हैं। और इस प्रकार के लड़के जो ग्रामीण अंचलों से आते हैं उनकी प्रतिभा में निखार लाने के लिए जब वो शहर में आते हैं किसी गुणी के पास, किसी प्रशिक्षक के पास, तो उनकी प्रतिभाओं में निखार आता है। जैसे आप देख सकते हैं लकड़ाकड़ा, ये आदिवासी लड़का था, मैराथन में कुछ इस प्रकार के खिलाड़ी रहे हैं, जैसे हमारे पास ही हीरालाल लड़का था भदोही का, बिल्कुल रॉ मटेरियल था। इससे पहले जगदीश बिश्नोई जेवलिन थ्रो का लड़का था, मेरी पोस्टिंग उस समय राजस्थान में थी, गाँव का रहने वाला था, गंगानगर का रहने वाला था, और बोला कि गुरु जी किसी को सिलेक्ट कर लेंगे फर्स्ट तो हम ही आई, तो ये बड़ा ही हमको अच्छा लगा। और उस बच्चे को हमने बुलाया कि नहीं बेटा तुम आओ, आकर के उसको मैंने ट्रेनिंग देना शुरू किया, और वही लड़का सिडनी ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में भारतवर्ष की तरफ से प्रतिभाग किया और अपना प्रदर्शन वहां पर अच्छा किया।
0: कहने का मतलब ये है कि ऐसे क्षेत्र से जो युवा आ रहे हैं कहीं ना कहीं इसके पीछे एक सोच और काम करती है कि हमारे पास खोने को कुछ नहीं है, क्योंकि उनके पास ऐसा कुछ नहीं होता है जिसे वो खोएंगे, अगर वो एक कदम भी आगे बढ़े तो उन्हें कुछ न कुछ हासिल ही होगा, तो ऐसे में उनका जो जोश होता है काफी मजबूती से निखर करके आगे आता है कि हाँ मैं इस प्रतियोगिता में अपना पूरा दमखम का परिचय दूंगा और मैं ही जीतूंगा। जैसे आपने उदाहरण दिया उस जेवलिन थ्रोअर का कि उसने कहा कि प्रैक्टिस तो कितनी भी कोई कर ले लेकिन जीतूंगा मैं ही। तो जो ऐसे क्षेत्र हैं खास करके जहां पर इससे संबंधित जानकारी भी नहीं लोगों तक पहुंच पाती है कि नए नए कौन से ऐसे खेल आयोजन हैं या खेल की ऐसी कौन सी विधाएं हैं जिनमें हमें हाथ आजमाना चाहिए, जिसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, उन्हें तो कायदे से इसका भी ज्ञान नहीं होता है कि अगर हम दौड़ रहे हैं तो दौड़ भी कितने तरह की होती है, एथलेटिक्स में तमाम सारी विधाएं हैं, ट्रैक कितना होना चाहिए, कितनी चौड़ाई होनी चाहिए, कितनी देर में हमको पहुंचना है, नेशनल रिकॉर्ड क्या है, ऐसी तमाम सारी चीजें हैं जिसकी जानकारी उन्हें नहीं होती है
1: जी।
0: उसके बावजूद वो अपना पूरा दमखम लगा करके पूरी मेहनत करते हैं, तो ऐसे में आप लोग तो जाते हैं उन क्षेत्रों में, वो ग्रामीण क्षेत्र खास करके जो सुदूर इलाके हैं जहाँ बहुत सारी सुविधाएं नहीं है, खास करके खेलों को लेकर के जागरूकता नहीं है
1: जी।
0: तो कितनी मशक्कत करनी पड़ती है ऐसे क्षेत्र से जो खिलाड़ी है उनको लाने में और वापस उनको ट्रेन करने में।
1: हम लोग सुदूर ग्रामीण अंचलों में जब जाते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले उनके गार्जियन से मिलते हैं, बुजुर्गों से मिलते हैं, यहाँ तक कि एक बुजुर्ग ने कहा था कि उठा लो लंगोटा और दिखाने चलो कुछ, मनुज हो तो पौर उस अखाड़े की हो। ये बड़ी हमको अच्छी बात लगी। और सुदूर जंगलों में, नौगढ़ के जंगलों में भेड़ा फार्म के पास में, वहाँ पर एक स्पोर्ट्स हो रहा था, पुलिस खेल करा रहे थे लोग, पुलिस वाले वहाँ हमको बुलाए थे लोग, और उस नेक्स्ट लाइट बेल्ट से छोटी छोटी बच्ची आके एक दिन की इस माहौल को देख के दौड़ रहे हैं, कोई धोती पहने दौड़ रहा है, कोई नंगे पैर दौड़ रहा है, बिना किसी इक्विपमेंट्स के, बिना किसी साधन के, और इस प्रकार की दौड़ लड़के दौड़ रहे थे, हमें इतना अच्छा लगा।

0: जैसे परंपरागत खेल ग्रामीण अंचलों में वॉलीबॉल है, कबड्डी है, दौड़ है, एथलेटिक्स में से दौड़, आपने कहा कि उनको मालूम नहीं है, रेस है, जंप है, थ्रोज है, इन तमाम प्रकार की विधाएं हैं जिसमें वो ग्रामीण बच्चे जो जागरूक हैं, उनमें से जो कुछ पढ़ लिख के ऊपर आ गए हैं, वो हमसे, हम लोगों से संपर्क करके उन बच्चों को जानकारी देते हैं। डायरेक्ट जो लड़का हम लोगों के टच में है, उन बच्चों को हम लोग डायरेक्ट बताते हैं, और यह भी प्रयास करते हैं कि अगर इस बच्चे को कितना हम मदद कर सकते हैं, शहर में रख करके किसी से स्पॉन्सर भी कराते हैं, एक दो साल ट्रेनिंग के बाद यह प्रयास करते हैं कि यह लड़का खेल छात्रावास में आ जाए। यहाँ पर खेल छात्रावास जैसे भारतीय खेल प्राधिकरण का है और उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय का है, इन हॉस्टलों में हम लोग दाखिला दिलाते हैं उन गरीब बच्चों को, उन प्रतिभावान बच्चों को, कि आकर के अपने दमखम का, अपने प्रतिभा का प्रदर्शन वो बच्चे दिखा सके, जो भविष्य के आने वाले दिनों में दूरगामी परिणाम अच्छा दें और अपने जिला ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, देश ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर भारत के झंडे को फहराएं। बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं, जैसे हमारा लड़का एक यहाँ पर खिलाड़ी था राम सिंह, ये चोलापुर में बभियाओ गाँव का रहने वाला था और लंदन ओलंपिक में 42 किलोमीटर 195 मीटर की दौड़ होती है, उस रेस में भारतीय चुनौती को उसने पेश किया और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। इसी तरह से गुलाबचंद चिरेगांव का रहने वाला लड़का है, संतोष कुमारो भी चिरेगांव का ही है, ये सब बच्चे अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर भी अपने प्रतिभा का प्रदर्शन दिखाए हैं। जैसे गुलाब हमारे यहाँ यूपी कॉलेज में रह करके वो ट्रेनिंग करते थे और वही खिलाड़ी हमारा गाँव का रहने वाला, यहाँ रहते हुए उन्होंने नेशनल में फर्स्ट किया और अर्जुन पुरस्कार, जो खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, वह अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित हुआ। बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं गांव के जो अर्जुन पुरस्कार, बहुत से ऐसे खिलाड़ी खेलने के बाद कोच बने हैं और कोच में भी इतना अच्छा प्रदर्शन किए हैं कि द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी सम्मानित हुए हैं। जैसे हम लोग गांव के हैं रहने वाले, बेसिकली मैं गांव का निवासी हूँ, चंदौली जिले में धानापुर एक जगह है, धानापुर में गांव है डबरिया, उस गांव का मैं मूल रूप से निवासी हूँ। हम लोग भी जब गांव में स्पोर्ट्स करते थे तो ग्राउंड नहीं था, सड़क पर, पगडंडी पर ऐसे छर्री हुआ करती थी, स्पाइक भी नहीं थी, नंगे पैर दौड़ते थे, पैर छिल जाते थे, लेकिन मन में एक प्रबल इच्छा शक्ति थी कि नहीं, हमें खेल करना है, हमें जीतना है, हम खेल के माध्यम से अपने करियर को बनाना है और अपने साथ साथ और लोगों को जोड़ना है कि भविष्य के आने वाले दिनों में हम भी एक दिन भारत के तिरंगे को फहराएंगे और भारतीय धुन को बजाएंगे, भारत के गौरव को बढ़ाएंगे। ये ऐसी अंदर से एक भावना थी कि नहीं, मैं करूं, और मैं खिलाड़ियों को, बच्चों को गाँव में जा करके यह बताता रहता हूं कि नहीं, ये करो। जैसे एक लड़की आरती है, यही बगल पचराव गांव की रहने वाली है और वर्ल्ड स्कूल गेम में उसने भारत के लिए रजत पदक जीता। बहुत लंबी चौड़ी टीम गई थी लेकिन वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्कूली गेम में मेडल जीतने वाली मात्र ही एक लड़की हुई। एक दूसरी लड़की गांव की ही सुमन यादव, हरहुआ ब्लॉक की है, और इसने जो है विश्व रैंकिंग में ये 6वां स्थान प्राप्त, जो गांव की रहने वाली थी, जेवलिन थ्रो में भाला फेंक में उसके गार्जियन जब लेकर के आए तो उस समय कभी लॉन्ग जंप करती थी, कभी वॉलीबॉल खेलती थी, कभी कुछ करती थी। बाद में वॉलीबॉल एक दिन खेला रहे तो देखे वॉलीबॉल में सर्विस कर रही थी, तो सर्विस में देखी इसका पावर बड़ा अच्छा लगा, हमने कहा तो जेवलिन बढ़िया फेंक सकती है, इसको मैंने जेवलिन में डाला और वही लड़की जेवलिन में आज एशिया में मेडल, सारी जगह मेडल और वर्ल्ड की 6th रैंकिंग प्राप्त करना बहुत बड़ी बात।
1: कहने का मतलब ये है कि सरकारें जो प्रयास कर रही हैं अपने स्तर से ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का, लाने का, उसमें खेल निदेशालय और भारतीय खेल प्राधिकरण का एक बड़ा योगदान है।
0: जी जी,
1: खास करके महिलाओं की जो प्रतिशतता है, लड़कियां भी ग्रामीण क्षेत्रों से निकल करके आगे आए, 2-4-5 उदाहरण आपने दिए, इसको और बढ़ाए जाने की आवश्यकता है आज के समय में।
0: जी बिल्कुल, तो बढ़ाने की आवश्यकता,
1: वो जो बढ़ाने की आवश्यकता है उसे कैसे पूरा किया जा सकता है ताकि जो आने वाला भविष्य है हमारे देश का खास करके खेलों में वो उज्ज्वल हो।
0: इसको बढ़ाने के लिए पहले तो बच्चे का ब्रेन वॉशिंग करना है कि बच्चा, उसके अंदर ये हो जाए कि हम खेल के बल से अपने करियर को बना सकते हैं। जैसे लोग पहले कहते थे, जब भी हम लोग छोटे थे गांव जाते दौड़ने वाले आवारा हो जाएगा, तो गार्जियन को यह बताना है, पहले लोग कहते थे कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब, आप पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब, यह कहावत चलती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब तो खेलों के माध्यम से, जैसे कहते हैं कि जिस प्रकार गाड़ी की पहिया तेज चलती है तेल से, उसी प्रकार बच्चों का दिमाग तेज होता है खेल से। तो इस खेलों को हमें गांव में ले जा करके सुदूर अंचलों में, ग्राम भारत की 80% जनता गांव में रहती, अब तो लोग शहर में आना शुरू कर दिए, लेकिन जो गांव में रहता है उसको गांव ही अच्छा लगता है और गांव में जो चीजें मिलती हैं, शुद्ध हवा, शुद्ध ऑक्सीजन, शुद्ध दूध, तो शहर की अपेक्षा की गाँव में ये सब चीजें तो अच्छी हैं।

0: लेकिन ऑपरेटर्स उपकरण नहीं है, जैसे इसको लीजिए पोल वॉल्ट है, इतना महंगा है खरीद नहीं पाएगा खिलाड़ी। जेवलिन है 75-80 हजार की जेवलिन एक आती है, कहां से खिलाड़ी जितना गेहूं चावल बेचेगा तो एक तो सामान खरीदेगा। तो इन सब चीजों के लिए सरकार ध्यान दे रही है, प्रशिक्षक गांव में जाकर के बच्चों को मोटिवेट करे, मोटिवेशन बहुत बड़ी चीज होती है
1: निश्चित तौर पर। और ये मोटिवेशन सरकार तो अपनी तरफ से दे ही रही है, अभिभावकों के अंदर भी होना चाहिए ताकि वो अपने बच्चों को जागरूक करें, और खास करके जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ के युवा खिलाड़ी, चाहे वो लड़के हों चाहे वो लड़कियाँ हों, निकल करके आएँ और उनका भविष्य बहुत उज्ज्वल है, ऐसा सरकार के संस्थान का जो प्रयास है इसको देख करके लगता है। निश्चित तौर पर वो जब इस तरह की प्रतियोगिताएं धीरे धीरे करके जीतेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो अपने राज्य का, अपने देश का नाम तमाम सारे अंतर्राष्ट्रीय फलकों पर निश्चित तौर पर वो मशहूर करेंगे। नरेंद्र सिंह जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे श्रोताओं को इतनी आवश्यक और महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे नन्हे सिंह से अशोक पांडे की भेंट वार्ता, विषय था ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभाएं। अब सुनिए एथलेटिक्स कोच जगदीश द्विवेदी और संजीव श्रीवास्तव से आकांक्षा सिंह की बातचीत।
3: श्रोताओं नमस्कार, खेल और खिलाड़ियों की बात करते करते हम आ पहुंचे हैं भारतीय खेल प्राधिकरण के BHU कैंपस में, और आज हमारे साथ हैं भारतीय खेल प्राधिकरण में एथलेटिक्स के कोच संजीव श्रीवास्तव जी, और साथ में हैं एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट करने वाली ढेरों बालिकाएं। सर, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। चूंकि खिलाड़ी को बनाने में सबसे अहम भूमिका एक कोच की होती है, संजीव जी आप इन बच्चों के कोच हैं और स्पेशली आप एथलेटिक्स देख रहे हैं, तो सबसे पहला प्रश्न आपसे ही पूछा जाएगा, आपने एथलेटिक्स कोच बनने की प्रेरणा कहाँ से ली?
4: सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हम खिलाड़ियों के लिए और हमारे भारतीय खेल प्राधिकरण के कैंपस में आई हैं, आपका स्वागत है, और आप हमारे बारे में जानना चाहती हैं, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। कोच बनने की प्रेरणा मैंने अपने फादर से ली, वो खिलाड़ी रहे हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे, यूनिवर्सिटी मेडलिस्ट रहे, जेनेटिक था, खेले पढ़ते रहे, वो जानते थे कि इसका खेल, वो सारे स्कोप, चूंकि मेरे फादर थे तो उनको मेरे स्कोप के बारे में पता था, तो उन्होंने मुझको BPED MPED डिप्लोमा कराया। छोटी उम्र में ही मैंने कंटिन्यू कर लिया। उन्होंने कहा कि कोच बनने के लिए पटियाला जाना पड़ता है, डिप्लोमा लेना पड़ता है एथलेटिक्स में, तो मैंने कहा पापा अभी कोच तो नहीं बनना, अभी तो मैं खिलाड़ी बन रहा हूँ। बोले तो वहाँ जाओ, वहाँ सारे कैंपर रहते हैं, उनको देखना और करना, वो तो मक्का मदीना है खेल का। मैंने गया वहाँ खेला, चूंकि मैं पढ़ने में ठीक ठाक, अच्छे विद्यालय से एजुकेशन रहा हमारा, खेल खेलते खेलते हम कोच बन गए, और जो हमारा पैसन है वही हमारा प्रोफेशन हो गया है।
3: खेलते खेलते आप कोच बन गए और आपको लगा कि दूसरों को भी मुझे ट्रेनिंग देनी चाहिए। अच्छा संजीव जी, ये जो बच्चे सीख रहे हैं अभी तो इनकी शुरुआत है, आपको क्या लगता है कि एक अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए व्यक्ति में क्या गुण होने चाहिए?
4: अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए एक व्यक्ति में ना ईमानदार हो, अनुशासन हो, और उसका आत्मबल बहुत मजबूत हो, उसमें विश्वास हो। जिस प्रकार एक बहुत टैलेंटेड खिलाड़ी, ये जरूरी नहीं कि वो खिलाड़ी बन सकता है, लेकिन एक सामान्य सा बालक अगर वो मेहनत करेगा तो कंटिन्यू अनुशासन से, ईमानदारी से, तो एक ना एक दिन वो अच्छा खिलाड़ी बनेगा।
3: तो आपको लगता है कि एथलेटिक्स में, हम यहाँ पे विशेष तौर पे एथलेटिक्स खेलों की बात करेंगे, इसमें अनुशासन और मेहनत की विशेष भूमिका है?
4: हाँ मैम, बहुत ज्यादा। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे ना, एथलेटिक्स ऐसा गेम है ना, टीम गेम में क्या होता है कि अगर एक खिलाड़ी ने खराब खेला तो 9 खिलाड़ी अच्छा कर जाते हैं या 10 खिलाड़ी अच्छा करते हैं, तो उसकी जो कमियां होती छिप जाती हैं। लेकिन एथलेटिक्स ये है ना, आप जितना करेंगे उतना पाएंगे, हार्ड वर्क करेंगे तो अच्छा रिजल्ट पाएंगे, जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतनी ज्यादा आपकी उपलब्धियां रहेंगी। ये आप पे ही निर्भर है और आपके कोच पे, आपको खुद करना है और खुद ही पाना है।
3: बिल्कुल, कोच के साथ साथ खिलाड़ी की स्वयं की मेहनत भी उतनी ही जरूरी है। तो संजीव जी, खिलाड़ियों की मानसिक तैयारी यानी मेंटल प्रिपरेशन जो है वो भी बेहद जरूरी होती है, आप उनको मानसिक रूप से तैयार करने में किस तरह मदद करते हैं?
4: एक दूसरे खिलाड़ी को दिखाकर, जो आपस में प्रैक्टिस करते हैं ना, जो इनसे बाद में शुरू करते हैं और इनसे आगे चले जाते हैं, या जो इनसे आगे रहते हैं उनसे कहते हैं देखो उसने प्रैक्टिस नहीं की तो देखो ये पीछे होगी, आपने प्रैक्टिस की आप आगे गई। मोटिवेशन से वो दो प्रकार के होते हैं, सेल्फ और एक्सटर्नल, इंटरनल एक्सटर्नल। और आजकल तो आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर ढेर सारे स्पीच देने वाले हैं, इस इनकी बीच बीच में भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा साइकोलॉजी क्लासेस भी चलती रहती हैं, वो प्रोफेसर लेक्चर इनको साइकोलॉजी रूप से ट्रीट करते रहते हैं और इनको मोटिवेट करते रहते हैं। कोच का काम तो है ही करना मोटिवेट कि बेटा ये ऐसे करोगे तो ये होगा, वैसे करोगे तो ये होगा, तो साइकोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है स्पोर्ट्स के लिए और इनके परफॉर्मेंस के लिए।
3: जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। संजीव जी, आपको क्या लगता है कि सिर्फ बताना और उनको तैयार करना, इसके अलावा एक कोच और खिलाड़ी के बीच में कहते हैं एक विश्वास का बंधन होना भी उतना ही जरूरी है?
4: बहुत जरूरी होता है। एक कोच होता है जो ना, वो एक प्रकार से पिता होता है,

0: और एक पिता सोचता है समझता है कि बच्चे को कब क्या किस चीज की जरूरत है। एक और एग्जांपल मैं दे सकता हूँ, जैसे हम घुड़सवारी में या घुड़दौड़ में ना राइडर और घोड़े के बीच का संबंध जो होता है ना, वो उसकी हार्ट बीट से जो थपकी देता है तो घोड़ा बहुत तेज भागता है। उसी प्रकार बच्चे की फीलिंग्स और कोच की फीलिंग्स, उसकी आई टू आई कॉन्टैक्ट, इमोशन टू इमोशन जुड़ाव बच्चे को बहुत आगे ले जाता है। कोच कुछ कहना चाहे बच्चा उसे पहले समझ जाए, ऐसी बाउंडिंग होनी चाहिए कोचेज और ट्रेनेज में।
1: कुछ इवेंट्स की बात करेंगे, एथलेटिक्स में अलग अलग तरह के खेल होते हैं, थोड़ा उनके बारे में बताएं।
0: बोलता है एथलेटिक्स तीन चीज पे आधारित होता है, रनिंग, थ्रोइंग और जंपिंग। रनिंग में ढेर सारे इवेंट्स होते हैं, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर,

0: टू आई कॉन्टैक्ट, इमोशन टू इमोशन जुड़ाव बच्चे को बहुत आगे ले जाता है। कोच कुछ कहना चाहे बच्चा उसे पहले समझ जाए, ऐसी बाउंड्री होनी चाहिए कोचेज और ट्रेनेज में।
1: कुछ इवेंट्स की बात करेंगे, एथलेटिक्स में अलग अलग तरह के खेल होते हैं, थोड़ा उनके बारे में बताएं।
0: बोलता है एथलेटिक्स तीन चीज पे आधारित होता है, रनिंग, थ्रोइंग और जंपिंग। रनिंग में ढेर सारे इवेंट्स होते हैं, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर, 1500 मीटर, 110 मीटर बाधा दौड़, 400 मीटर बाधा दौड़, लड़कियों की 100 मीटर रेस, 3000 मीटर रेस, 5000 मीटर रेस, मैराथन, इससे ऊपर वॉक रेस होती है ढेर सारी, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, ये हमारे रनिंग इवेंट्स हैं। इसी प्रकार हम जंप इवेंट्स की बात करते हैं तो उसमें चार जंप्स होते हैं, लॉन्ग जंप होता है, ट्रिपल जंप होता है, हाई जंप होता है, पोल वॉल्ट होता है। फिर हम थ्रो में आते हैं तो चार प्रकार के थ्रो होते हैं, शॉट पुट, डिस्कस, हैमर, जेवलिन थ्रो। समानता 26 होते हैं, ये हर बार बढ़ते घटते रहते हैं ओलंपिक के अनुसार। अब चूंकि देश विकसित कर रहा है, समाज विकसित कर रहा है, तो आवश्यकता के अनुसार से इवेंट्स बढ़ाए जाते हैं या कम किए जाते हैं।
1: कोच सर, हम आपके पास प्रश्नों की बौछार लेके फिर आएंगे, लेकिन जो बच्चे हैं हमारे साथ, थोड़ी उनसे भी बात कर ली जाए, चूंकि इवेंट्स की बात हो ही रही है। तो बच्चों, जय हिंद।
2: जय मैम।
1: सबसे पहले तो जल्दी जल्दी आप लोगों का नाम जान लेते हैं, है ना? तो अपना नाम बताइए और कहाँ से हैं वो बताइए।
3: मैं अंकिता देवरिया।
4: मैं अदिति राय, गाजीपुर से।
5: मैं आरती, सोनभद्र से।
6: मैं सेजल, सेवापुरी से।
7: मैं मीनाक्षी, टिकरी से।
8: मैं शिवानी यादव, जो की जनपुर की रहने वाली।
9: मैं आर्य सिंह, बाबतपुर से।
10: मैं रीचा यादव, बाबतपुर की।
11: मैं खुशी पटेल, आयर से।
12: प्रशिष्टि, मैं उन्नाव से।
13: गुंजन यादव, जौनपुर से।
14: पलक यादव, चंदौली।
15: अपूर्वा गुजर, फिरोजाबाद।
1: तो बच्चों, जब आप लोग ट्रेनिंग करती हैं, थोड़ा सा आप लोगों के रूटीन के बारे में जानना चाहेंगे। सवेरे से शुरुआत करें।
16: सुबह 5 बजे उठते हैं, तैयार होते हैं, ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, फिर आते हैं, नाश्ता करते हैं, उसके बाद थोड़ा नहाते हैं, रेस्ट करते हैं, उसके बाद खाना खाने के लिए आएंगे दोपहर का।
17: लंच के बाद फिर थोड़ा पढ़ना रहता तो पढ़ लेते, फिर इसके बाद 4 बजे फिर ग्राउंड जाते, फिर वर्कआउट करते, फिर 6 बजे आते वर्कआउट के बाद, 8 बजे फिर नाश्ता करते,
18: 6 बजे के बाद आते हैं, फिर उसके बाद जो भी वहाँ पे नींबू पानी वगैरह पीना होता है वो पीते हैं, फिर सर के साथ असेंबली होती है, फिर रात का खाना होता है, उसके बाद फिर मैम असेंबली कराती हैं, फिर हम लोग ऊपर जाते हैं, जो भी पढ़ना होता है वो पढ़ते लिखते हैं, फिर सो जाते हैं।
1: तो जनरली आपका दिन कितने बजे तक खत्म होता है? लास्ट कॉल
19: 10 बजे तक।
1: तो बच्चों, मतलब क्या सोचा आपने कि हमें स्पोर्ट्स में ही करियर बनाना है, ऐसा क्यों?
19: मेरा नाम खुशी पटेल है, मैं गेम खेलना मुझे बहुत पसंद है, मेरे घर वालों ने भी बहुत फोर्स किया है मुझे गेम खेलने के लिए, फिर स्कूल में ऐसा गेम होता था तो मैं गेम खेलती थी, तो मेरे सर भी बोलते थे कि तुम प्रैक्टिस किया करो, गेम खेला करो हमेशा। हमने बोला ठीक है सर, हम करेंगे। फिर मेरे घर वाले सबसे ज्यादा मुझे सपोर्ट किए गेम के लिए, फिर मैं धीरे धीरे करती गई, 1-2 साल घर पे प्रैक्टिस किए, गेम खेले, स्टेट तक घर पे मेडल दिया है, फिर उसके बाद साई हॉस्टल का ट्रायल दिए, बेच चुका, फिर यहाँ पे आ गए, हॉस्टल में हो गया, 2 साल से हॉस्टल में रहते हैं।
1: तो खुशी, आप क्या खेलती हैं?
19: मैं 100 मीटर हर्डल करती हूँ और लॉन्ग जंप करती हूँ।
1: अच्छा। प्रशिष्टि, आप क्या खेलती हैं?
20: मैं ट्रायथलॉन और हर्डल करती हूँ।
1: आप कब से खेल रही हैं?
20: मैं अभी यहाँ पे 5-6 महीने से आई हूँ, और सर के अंडर हमने बहुत ज्यादा हमें इम्प्रूवमेंट हुआ है, और सर हमारे लिए एज अ पेरेंट्स होते हैं, उसी हिसाब से हमारी वैसे ही केयर करते हैं और हमें वैसे ही समझाते हैं, हम इसके लिए सर के बहुत ज्यादा थैंकफुल हैं।
1: तो सर के पास वापस चलते हैं। कोच सर, ये अगला प्रश्न आपके लिए, इतने बच्चों को संभालना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, कैसे मैनेज करते हैं?
0: कुछ मुश्किल से नहीं होता, ये हमको समझते हैं, हम इनको समझते हैं, और भी कोचेज रहते हैं जो ट्रेनिंग कराते हैं। हमने वो पहले ही बता दिया था कि ये मेरा पैशन है जो प्रोफेशन बदल गया है, तो जितनी ज्यादा ट्रेनिंग कराने का मौका मिलता है और ये करते हैं बहुत हार्ड वर्क, जब ये हार्ड वर्क करते हैं तो हमको कराने भी मजा आता है।
1: संजीव जी, जब हम खेलों की बात करते हैं तो खेल, खिलाड़ी और चोट बहुत आम बात है, तो जब बच्चों को किसी चोट का सामना करना पड़ता है तो उनको किस तरह मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से आप किस तरह सपोर्ट करते हैं?
0: बिना सपोर्ट कुछ हो नहीं सकता मैम, अगर खिलाड़ी बनना है तो बहुत ढेर सारी चोटों का सामना करना पड़ता है, रोज चोट लगनी ही है, क्योंकि हम ऐसे मूवमेंट्स करते हैं जो सामान्य से बहुत ऊपर रहते हैं, जिसमें ढेर सारी इंजरी, एंकल ट्विस्ट, नी इंजरी, स्टमक पेन, कुछ भी मतलब बाहरी और आंतरिक ढेर सारी चोटें लगती हैं। इनके लिए बीएचयू में अगर ज्यादा चोट लगती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, वार्डन मैम होती हैं, इनको डॉक्टर के पास ले जाती हैं, या फिर उनसे नहीं ठीक होता है तो बड़े बड़े डॉक्टरों को कंसल्ट करते हैं। इनके लिए साई ने व्यवस्था की है इनकी चोटें के लिए, और उनका उपचार होता है।
1: कुछ सावधानियां भी बरतनी होती हैं?
0: बिल्कुल, सावधानियां तो बरतनी है
1: खेल के दौरान।
0: हाँ, खेल के दौरान सावधानियां, ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए जिसमें चोट कम हो। अब ट्रेनिंग बहुत साइंटिफिक हो गई है तो हम कुछ भी कभी भी नहीं कर सकते, कब क्या करना ये एक सुनिश्चित होता है, सुनिश्चित होता है। अब ऐसे इक्विपमेंट्स भी आ गए हैं जिससे आपको चोटें कम लगती हैं, और कोच को ये सारी बात

0: व्यवस्थाएं बताई जाती हैं कि कैसे ट्रेनिंग करानी है कि चोट कम से कम लगे, और चोट लगी तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले क्या उपचार देना है? जैसे अगर चोट लग गई है, थोड़ी सूजन है, तो सबसे पहले आइस देना है, थोड़ा सा उसको 10-12 घंटे देखना है अगर समान चोट है तो। उसके बाद अगर वो आप नहीं, तो फिर अच्छे डॉक्टर के पास लेके जाना उसको।
1: अच्छा, श्रद्धा बातचीत के सिलसिले में अब हमसे जुड़ गए हैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया BHU कैंपस के वरिष्ठ कोच श्री जगदीश द्विवेदी जी।
2: थैंक यू मैडम।
1: सर, साई की जो बच्चों के लिए जो सुविधाएं हैं और आगे जो उज्जवल भविष्य है बच्चों का, उसके बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे कि किस तरह की सुविधाएं साई इन बच्चों को उपलब्ध करा रहा है ट्रेनिंग से जुड़ी।
2: मैडम, हमें बता देंगे, एक जो BHU सेंटर है वो गर्ल्स हॉस्टल छात्रावास जो है वो पूर्वांचल का पहला साई छात्रावास है, और ये इसलिए यहाँ ओपन किया गया था कि हमारे जो पूर्वांचल के बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनको इस सुविधा मिल सके। तो हमारे कुछ नॉर्म्स हैं जो हम सिलेक्शन जब करते हैं ऑल इंडिया लेवल पे, और ये ऑल इंडिया लेवल पे ही है, लेकिन हम प्रेफर करते हैं कि हमारे पूर्वांचल की बच्चियां ज्यादातर इसमें आए। तो कुछ हमारे मोटर एबिलिटी टेस्ट है
1: जी,
2: जो हम टेस्ट लेते हैं और उसके बाद मूल्यांकन करते हैं, फिर मेरिट के आधार पे उनको एडमिशन मिलता है।
1: सर, सुविधाओं की थोड़ी सी जानकारी दे दीजिए।
2: सुविधाओं की देखिए, आपको एक नेशनल आपके इंटरनेशनल कोच, टेक्निकल कोच मिलते हैं जो साइंटिफिक तरह से कोचिंग देते हैं, जिसका कि कोई एक तो बहुत बड़ी सुविधाएं आपको ये मिलती हैं, और इक्विपमेंट वगैरह हमारे सब नेशनल ओलंपिक लेवल के यहाँ पे रहते हैं, जो भी सुविधाएं हैं, जिम इक्विपमेंट वगैरह है, जिम्स है, या जो भी सुविधाएं हैं वो काफी काफी अच्छा तरह से यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, बाकी हॉस्टल की, हाँ, हॉस्टल की जो सुविधाएं हैं यहाँ पे वो काफी अच्छी हैं, इस पे जो भी बैलेंस डाइट वगैरह काफी अच्छी मिलती है यहाँ पे, और जो बैलेंस डाइट जो बनाया गया है एक नेशनल लेवल चार्ट पे बनाया गया है, ताकि बच्चों को भरपूर जो पोषक तत्व मिल सके।
1: हमारे इस BHU कैंपस से क्या बच्चे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक गए हैं खेलने?
2: जी हाँ, बच्चे, मैडम यह कि यहाँ से बच्चे इंटरनेशनल लेवल पे गए हैं, और नेशनल मेडल भी इन्होंने लिया है। नॉर्थ जोन चैंपियनशिप हुआ था जिसमें हमारे करीब 10 मेडल आसपास, 10 गोल्ड मिले हुए हैं, कुछ ब्राउन्स हैं, कुछ सिल्वर्स हैं, तो ये काफी अच्छा अचीवमेंट है, और आगे आने वाले जो भी हमारे टूर्नामेंट है नेशनल में श्योर मेडल मिलेंगे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: थैंक यू सो मच।
1: कोच सर के लिए खास प्रश्न है कि खिलाड़ियों का पोषण बेहद जरूरी होता है फिटनेस के साथ साथ, तो पोषण और फिटनेस पर खिलाड़ियों को आप क्या विशेष तौर पर सलाह देंगे?
0: मैम, पोषण बहुत जरूरी है, और हमारे ये भारतीय खेल प्राधिकरण संस्था है, तो जैसे हम कोचेज नियुक्त हैं, वैसे हमारे न्यूट्रिशियन भी नियुक्त हैं, साइकोलॉजिस्ट भी नियुक्त हैं, तो बड़े बड़े न्यूट्रिशियन से मिलकर इनके लिए एक चाइल्ड डाइट बनाई जाती है, क्या खाना है, कब खाना है, ब्रेकफास्ट में क्या होगा, लंच में क्या होगा, डिनर में क्या होगा, इनका एक मेनू तैयार वही इनको दिया जाता है, उस हिसाब से सोमवार को क्या खाना है, मंगलवार को क्या खाना है, क्या मेनू है, वो उस पर दिया जाता है। फिटनेस की बात पे, अगर खिलाड़ी फिट नहीं रहेगा तो वो इंजर्ड ज्यादा होगा और उसकी परफॉर्मेंस नहीं आएगी, और परफॉर्मेंस नहीं आएगी तो आजकल सब लोग परफॉर्मेंस को ही मानते हैं, खिलाड़ी नहीं रहेगा वो बाहर हो जाएगा, इसलिए फिटनेस बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा फिट इंसान रहेगा उतनी कम इंजरी और उतनी ज्यादा परफॉर्मेंस आएगी, तो फिटनेस कराने के लिए तो हम कोचेज इसलिए नियुक्त हैं ताकि ये फिट रहे और इनकी परफॉर्मेंस आ सके और ये आगे देश का नाम रोशन कर सके।
1: जी बिल्कुल सही बात है। तो इवेंट के हिसाब से सबके, हर खिलाड़ी की न्यूट्रिशनल वैल्यू अलग रहती है, तो सबका डाइट चार्ट अलग रहता है?
0: जी मैम, जैसे जो थ्रोअर हैं उनको प्रोटीन की ज्यादा आवश्यकता है, जो हाई जम्पर हैं या लॉन्ग डिस्टेंस रनर हैं उनको कार्बोहाइड्रेट की थोड़ी कम आवश्यकता होती है, लेकिन जो थ्रोअर होते हैं उनको, हर खिलाड़ी का अपना अलग अलग होता है, क्योंकि ये ग्रास रूट लेवल पे होता है, तो यहाँ पे उस हिसाब से इंडिया कैंप के हिसाब से थोड़ी सी कम होती है, लेकिन जब इससे बड़े हॉस्टल में जाते हैं तो इससे ज्यादा इनका वो होता है। हर एक खिलाड़ी के लिए अलग कोच, इवेंट वाइज अलग न्यूट्रिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, मसाजर, सब कुछ रहता है।
1: संजीव जी, भारत में एथलेटिक्स के भविष्य को आप कहाँ देख रहे हैं?
0: अब तो मैम भविष्य फ्यूचर ही दिख रहा है, लोग अपने बच्चों को डॉक्टर, IAS, VCS कम बनाना चाह रहे हैं, खिलाड़ी ज्यादा बनाना चाह रहे हैं।
1: मैंने ये प्रश्न विशेष तौर पे इसलिए पूछा क्योंकि जब भारत में विशेष तौर पे जब खेलों की बात होती है तो सबसे ऊपर क्रिकेट रहता है, उसके बाद फिर हम हॉकी देख लेते हैं, एथलेटिक्स इस मामले में अभी बहुत नीचे है, चाहे वो हमारे रनर्स हों चाहे हाई जम्पर्स हों, लेकिन अब धीरे धीरे धीरे इन इवेंट्स में भी बच्चे आगे आ रहे हैं। ये प्रश्न मैंने इसीलिए पूछा कि आगे एथलेटिक्स का भविष्य भारत में कहाँ है?
0: मैम बहुत अच्छा है आगे, क्रिकेट खेलने के लिए 11 खिलाड़ी चाहिए, लेकिन रनिंग के लिए ना
1: एक अकेला ही काफी है,
0: और शुरुआत हो गई है, अभी नीरज चोपड़ा जी ने हमारे मेडल लेके आए हैं ढेर सारे, अभी क्रिकेट हॉकी तो हमको लग रहा है थोड़े कम हो

0: बॉक्सिंग, आर्चरी, रेसलिंग, एथलेटिक्स तो बहुत तेज विकास हो रहा है और हर एक गांव में अब साई की ढेर सारी स्कीम है, तो ग्रास रूट पे काम हो रहा है। कोचेज अगर जो बच्चे हॉस्टल में नहीं है वहीं पे कोच की नियुक्ति कर दे रहे हैं हर एक जिले में, जो वहाँ का इंटरनेशनल खिलाड़ी है या नेशनल मेडलिस्ट है उसको भी व्यवसाय मिल जा रहा है, रोजगार मिल जा रहा है और आधारभूत सुविधाएं वहाँ पे उपलब्ध करा दे रहे हैं ताकि खिलाड़ी ग्राउंड पे जाए और प्रैक्टिस करके वहां से अगली नेक्स्ट स्कीम में ऊपर जाए साई में। तो बहुत तेज से काम हो रहा है, बहुत अच्छा फ्यूचर है मैम। मैंने बोला ना कि अब पहले लोग कहते थे कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब, अब लोग कहते हैं कि खेलोगे कूदोगे होगे तो लाजवाब, तो खेल का फ्यूचर अच्छा है मैम। अब ये बनारस है, छोटा सेंटर है, लेकिन अभी बच्चों ने इसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। प्रदेश में साई हॉस्टल की बालिकाओं ने 19 मेडल लेके आई।
1: श्रोताओं, भारतीय खेल प्राधिकरण यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के BHU कैंपस में आज हम थे और हमने बात की एथलेटिक्स के कोच संजीव श्रीवास्तव जी से। साथ में जो बच्चे थे वो एथलेटिक्स के अलग अलग क्षेत्रों में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सीख रहे हैं, वो बच्चियां थी हमारे साथ। सर, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा और स्पेशली इन बच्चियों से बात करके बहुत अच्छा लगा। जब हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो खिलाड़ी के नाम पर हमारे सामने सिर्फ मेल खिलाड़ी आते हैं, लेकिन अब आज हम देख रहे हैं कि स्पेशली एथलेटिक्स में भारत का भविष्य बहुत उज्जवल है।
0: हाँ मैम, बिल्कुल, महिलाएं पुरुषों से कहीं कमजोर नहीं है और अब तो ये आद सकती हैं। तो महिलाएं अब आगे हो गई हैं पुरुषों से, इसमें कोई शक नहीं है। और यह हम कहते थे कि महिलाएं कुछ नहीं कर सकती, ये वो महिलाएं तो प्लेन उड़ा रही हैं, सीमा पे जा रही हैं, वो कुछ भी कर सकती हैं, परिवार देख सकती हैं, पढ़ सकती हैं, डॉक्टर इंजीनियर बन सकती हैं, खिलाड़ी बन सकती हैं और देश का प्रतिनिधित्व हमारी महिला राष्ट्रपति जी कर रही हैं। तो महिलाओं के बारे में अब जिनको कोई संशय हुआ वो अपने दिमाग से निकाल दें।
1: धन्यवाद संजीव जी, आपसे बात करके हमें अच्छा लगा।
2: अभी आप सुन रहे थे एथलेटिक्स कोच जगदीश द्विवेदी और संजीव श्रीवास्तव से आकांक्षा सिंह की बातचीत। इसी के साथ संपन्न होता है कार्यक्रम खेल दर्पण का आज का अंक। वाचन, संपादन और प्रस्तुति चंदन कुमार सिंह की।
3: हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं विदुषी गंगूबाई हंगल का राग बागेश्री में गाया ख्याल। आपके साथ संगत की है तबले पर SK हंगल ने और हारमोनियम पर हैं अप्पा जलगांवकर।

अभी आप सुन रहे थे विदुषी गंगूबाई हंगल का राग बागेश्री में गाया ख्याल। इसी के साथ हमारा आज का शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम अब संपन्न हुआ।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत लखपति दीदी एवं हाउस ऑफ हिमालय जैसी पहलों ने स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। वही देवभूमि उद्यमिता योजना और स्टार्टअप इकोसिस्टम ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया।
0: कृषि उद्योग एवं पर्यटन को बढ़ावा देने से आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी और निवेश को मिला प्रोत्साहन। साथ ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से सीमांत क्षेत्रों का विकास किया गया सुनिश्चित।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत लखपति दीदी एवं हाउस ऑफ हिमालय जैसी पहलों ने स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। वही देवभूमि उद्यमिता योजना और स्टार्टअप इको सिस्टम ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया।
0: कृषि उद्योग एवं पर्यटन को बढ़ावा देने से आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी और निवेश को मिला प्रोत्साहन। साथ ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से सीमांत क्षेत्रों का विकास किया गया सुनिश्चित।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं।

0: एफएम 100.8 मेगाहर्ट्ज और प्रसार भारती के ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। अब समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन के बाद श्री मोदी ने ये बात कही।
2: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में द्विपक्षीय व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है।
2: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच अनुसंधान, कौशल विकास और प्रतिभा के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं और स्टार्टअप तंत्र के स्तर पर सहयोग मजबूत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण के लिए इटली रवाना हो गए हैं। वे देर रात राजधानी रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। इटली में भारत की राजदूत वाणी सर्राजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा का आदान प्रदान, नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। रक्षा मंत्री दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू बैक के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता रक्षा और सहयोग की समीक्षा करेंगे तथा द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नई पहलों पर चर्चा करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्थित रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस कोचिंग सेंटर में एक और तलाशी अभियान चलाया। सर्वोच्च न्यायालय ने जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेबीज से संक्रमित और जानलेवा कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय आरजीकर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। भारतीय रेलवे का विद्युतीकरण अब 99.6% तक पहुंच गया है। देश में 69,873 किलोमीटर से अधिक रेल मार्ग का विद्युतीकरण किया जा चुका है। मणिपुर के महान नाटा संकीर्तन गुरु युमनाम जात्रा सिंह को 25 मई को राष्ट्रपति भवन में मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नागरिक अलंकरण समारोह के दौरान यह पुरस्कार प्रदान करेंगी। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। कल पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली NCR में भी भीषण लू की चेतावनी है। अगले 2 से 3 दिनों तक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दक्षिण पश्चिम बिहार और उड़ीसा में लू चलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। India and the Nordic nations comprising Norway, Sweden, Denmark, Finland and Iceland have elevated their bilateral ties to a green technology and innovation strategic partnership. Mr. Modi made the announcement while addressing a joint press meet with leaders of Nordic nations after attending the third India-Nordic summit in Norwegian capital Oslo today. Prime Minister Modi said investments from Nordic countries in India rose by 200% in past decade.
2: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले 1 दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक